0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में अभी आप सुन रहे थे तनिमा ठाकुर का गाया राग ललित में ख्याल। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 6 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारवां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एविरिस्ते नादियने शिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन। इसमें आज हम आपको सुना रहे हैं रामप्रसाद बिस्मिल के विषय में।
1: नमस्कार। रामप्रसाद बिस्मिल एक ऐसे क्रांतिकारी जो मात्र 30 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे पर झूल गए। बहुभाषाविद, साहित्यकार, अनुवादक, इतिहासकार, महान क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। 1915 में भाई परमानंद जी की फांसी का समाचार सुनकर रामप्रसाद ने ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा की और मात्र 19 वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी मार्ग पर अपना कदम बढ़ाया। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों से जो धन प्राप्त होता था उससे उन्होंने हथियार खरीदे। उनकी पुस्तकों में क्रांति का स्वर था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उन पुस्तकों को जब्त कर लिया। सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में उनकी भेंट लाला लाजपत राय से हुई। लाला जी ने उनकी लिखी हुई पुस्तकें देखी तो वह बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी की अति उदारता से असहमति रखते हुए रामप्रसाद ने क्रांति का मार्ग चुना। अपने अभियान के लिए संसाधन जुटाने के लिए बिस्मिल और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटा। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में जिन 10 लोगों ने उस रेलगाड़ी को लूटा, उनमें अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, मम्मत नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती और मुरारी शर्मा जैसे लोग थे। ट्रेन जब काकोरी स्टेशन पर रुकी तो क्रांतिकारियों ने गार्ड के डिब्बे से खजाना लूट लिया। अगले दिन ये समाचार पूरी दुनिया में फैल गया। अंग्रेज सरकार ने उसकी छानबीन की और 26 सितंबर को बिस्मिल और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्मिल मेनपुरी षड्यंत्र और काकोरी हत्याकांड जैसी अनेक घटनाओं में शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बिस्मिल ने गिरफ्तार होने पर आगरा लखनऊ सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया, जहां उन पर और उनके साथियों पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध साजिश रचने का ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया। अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिस्मिल ने गोरखपुर की जिला जेल में अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय पूर्ण किया। माता पिता से अंतिम मुलाकात की और 19 दिसंबर 1927 को प्रातः बिस्मिल को फांसी दे दी गई। बिस्मिल का शव जब परिजनों को सौंपा गया तो उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोगों ने भाग लिया। राप्ती नदी के तट पर अंतिम संस्कार हुआ। इस घटना से आहत होकर भगत सिंह ने जनवरी 1929 में कीर्ति, जो पंजाबी पत्रिका थी, उसमें विद्रोही छदम नाम से लिखा कि फांसी पर ले जाते समय जोर से कहा था वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए बिस्मिल ने कहा था मालिक तेरी रजा और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं और न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही फिक्र और तेरी ही जुफ्तजू रहे। फांसी के तकवितायें गजल और पुस्तकें लिखी। उनकी ये गजल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, क्रांतिकारियों

राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 पर आज आप सुन सकेंगे स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम हमारी सेहत में, ओरल हेल्थ फॉर स्पोर्ट्स पर्सन विषय पे एक इंटरव्यू। इसके अलावा स्पेशल ऑन वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे पे आप एक चर्चा सुन सकते हैं। इसके अलावा आज हम आपको सुनवाएंगे एक ही फिल्म से कार्यक्रम में, दिन में 1:10 पर फिल्म कर्तव्य के कुछ गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीत में प्रस्तुति, भाग 46, अयोध्या कांड।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कागार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानव उसकी प्रत्यंचा है और शम, तम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज बसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था सहित सहयोग के प्रगति की समीक्षा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिमी एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच में श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष भी संबोधित करेंगे। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एसोचैम ने वैश्विक सहयोग और ग्लोबल साउथ के लिए शक्तिशाली मंच के रूप में ब्रिक्स को मजबूत करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की है। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से मेट्रो रेल लाइन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। ये निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। बैठक में योजना के दूसरे चरण में किफायती आवास श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 29,000 अतिरिक्त मकानों को भी मंजूरी दी गई। ये अनुमति असम, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के लिए है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये

0: The Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana has completed 7 years today. The scheme was launched on this day in 2019 with the aim of providing social security to small and marginal farmers. In hockey, Indian women's team will take on South Korea in the first semi-final of Junior Asia Cup at Mochi in China this morning. The match is scheduled to begin at 9:45 a.m. Indian Standard Time. In the other semi-final, hosts China will face Japan in the second semi-final at Mochi. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 7:10 हुए हैं। ये वक्त है हमारे कार्यक्रम संगीतिका का। संगीतिका के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ भजन। गायक कलाकार हैं रोली बरवा। आइए सबसे पहले सुनते हैं ये रचना। हारमोनियम पर आपके साथ हैं दामोदर लाल घोष, तबले पर शिवजीत भारद्वाज।

अभी आप सुन रहे थे रोली बरवा के गाए भजन। आपका साथ दिया था सितार पर खालिद मुस्तफ़ा ने, कीबोर्ड पर बीडी पवार, हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष और तबले पर शिवित भारद्वाज। इसके साथ ही संगीतिका कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:30 हुए हैं। आइए अब पेश है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ आपकी सुबह को और शानदार बनाने के लिए मैं हूं नवीन सक्सेना।

वाकई फिर क्या होगा, क्या पता क्या खबर। जानते हैं जिंदगी में मुस्कुराने के लिए कोई वजह नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाता है जिंदगी में मुस्कुराना अगर आपके पास वजह ढूंढेंगे। बेवजह मुस्कुराइए, देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है आपको।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग में आप हैं अपने दोस्त नवीन के साथ। बहुत ही खूबसूरत गीतों के गुलदस्ता है आज मेरे पास, और उम्मीद है कि आज मैं आपका दिन बहुत बेहतर बनाऊंगा। जानते हैं, हर दिन अपने आप में बहुत खास होता है। कहता है कि देखिए, मैं बाहें फैला के आपके स्वागत के लिए खड़ा हूँ, मुझे अपना लीजिए और आज ऐसा दिन बना दीजिए कि सारी जिंदगी भर आपको याद रहे कि हाँ, यही वो दिन था जब मैंने उसे अपनी जिंदगी में अहम बनाया था। फिर चाहे आप किसी को मुस्कुरा के अपना दोस्त बना लीजिए, या फिर कुछ ऐसा कीजिए कि किसी को याद रहे कि ये वही है जो आज मुझे मिला था। तो बस उठिए जनाब, खूबसूरत गीत सुनिए और अपने दिन को आज आप बेहतर कैसे बेहतर बना सकते हैं ये सोचिए। लेकिन हम इस तरह से आपके दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।

वाकई ज़िंदगी हंसने और गाने के लिए है। इसके हर एक पल को एंजॉय कीजिए, हर एक पल को खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए और हर एक पल को ऐसा कीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में, आपकी यादों में छा जाए। बहुत ही खूबसूरत गीत है, जिस देश में गंगा बहती है, उसके साथ हम आपको आज के इस कार्यक्रम में छोड़े जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन आपका बेहतर हो।

वाकई हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। शानदार गीत और फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। इजाज़त दीजिए नवीन को।

0: 67.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 8 बजने को है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के

0: मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नदायशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
2: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
0: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: ब्रिक्स वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली ट्रेड।
4: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
3: वसुदेव कुटुंबकम।
0: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
8: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से

0: अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुंच बढ़ाने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांगी रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरेम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन के मोकी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
0: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन फिजिशकियान। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में $45 अरब की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार 4थे और कुल 6ठे खिताब पर नजरे। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 वर्ष की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 साल पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया

0: relief and rescue operations as flood affects 25 districts. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। 18वीं ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। आलमी रहनुमा इस दो रोजा तकरीब में अपने मुजाकरात में आलमी हुक्मरानी, तिजारत, सलामती और सप्लाई चेन पर तवज्जो मरकूज करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सरबरा कॉन्फ्रेंस से अलग चीन के सदर शी जिनपिंग और ब्रिक्स के दीगर रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स तिजारती फोरम में महफूज समुद्री रास्तों, सप्लाई के खुले रास्तों और तिजारती रुकावटों को दूर करने की अहमियत पर जोर दिया है ताकि आलमी तिजारत में पायदारी लाई जा सके। सऊदी अरब ने हमले के बाद अहम पाइपलाइन बंद कर दी है। यमन में रूसी बागियों ने अहम जजीरों पर कब्जा कर लिया है जिसकी वजह से बहर अहमर के जहाजरानी के रास्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सैलाब से मुतासर 25 जिलों में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। और हॉकी में चीन में जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भारतीय खवातीन की टीम जनूबी कोरिया के साथ खेलेगी। अब खबरें तफसील से। 18वीं ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होने वाली है। इस दो रोजा अजीमुशान तकरीब में 11 उभरती और तरक्की करती हुई मईशतें यकजा होंगी जिनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुतहद अरब अमारात शामिल हैं। आला सतह की इस तकरीब के दौरान उम्मीद है कि ब्रिक्स रुकन मुल्कों के रहनुमा अहम मामलात पर बातचीत करेंगे जिनमें आलमी हुक्मरानी, कसीर मुल्की निज़ाम, तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, खुराक व तवानाई की यकीनी फराहमी, हिफ्जान सेहत, कुदरती आफात की सूरत में इस्तेहकाम और अहम सप्लाई चेन शामिल हैं। ये सरबरा कॉन्फ्रेंस भारत की 2026 की सदर नशीनी के तहत मुनाकिद की जा रही है जिसका मौजू है मजबूती, इख्तरा, तावुन और पायदार तरक्की का क्याम। इस मशहूर व मारूफ सरबरा कॉन्फ्रेंस में दुनिया के बहुत से अहम रहनुमा शिरकत करेंगे जिनमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ता असीसी, इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के सदर मसूद पिस्कियान शामिल हैं। ये सरबरा कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स रुकन मुल्कों के बंद कमरे में एक जलसे के साथ शुरू होगी जिसका मौजू है सबकी शमूलियत वाली आलमी हुक्मरानी और कसीर मुल्की निज़ाम को मुस्तहकम बनाना। ब्रिक्स रुकन मुल्कों के रहनुमा भारत मंडपम में भारतीय इख्तिराकारों की एक नुमाइश भी देखेंगे। इसके बाद एक मुश्तरका शजरकारी की तकरीब मुनाकिद होगी और फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक शानदार इशाइये का एहतमाम करेंगे। वजीर आजम आज सरबरा कॉन्फ्रेंस से अलग ब्रिक्स रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। इनमें चीन के सदर शी जिनपिंग, अबूजबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के वजीर आजम आबी अहमद अली, मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम और वियतनाम के वजीर आजम ली मिन हंग शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारत को ब्रिक्स 2026 में मरकजी हैसियत हासिल है। यह रहनुमा ऐसे वक्त यकजा हो रहे हैं जब आलमी सतह पर तब्दीलियों और गैर इस्तेहकाम का दौर है। इन रहनुमाओं की मीटिंग मगरबी एशिया और बहरे अस्वद में तनाज़ियात, तवानाई के बहरान और आबो हवा में तब्दीली के पस मंजर में मुनक्किद हो रही है। ब्रिक्स उभरती हुई बड़ी मईशतों के माबेन तालमेल रखने वाली माशी पॉलिसी से मुतालिक एक अहम प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। लगातार मुजाकरात के जरिए ये फोरम कसीर मुल्की इदारों में आलमी जुनूब के मफादात को आगे बढ़ाने का एक तरीक़ाकार बन गया है। इसके एजेंडे में तरक्की, मालिया, टेक्नोलॉजी, तिजारत और आवाम से आवाम के दरमियान तबादले शामिल हैं। इस ग्रुप से आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों की बढ़ती हुई इक्तसादी अहमियत और उमंगों की अक्कासी होती है। भारत की सदर नशीनी इस मौजू के तहत जारी है। मजबूती, इख्तरा, ताउन और पायदार तरक्की का क्याम, ये फोरम आलमी जुनूब की उमंगों को भी उजागर करता है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं इरम नाज।
1: وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے عالمی تجارت کی پائیداری کے لیے محفوظ سمندری راستوں، کھلی سپلائی والے راستوں اور جہازیوں کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے برکس

0: बैंकों पर भी जोर दिया है कि वो तिजारती रुकावटों को दूर करने और तिजारत के लिए मौकों में इजाफा करने की जानिब काम करें। जनाब मोदी ने ये बात कल शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में ब्रिक्स तिजारती फोरम के रहनुमाओं के एक जलसे से खिताब करते हुए कही। वजीर आजम ने कहा कि भारत जहाजरानी की आज़ादी और जहाजियों की हिफाजत की पुरजोर वकालत करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आलमी तिजारत में बिला रुकावट आमदोरफ्त के लिए महफूज समुद्री रास्ते लाजमी हैं।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: वजीर आजम जनाब मोदी ने कहा कि तिजारत में आलमी सतह पर बढ़ती हुई रुकावटों के दौरान भारत इक्तिसादी पुल तामीर करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत आज तरक्की और इस्तेहकाम के लिए एतमाद के एक वसीले की पेशकश करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2014 से अब तक तकरीबन 40 मुल्कों के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स में भी उसका ये नजरिया यही है कि तिजारत के लिए रुकावटों को दूर और मौकों में इजाफा किया जाए।
1: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
0: नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के तनाजुर में कौमी राजधानी के अहम रास्तों पर ट्रैफिक आमदोरफ्त महदूद रहेगी। इसके अलावा अहम रास्तों में तब्दीली की गई है जो सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक नाफिज रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से इजाफी वक्त के पेश नज़र अपने सफर को पहले से मनसूबाबंद करने की सलाह दी है। लोगों से अवामी ट्रांसपोर्ट खासतौर से मेट्रो से सफर करने को तरजीह देने की सलाह दी गई है। अलबत्त एडवाइजरी में कहा गया है कि इमरजेंसी और लाजमी खिदमात से वाबस्ता गाड़ियों को तरजीही तौर पर रास्ता दिया जाएगा। हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU 2.0 के तहत 10,77,000 मकानात को मंजूरी दी है ताकि स्कीम के नफाज और शहरी इलाकों में सबके लिए मकान के मकसद की जानिब आगे बढ़ने को मजीद रफ्तार दी जा सके। जुमेरात को नई दिल्ली में मुनक़िद हुई मंजूरी और निगरानी से मुतालिक मरकजी कमेटी की 9वीं मीटिंग में यह फैसला किया गया। मीटिंग की सदारत मकानात और शहरी उमूर की वजारत के शहरी तरक्की के महकमे के सेक्रेटरी जनाब सत्येंद्र सिंह ने की। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY के आज 7 बरस मुकम्मल हो गए हैं। छोटे और पसमानदा किसानों की गुजर बसर को यकीनी बनाने के मकसद से ये स्कीम 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। स्कीम के तहत जिन छोटे व पसमानदा अहल किसानों के पास जमीनें हैं उनके लिए 60 बरस की उम्र के बाद से 3,000 रुपये माहाना पेंशन का बंदोबस्त है। पेंशन स्कीम का मकसद यह है कि मोमर किसान माली इस्तेहकाम के साथ बावकार जिंदगी गुजार सकें। गुज़िश्ता 7 बरस में PMKMY छोटे और मामूली किसानों के लिए एक अहम समाजी तहफ्फुज़ के कदम के तौर पर उभरी है ताकि वो बेहतर माली एतमाद के साथ अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सकें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अपने आगाज से ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसान बिरादरी के लिए समाजी तहफ्फुज के एक अहम सुतून के तौर पर उभरी है। 7 बरसों के दौरान इस स्कीम ने पूरे मुल्क के किसानों तक अपनी रसाई में मुसलसल व बतदरीज इजाफा किया है। ये स्कीम हुकूमत के इस अज़्म की अक्कासी करती है कि किसान अपने बुढ़ापे की उम्र तहफ्फुज और बावक़ार तौर पर गुजार सकें। फरवरी 2026 तक 26,96,000 किसान इस स्कीम के तहत अपना इंदराज करवा चुके हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा तकरीबन 5,75,000 किसान इसी स्कीम का हिस्सा बने हैं। इसके बाद बिहार का नंबर है जहां 3,46,000 किसानों ने इस स्कीम में शमूलियत अख्तियार की है। 2019 से फरवरी 2026 तक स्कीम के नफाज और रसाई में मदद के लिए 540 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ये स्कीम मुल्कगीर सतह पर किसानों के लिए समाजी व माली तहफ्फुज का निज़ाम है। वो किसान जो मुल्क की खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देते हैं। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि उस पर जो ड्रोन हमले किए गए उसके एक दिन बाद उसने मुल्क के पार एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब की तवानाई की वजारत ने एक बयान में कहा है कि पाइपलाइन को बंद करने का यह फैसला एक एहतियाती कदम के तौर पर किया गया है। मशरकी मगरबी पाइपलाइन का आबनाए हुरमुज में अमरीका और इसराइल के साथ ईरान की जंग के सबब रुकावट आ जाने के बाद तेल की दरामद जारी रखने की सऊदी अरब की सलाहियत में एक अहम रोल अदा किया है। पेश है एक रिपोर्ट।

0: सऊदी अरब की वजारत खारिजा ने इराक की तरफ से किए गए बहुत से ड्रोन हमलों को जवाब के तौर पर पेश किया है। इराक हुकूमत ने इस हमले की मजम्मत की है और तहकीकात का हुक्म दिया है। पाइपलाइन को यमन में ईरान की हिमायत वाली बागियों हूसी के हाथों मौखा बंदरगाह और बहर अहमर में जुनूबी दाखिले के मकाम पर बाबल मंदेब आबनाई के अहम जजीरे पर कब्जे किए जाने के बाद बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से मगरबी एशिया के तनाजे में एक नया महाज खुल गया है। ये आबनाई दुनिया के जहाज रानी की अहम तरीन रियासतों में से एक है। इस पेशरफ्त से तेल और गैस की आलमी कीमतों में इजाफे की ईरान की हिकमत अमली को तकवीत मिलेगी, जिससे वो अमेरिका पर अपने दबाव में इजाफा करेगा। अगर हूसियों ने आबनाई हुरमूज से अरब जजीरों नुमा की पीछे की तरफ बाबल मंदेब आबनाई पर अपना कब्जा जारी रखा तो उनके हामी ईरान को अमेरिका के साथ अपनी जंग में अहम पेशरफ्त हासिल हो सकती है और एक दूसरी बड़ी राहदारी के जरिए सप्लाई में कमी आ सकती है और तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। जिज्ञासा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं इरम नाज।
1: उत्तर प्रदेश में सैलाब की बिगड़ती हुई सूरतेहाल के दौरान रियासती हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा कुनबों की मदद के लिए राहत और बचाव कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। शदीद बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद कम से कम 25 जिले सैलाब से मुतासर हैं। उधर ओडिशा में आज रियासत के जनूबी हिस्से में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। भारतीय महकमा मौसमियात ने नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत के दीगर हिस्सों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज आंध्र प्रदेश के लिए गरज चमक और तेज आंधी के साथ शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी दिन के दौरान तेज बारिश का इम्कान है। ओडिशा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों के मुख्तलिफ हिस्सों में भी इसी तरह के मौसमी हालात रहेंगे। हॉकी में चीन के मौकी शहर में जूनियर एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में आज सुबह भारतीय खवातीन की टीम जनूबी कोरिया के साथ खेलेगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 9:45 पर शुरू होगा। दिफाई चैंपियन भारत क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारत ने पूल ए के तहत जबरदस्त रिकॉर्ड कायम किया है। उसने 3 जबरदस्त कामयाबियों से 10 पॉइंट हासिल किए और एक मैच पूरी जद्दोजहद से बराबरी पर खत्म किया है। एक और सेमीफाइनल में मेजबान चीन मौकी शहर में दूसरे सेमीफाइनल में जापान के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 12:00 शुरू होगा। और खवातीन के क्रिकेट में T20 एशिया कप में कल दुबई में खेले जाने वाले खिताबी मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। गुज़िश्ता रात श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है। और अब अखबार के आईने के साथ हैं मोहम्मद शहजाद।
2: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबार ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से मुतालिक खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, ब्रिक्स ने दुनिया के ताकतवर तरीन G7 को पीछे छोड़ा। रोजनामा प्रताप ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा बातचीत की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार ने मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि रूस यूक्रेन तनाज़े का हल डिप्लोमेसी और बातचीत से ही मुमकिन है। इसके अलावा दीगर उर्दू अखबारात ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी की ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान के साथ दो तरफा मुलाकात को भी अहमियत के साथ जगह दी है। इसी अखबार ने दिल्ली के भारत मंडपम में बिजनेस फोरम के इफ्तिताही इजलास से कॉमर्स व सनत के वजीर पीयूष गोयल और वजीर खारजा एस जयशंकर के खिताब को भी उर्दू अखबारात ने सफ़े अव्वल पर दी है।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। 18वीं ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। आलमी रहनुमा इस दो रोजा तकरीब में अपने मुजाकरात में आलमी हुक्मरानी, तिजारत, सलामती और सप्लाई चेन पर तवज्जो मरकूज करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सरबरा कॉन्फ्रेंस से अलग चीन के सदर शी जिनपिंग और ब्रिक्स के दीगर रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स तिजारती फोरम में महफूज समुद्री रास्तों, सप्लाई के खुले रास्तों और तिजारती रुकावटों को दूर करने की अहमियत पर जोर दिया है ताकि आलमी तिजारत में पायदारी लाई जा सके। सऊदी अरब ने हमले के बाद अहम पाइपलाइन बंद कर दी है। यमन में रूसी बागियों ने अहम जजीरों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से बहर अहमर के जहाजरानी के रास्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई है। और इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेहत।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, खेलों में सफलता और प्रदर्शन सर्वोपरि है। लक्ष्य उन्मुख एथलीट प्रशिक्षण के प्रति समर्पित होते हैं। वे अच्छा खान पान अपनाते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं और पोषण संबंधी लक्ष्यों को पूरा करते हैं, जिसके लिए वे खेल चिकित्सक, शारीरिक स्वास्थ्य के फिजियोथेरेपिस्ट और पोषण संबंधी लाभ के लिए आहार विशेषज्ञ से परामर्श लेते हैं। लेकिन अक्सर मौखिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मौखिक स्वास्थ्य का असर प्रदर्शन पर सीधे रूप से पड़ता है। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता खिलाड़ियों के लिए मौखिक स्वास्थ्य। इस पर जानकारी दे रही हैं हमारी एक्सपर्ट दंत चिकित्सक और इम्प्लांटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या झा। भेंट करता है रश्मि गुप्ता।
1: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू रश्मि जी।
1: दोस्तों, हम अक्सर खिलाड़ियों की फिटनेस, डाइट और इंजरी प्रिवेंशन पर बात करते हैं, लेकिन मौखिक स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया जाता है। तो हमारे आज के अंक में हमारा विषय यही है, खिलाड़ियों के लिए मौखिक स्वास्थ्य यानी ओरल केयर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये कि एक खिलाड़ी के लिए अच्छी ओरल हेल्थ उसके ओवरऑल हेल्थ के लिए और उसकी परफॉर्मेंस के लिए कितनी जरूरी है।
2: एक खिलाड़ी के लिए उसकी ओरल हेल्थ या मौखिक स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है
1: जी,
2: मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर उसकी मौखिक स्वास्थ्य में कोई भी कमी होगी, उसके खान पान पे तुरंत असर पड़ेगा, और जैसे ही किसी खिलाड़ी के खान पान पे या न्यूट्रिशन पे असर पड़ता है, वैसे ही उसके खेल पे असर पड़ता है। एक जो हमारा खिलाड़ी होता है, उसका पूरा जो शरीर होता है, एथलीट अपने शरीर को ऐसे बनाते हैं कि वह अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस हर बार दे सके, वो उसके लिए हर समय अपने आप को तैयार रखते हैं। और उसमें एक छोटे सा दांत का दर्द, क्योंकि ज्यादातर लोग दांत के दर्द को छोटा लेके चलते हैं
1: जी जी,
2: वो उनको इतना परेशान कर सकता है कि कई बार एकदम बीच में परफॉर्मेंस के उनको फील्ड को छोड़ के जाना पड़ता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो अपने खेल से पहले जरूर अपनी मौखिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें
1: जी। अच्छा, खिलाड़ियों में आमतौर पर किस तरह की डेंटल प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिलती है और किस तरह के स्पोर्ट में कौन सी समस्याएं आ सकती है।
2: देखिए, खिलाड़ी ज्यादातर जो है जब अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं तो काफी ज्यादा फाइबर पे ध्यान देते हैं, प्रोटीन पे ध्यान
1: जी
2: देते
1: जी
2: हैं। फाइबर प्रोटीन ऐसा है कि अगर आपके मसूड़ों की बीमारियां चल रही हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं कि वो मुंह में फंसेगा। मुंह में फंसने की वजह से मुंह में सड़न होती, जिस वजह से हमें दांत का पूरा जो है कई बार इलाज कराना पड़ता है, जो कीड़ा लगता है फिर उसके बाद हमें उसका नसों का इलाज कराना पड़ता है। मसूड़ों की अगर हम सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो मसूड़ों से लगातार खून बह सकता है। खून बहने की वजह से जो है उसको खाने में तो परेशानी होगी होगी, अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा, उसके साथ साथ उसको हो सकता है कई बार हम दांत बचा भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जितनी जल्दी हमें ये चीज पता चलेगी उतनी जल्दी हम उसे सही करा सकते हैं।
1: तो एक खिलाड़ी को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए कि वो किसी भी तरह के मौखिक चोट से ग्रसित ना हो।
2: देखिए, मौखिक चोट खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा होती है खेल के दौरान, जैसे अगर हमारा बॉक्सिंग हुआ, हॉकी हुआ, ये मार्शल आर्ट्स का कोई भी स्पोर्ट
1: जी जी।
2: तो वहां पे तो चोट सामने से आती है। बॉक्सिंग में जब दो लोग होते हैं
1: जी,
2: हमारे उस कांटेक्ट में
1: जी
2: आते
1: जी।
2: हैं तो कई बार है कि उन्हें अपने मुंह को बचाना पड़ता है, उसके लिए वो हेलमेट पहनते हैं
1: जी जी जी।
2: बट जरा भी जो मुंह का इम्पैक्ट है, उस चोट का जो इम्पैक्ट है, वो अगर दांत तक हमारे पहुंचा, हमारे दांत हिल जाते हैं
1: जी,
2: निकल जाते हैं, कई बार जबड़ा टूट भी जाता है। तो इसके लिए ही हम सजेस्ट करते हैं कि हम माउथ गार्ड यूज करें। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के अलावा अगर नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में आए, जैसे कि हमारा वॉलीबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, क्रिकेट तो हमारे देश में सबसे ज्यादा
1: खेला जाता है जी,
2: इसमें एक तेज रफ्तार से आती हुई गेंद खिलाड़ी के मुंह पे लग सकती, फिर उसको वही परेशानियां हो सकती, दांत का हिलना, निकलना, तुरंत जो है बाहर आना। कई बार ऐसी स्थितियों में हो सकता है कि दांत निकलकर पेशेंट के मुंह में इतनी ज्यादा खून बहने लगे कि उसको फील्ड से हटना पड़ता है। और जैसे हमारे नॉर्मल हुए, जैसे जिमनास्ट हुए हमारे, साइक्लिस्ट हुए हमारे, रनर्स हुए हमारे, ये लंबे लंबे समय तक ये एंड्योरेंस अपनी ट्रेन करते हैं, लंबे लंबे समय तक इनमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन हमारी मौखिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा होता है क्योंकि वो पूरे के पूरे मुंह को हमारे जो है उसको
1: सुखा देता है,
2: सुखा देता है, और उसके साथ साथ उसमें ज्यादा चांसेस बढ़ा देता है कि सड़न होए, परेशानियां होए। जैसे ही हम डिहाइड्रेशन की स्टेज में जाते हैं, सबसे पहले उसका असर हमारे मुंह में आता है, छाले आते हैं, सब आता है। कोई भी एक ये परेशानी, कोई भी खिलाड़ी सालों तक तैयारी करता है, सालों तक अपने आप को इंटेंस तरीके से अपने खान पान पे ध्यान देगा, अपनी घंटों तक वो

0: ट्रेनिंग करेगा। और इन चीजों का अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो उसका पूरा का पूरा कंपटीशन भी कई बार जो है वो फेल हो जाता है।
1: अब हम जैसे आपने डिहाइड्रेशन की बात की, तो जनरली क्या होता है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कोई भी खिलाड़ी या तो पानी पीता है या फिर वो एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन करता है।
0: जी
1: तो आपको क्या लगता है कि जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं या जो स्पोर्ट्स ड्रिंक होते हैं वो खिलाड़ियों के लिए अच्छे रहते हैं या कहीं से वो उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं?
0: देखिए मैम, जो खिलाड़ी हैं उन्हें हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि आप डिहाइड्रेशन के लिए हमारी जो ड्रिंक्स हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट हुआ ये नहीं लें, या जो एनर्जी ड्रिंक है ये सब उनकी परफॉर्मेंस में हेल्प कर, तो हम इसके लिए उन्हें मना तो कभी नहीं कर सकते कि आप
1: जी
0: मत लीजिए। पर हाँ, इन चीज़ों से दांतों की सेहत पे असर पड़ता है। इन चीज़ों में कई बार जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर दिया जाता है, ग्लूकोज रहता है
1: जी
0: हमारा, तो अगर वो कंटिन्यूअसली जो है मुंह में रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, तो हमारी दांतों की सड़न की चांसेस बढ़ सकती है, मसूड़े में सड़न बढ़ सकती है। तो इसीलिए हम सारे के सारे एथलीट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को कहते हैं कि आप जितना हो सके या तो आप एनर्जी ड्रिंक लेकर एक बार कम से कम कुल्ला कर लीजिए, जो
1: ओके
0: कि फील्ड पे बहुत ही मुश्किल, पर अगर वो लगातार अपना एक चेकअप कराते रहेंगे तो कोई भी परेशानी होने से पहले हम लोग उसे देख सकते हैं,
1: जी
0: मैनेज
1: जी
0: कर सकते हैं।
1: जी
0: दांत की कोई भी परेशानी, मौखिक जो हमारा पूरा स्वास्थ्य है, वो कभी भी एक बहुत बड़ी परेशानी लेकर नहीं आता है, महीनों से सालों तक इग्नोर होता है तब जाके वो एक बहुत बड़ी परेशानी बनता है। इसीलिए अगर हर जो एथलीट है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अगर हर 6 महीने पर एक डेंटिस्ट के पास जाके अपना रूटीन चेकअप करा ले तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा उसको अपनी मौखिक स्वास्थ्य रखने में।
1: तो मुझे लगता है जो हमारे खिलाड़ी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे या जिनके घर में कोई ना कोई खिलाड़ी है, तो उन्हें इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि उन्हें कम से कम 6 महीने में
0: हाँ
1: अपने
0: जी,
1: मौखिक स्वास्थ्य का, अपने डेंटल चेकअप का
0: एक बार
1: एक
0: करा
1: बार
0: ले
1: जरूर कराना
0: जी।
1: चाहिए। अच्छा मैम, ये तो बात हो गई कितने अंतराल पर, लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि अगर खेल के दौरान कोई इंजरी हो
0: जी
1: जाती है,
0: जी जी
1: दांत
0: जी
1: टूट जाता है या मुंह में कोई चोट लग जाती है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: उस वक्त खिलाड़ी को क्या फर्स्ट एड करनी चाहिए? खासतौर पे मैं उन खिलाड़ियों की बात कर रही हूँ जो मैदान पर नहीं है, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने आप से तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए क्या सावधानी होनी चाहिए या फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए?
0: देखिए, जो आपने सवाल पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी डेंटल एसोसिएशन वो इस चीज में काम कर रहे हैं, कम से कम खेल के दौरान जो है वहां पर एक इमरजेंसी डेंटिस्ट प्रेजेंट रहे, ठीक है, वो रहे वहां पर, जिससे तुरंत अगर मुंह के हिस्से में कोई भी चोट लग रही है तो तुरंत वहीं पर जो है हमारे खिलाड़ी का दांत बचा सके,
1: जी जी
0: जो तुरंत हम लोग फर्स्ट एड दे सकते हैं वो दे सके। जहां तक बात आई, जो हमारे इतने खिलाड़ी हैं जो सेल्फ ट्रेन्ड रहते हैं, वो शुरुआत हमारे ही देश में नहीं, ज्यादातर देशों में होता है कि पहले सेल्फ ट्रेनिंग से धीरे धीरे फिर एक कोच के अंडर
1: जी
0: आते
1: जी
0: हैं, फिर
1: जी
0: एक अकेडमी में आते
1: बिल्कुल
0: हैं, उनके लिए बेस्ट रहता है कम से कम एक माउथ गार्ड इस्तेमाल कर। ये माउथ गार्ड का इस्तेमाल करना एक मिनिमम चीज है अगर आप खेल में जा रहे हैं तो। माउथ गार्ड बहुत आसान होता है, आप अपने किसी भी नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाके करा सकते हैं, और ये लगभग हर खेल में जरूरी है। इसको आप ऐसे लेके चलिए कि अगर किसी खिलाड़ी के नी में प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है, वो नी पैड लगा के चलता है, सर के लिए हेलमेट लगा के चलता है, वैसे ही हमारा एक माउथ गार्ड होता है जो दांतों को बचा के चलता है। और जैसे कि आपने पूछा कि जो हमारे खुद काम कर रहे हैं, खेल की तैयारी कर रहे हैं,
1: जी जी
0: उनके साथ अगर अचानक हो जाता है कुछ, तो वो खुद जो कर सकते हैं फर्स्ट एड, वो ये है कि जैसे अगर उनका दांत निकल गया है तो वो सिंपल सलाइन में या फिर दूध में उस
1: जी
0: दांत को रख लें और रख के अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास चले जाएं। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा खून निकल रहा है तो कोई भी हमारा गॉज पीस हो या कॉटन पीस हो, उसको साफ करके स्टेराइल कॉटन रख के उसको मुंह में रख के उसे दबाएं, ऊपर से ठंडी बर्फ की सिकाई करें। कई बार जब बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है तो हम ट्रेनेक्सा या कोई भी हीमोस्टैटिक एजेंट जो है,
1: जी
0: जो खून का बहने को रोकता है, ये उन्हें किसी ना किसी मेडिकल शॉप से लेना पड़ेगा, तो इससे हमारे खून का बहना जो है वो रुकता है। और किसी भी डेंटल फर्स्ट एड में दंत का कोई भी हमारा फर्स्ट एड जो है, जैसे अगर आपने दांत को दूध में रखा है, आधे से 1 घंटे के पास नजदीकी दंत चिकित्सक के पहुंचे। कोई भी कभी भी किसी समय पर ये नहीं सोचे कि मेरे साथ इतनी बड़ी चोट लग गई, अब मैं कैसे आगे करूंगा, उसके समाधान सब जगह है। खून सबसे पहले हमें हमें खून रोकना है, खून का बहना रोकना, उस पर जितना हम दबाव डालेंगे उतना जल्दी वो खून रुकेगा।
1: तो हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे ही खून बहना शुरू हो उसे हमें सबसे पहले रोकना है और उसके बाद अपने नियर बाय डेंटिस्ट से तुरंत मिलना है। अच्छा, जैसे हम आपने भी बात की कि कितने अंतराल पर या 6-6 महीने के बाद चेकअप जरूर कराना।

0: हाँ जी, तो क्या आपको लगता है कि सामान्य लोगों की तुलना में खिलाड़ियों को ये अंतराल और कम कर देना चाहिए, या उन्हें जल्दी जल्दी चेकअप कराना चाहिए, या अधिक कराना चाहिए?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल हमारा 6 महीने पे चेकअप होता है डेंटल, वो हर एथलीट को और हर सामान्य इंसान को कराना चाहिए,
0: जी
1: क्योंकि कोई भी हमारी मौखिक परेशानी जो है वो 6 महीने के चेकअप पे पता चल जाती है। इसके साथ साथ क्या है कि आजकल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज़ चल रही है कि किसी भी कॉम्पिटिशन में जाने से पहले ज़रूरी होता जा रहा है कि एक प्री डेंटल असेसमेंट किया जाए। प्री कॉम्पिटिशन डेंटल असेसमेंट कहते हैं
0: जी
1: उसको। उसमें क्लियरेंस दी जाती है, उसमें ग्रेडिंग करी जाती है कि किसी भी एथलीट के मुंह में क्या परेशानी है और उसको हम लोग किस ग्रेड पर हम रखते हैं कि कौन सी सबसे पहले ट्रीट करी जाए। तो जैसे अगर कोई दांत है जो निकलना है या जिसमें बहुत ज़्यादा सड़न है, वो ग्रेड 3 माना जाता है। जबकि अगर मसूड़ों की परेशानियां हैं और खून निकल रहा है और कुछ ही जगहों पे खाना फंस रहा है, वो ग्रेड 1 में आता है। तो पूरी तरह से जो है हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस पे काम कर रहे हैं कि हर स्पोर्ट्स पर्सन अपनी जो है मौखिक स्वास्थ्य पे ध्यान रख सकें।
0: खेलों के दौरान, जैसे कि आपने बताया कि नेशनल स्पोर्ट्स हम कर रहे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कोई मैच चल रहा हो, क्या ऐसे में मुंह की समस्या के कारण आज तक कभी किसी खिलाड़ी को प्रतियोगिता से ब्रेक भी लेना पड़ सकता है?
1: ये चीज़ हुई
0: जी
1: है 2012 के जो ओलंपिक गेम्स थे लंदन में, उसमें ये चीज़ हुई थी। लगभग 302 जो हमारे एथलीट थे 25 देशों से, उनके दांतों में इतनी परेशानियां थी कि उनको या तो अपना कंपटीशन डिले करना पड़ा था या ओलंपिक गेम्स में ओलंपिक विलेज में डेंटिस्ट को बुला के उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ा था।
0: तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो
1: जी
0: एक आम आदमी की तरह अपने आप को ना सोचें, और उन्हें ज़रूर अपना ओरल हेल्थ का ध्यान, एक्स्ट्रा केयर उनकी
1: हाँ
0: करनी
1: जी,
0: चाहिए।
1: एक खिलाड़ी खिलाड़ी इसीलिए है क्योंकि
0: हाँ
1: वह अपने स्वास्थ्य पे जितना ध्यान देता है
0: जी,
1: उतना एक नॉर्मल इंसान नहीं दे
0: नहीं दे
1: पाता।
0: पाते। तो मैम, चूंकि आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे लिसनर्स को दी, तो अब चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे वो खिलाड़ी और जिनके घरों में कोई ना कोई खिलाड़ी है, उनके लिए आप जनरल तौर पर क्या सावधानियां वो बरतें कि उनकी ओरल केयर समय से होती रहे और उन्हें किसी बड़ी परेशानी से ना गुजरना पड़े?
1: देखिए, किसी भी एथलीट के लिए, किसी भी सामान्य इंसान के लिए मेन चीज़ यही रहती है कि दिन में हम 2 बार ब्रश करें और 1 बार रात में हम लोग क्लोरहेक्सडीन माउथ वॉश होता है वो यूज़ करें। ये अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारी 90% दंत बीमारियां नहीं होंगी। इसके साथ अगर कोई भी बीमारी होती है तो आमतौर पर हम लोग जो कर सकते हैं घर पे वो ये है कि एक बार टॉर्च लाइट लगाएं और शीशे में एक बार अपना मुंह देख लें। हमारा मुंह हमारा एक ऐसा अंग है जिसे हम शीशे के सामने खड़े होके देख सकते हैं। मुंह जो है वो पूरे स्वास्थ्य की जो है वो एक तरह से पिक्चर दिखाता है, एक मिरर इमेज हो। आपको आपके दांतों की सड़न दिख जाएगी, आपके मसूड़े में अगर कहीं पे छाला हो रहा है वो दिख जाएगा, कहीं पे खाना फंस रहा है वो दिख जाएगा। ये
0: जी
1: बातें मुंह तुरंत बताता। तो एक आप अपना नॉर्मल जनरल एग्जामिनेशन करिए, साथ में हर 6 महीने पर एक बार अपने नजदीकी दंत चिकित्सक से मिलिए। अगर आप ये चीज कर रहे हैं, खासतौर पे हमारे खिलाड़ी अगर कर, तो उनको आगे कोई परेशानी नहीं होगी।
0: तो मुझे लगता है हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए आज डॉक्टर साहिबा की सारी जानकारी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी और उन्हें काफ़ी फायदा पहुंचेगा। मैम, आप यहाँ आई, आपने इतना सब कुछ बताया, अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद रश्मि।
2: खिलाड़ियों के लिए मौखिक स्वास्थ्य, अभी आप इस विषय पर दंत चिकित्सक और इम्प्लांटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या झा से जानकारी प्राप्त कर रहे थे। भेंट करता थी रश्मि गुप्ता। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं एक और महत्वपूर्ण भेंट वार्ता। विषय है फिजियोथेरेपी फॉर पोस्ट सर्जरी रिकवरी, यानी शल्य चिकित्सा के बाद किस तरह से फिजियोथेरेपी आपकी मदद कर सकती है आपको वापस अपने काम में, आपकी पहले के जैसे फॉर्म में लाने के लिए। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर AS मूर्ति। आप सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं एम्स न्यू दिल्ली में। आपको 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 2005 से सर आप एम्स में हैं।
3: जी मैम,
2: बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर AS मूर्ति का कि आपने समय निकाला है और सर आप स्टूडियो में आए हैं। और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं आजकल किसी न किसी कारण से सर्जरी हो रही है, चाहे माइनर सर्जरी हो चाहे मेजर सर्जरी हो, पर

0: फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि ये इम्पोर्टेंस क्यों है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से श्रोता समझें कि सिर्फ सर्जरी करा के छोड़ नहीं देना है, आपको वापस अगर रिहैबिलिटेट होना है तो किस तरह से फिजियोथेरेपी आपकी मदद कर सकती है।
1: बिल्कुल, आपने सही बताया। जो सर्जरी करने के बाद लोग ना वो ये सोच के बैठे हुए हैं, मेरे को दर्द हुआ था, मैंने जो है डिस्क सर्जरी कर लिया, मेरे को घुटना में दर्द हुआ, मैंने जॉइंट रिप्लेस कर दिया, अब तो हम दौड़ेंगे। बट यहाँ पे ये मिथ चेंज करना है, क्योंकि आपको जो सर्जरी 20% हो गया, अब रेस्ट 80% आप अपने नॉर्मल एक्टिविटी में वापस आने के लिए हम फिजियोथेरेपी की जरूरत है, जो बोलते हैं पुनर्वास। फॉर एग्जाम्पल, आप नी रिप्लेसमेंट कर दिए, हिप रिप्लेसमेंट कर लिए, तो अगर आप कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे ही चलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है मसल इम्बैलेंस हो जाती है। अब उसके प्रॉपर फाइंड आउट करके क्या एक्सरसाइज करना, जो एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट है, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है, जब संपर्क करेंगे तो आपको एक्सरसाइज रेगुलर सिखाएंगे, आप करवाएंगे भी है। अब नी रिप्लेसमेंट के लिए आपको पता है सर्जरी हो गया, फिर उसके बाद आप थाई मसल्स को कैसे मजबूत करना है, एडी में जो पिंडली मसल है उसको कैसे खिंचाव करना चाहिए, ये सारे चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप नॉर्मल लाइफ में लीड करेंगे। अदरवाइज क्या होता, आपने सर्जरी कर लिया, थोड़ा बहुत जो बता दिया वो कर लिया, फिर वो पेन हमेशा बना रहेगा, तो फिर वो सर्जरी करने का लाभ नहीं मिलेगा। तो वहां आप पोस्ट सर्जरी फिजियोथेरेपी करना जरूरी है, साथ साथ सर्जन ये भी एडवाइस करेंगे सर्जरी के पहले भी आप फिजियोथेरेपी करके मसल्स के अंदर जो खिंचाव होना चाहिए, जो मजबूत होना चाहिए, जॉइंट में लचीलापन होना चाहिए, वो सारी चीज आपको करेंगे तो पोस्ट सर्जरी के बाद आप बहुत फायदेमंद में रहेंगे।
0: अच्छा, एक बात और बताइए डॉक्टर मूर्ति, कि कई बार हम ये सुनते हैं नी रिप्लेसमेंट हो गया है, हिप रिप्लेसमेंट हो गया है, सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन जब हम पता करते हैं तो हमें पता लगता है कि उसने उसके बाद कुछ एक्टिविटी की ही नहीं।
1: बिल्कुल,
0: तो क्या ये कारण बनता
1: बिल्कुल
0: है?
1: आप एक छोटे से एग्जांपल बता रहे हैं, जिसको घुटना 90 डिग्री के ऊपर मुड़ नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं जो जोड़ है ना उसमें बहुत ज्यादा रगड़ाई हो रही है, तो इसका मतलब आपका थाई मसल बहुत टाइट है। अब आप मसल टाइट है तो इसलिए आप जॉइंट सरफेस बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है। अब आप मान लो उस मसल्स को ढीला करना है, अब उसके लिए आप आजकल बहुत नए नए टेक्निक है फिजियोथेरेपी के अंदर, वो सब आप अप्लाई करेंगे, वो करवाएंगे, आप फिजियोथेरेपिस्ट जाएंगे, वो समझाएंगे, सिखाएंगे, वो आप उस मसल्स को लचीलापन को ज्यादा बढ़ा देंगे, तो जॉइंट सरफेस के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर रिलीव हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे लोग यही कंप्लेंट है, मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ उतरती हूँ बहुत पेन होता है, तो कहीं ना कहीं आपको मसल्स के अंदर वो खिंचाव नहीं है, क्योंकि हमारा डे टू डे एक्टिव में कुर्सी में बैठते हैं चले जाते हैं, कोई भी हम पुराना रिवाज फॉलो नहीं करते हैं, जो इंडियन टॉयलेट में जो बैठते हैं उखड़ मुखड़ बैठते हैं वो कोई नहीं करता है, वेस्टर्न टाइप यूज करते हैं, पलती मार के हम पुराना क्या जमीन पर बैठ के खाना खाते थे वो सब बंद हो गया डाइनिंग टेबल पे, तो जो चीज आपको नेचुरली जो बचपन से जो स्ट्रेचिंग होती रहती है वो हम छोड़ दिए। अगर आप प्रॉपर बचपन से लेके अभी तक जब तक आप उकड़ मुकड़ जैसे स्क्वाटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर इंडियन टॉयलेट में जो बैठने का तरीका है, दूसरा पलती मार के बैठ के आराम से जो है खाना खाने का, तो ये जो चीज है ना ये हम नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये करते आएंगे तो आपका खिंचाव होती रहेगी, तो जॉइंट में प्रेशर नहीं पड़ेगी, जल्दी घुटना बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
0: ये आपने इस बात का जवाब दिया जो मैं अब पूछने वाली थी, कि अक्सर सुनने में आते हैं कि पहले तो नी सर्जरीज या ये सब रिप्लेसमेंट्स नहीं हुआ करते थे, अब क्यों इतने ज्यादा हो रहे हैं, तो आपने बताया कि हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, और जो हमारे नेचुरल जो एक्सरसाइजेज या स्ट्रेचिंग हुआ करती थी पुराने जमाने में जो हम फॉलो करते थे, वो चीज अब हम नहीं कर रहे हैं। और खासतौर पर जब बच्चों को हम देखते हैं सर, स्क्रीन टाइम और फोन के साथ या लैपटॉप के साथ वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनका बाहर निकलना भी कम हो चुका है, तो एक्सरसाइज तो दूर की बात है।
1: बिल्कुल, हमारा पुराना जवाब के साथ साथ हम इसको लिंक में ले आ रहे हैं। आप देखिए ना आजकल के बच्चों, आप देखिए, एक तो घर पे ही रहते हैं, घर पे चप्पल ही पहन के रहेंगे, वो कभी रफ सरफेस में गार्डन में नंगे पैर में चलते ही नहीं है, क्योंकि आपके जो फूट है ना, फूट में इतना सेंसरी पॉइंट्स हैं, तो आप बच्चे को आप ले जाके, हम लोग बचपन में क्या करते थे, खाली पैर में जाके खेलते थे, इतना बढ़िया आर्च बनता था, जो फूट में आर्च जो है आप एक शॉकर है, हमारा होल बॉडी की वही जो है टॉलरेट करता है, ये सारी चीज आपको जो है क्रिएट तब होती है, बचपन से ही होती है, बच्चे को एक्सपोज देते नहीं है, हर घर में देखिए कोई सीमेंटेड फ्लोर है ही नहीं है, सब टाइल्स है, तो बच्चे को वो एक्सपोज नहीं हो रहा, मैक्सिमम 100 में से कम आप देखेंगे तो 50-60% बच्चे फ्लैट फुट में रहते हैं, अक्सर कंप्लेन करते हैं चलते रहते हैं, पंजे में इतना दर्द होता है, घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, हमारे पास पेशेंट आते हैं सब बच्चे, स्कूल के बच्चे आते हैं जो हम कभी देखे ही नहीं, हम भी जब स्कूल लाइफ में हम देखा कोई भी ऐसे कंप्लेन नहीं करते, हमारे दोस्त में मेरे कमर दर्द हो रहा, एडी में दर्द हो रहा। अब आजकल का बच्चे देखिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया, प्ले टाइम आउटसाइड प्ले टाइम कम हो गया, जाते भी नहीं है, तो ये चीज आप बच्चे को आप प्रमोट करना, बच्चे को आप ले जाना पार्क में, इवन घर के बाहर भी आप थोड़ा खाली पैर में आप अपना

0: घर के साफ सफाई रखिए, ये सोच के बैठे हुए पैर में कुछ ना लग जाए, तो ये सब चीज बहुत जरूरी है बच्चे के भविष्य के लिए।
1: सर, ये फ्लैट फुट की आप बात कर रहे हैं, क्या फ्लैट फुट ठीक हो सकता है फिजियोथेरेपी से?
0: बिल्कुल मैम, वक्त के पहले अगर मान लीजिए अब ये जो है 18-20 साल है, अगर उस पहले अगर फाइंड आउट कर दिए उनका हम फूट, क्योंकि फ्लैट फुट क्यों हो रही है, फुट मसल्स के अंदर 4 लेयर है, अब मसल्स के अंदर प्रॉपर ताकत नहीं रहेगा तो पूरा फ्लैट फुट हो जाएगा मसल इम्बैलेंस वजह से। फिर अगर मसल्स में ताकत नहीं रहेगा, बोन के अंदर जो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं रहता। अब हम क्या करेंगे, बचपन से उनको फुट एक्सरसाइज सिखा देते हैं, आप पंजों को मांसपेशियों को कैसे मजबूत करना, उसके साथ साथ हम एक मॉडिफाइड इनसोल भी बना के दे देते हैं जो बच्चों को आर्च बना के रखता है।
1: कस्टमाइज्ड ही
0: कस्टमाइज्ड है, एंड दुकान में भी, शू की दुकान में भी बोलते हैं इसमें आर्च है, भाई आर्च किसके लिए बनाया, आपने एक स्टैंडर्ड साइज में बना दिया, बट कस्टमाइज्ड टाइलर मेड अगर करके देंगे तो ये आर्च भी बन जाएगा, आर्च के साथ साथ मेंटेन करने के लिए हम एक्सरसाइज भी सिखा के उसको हम करेंगे ताकि फर्दर डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकें।
1: जॉइंट रिप्लेसमेंट की जब सर्जरी होती है तो किस तरह से फिजियोथेरेपी आप क्या क्या बताते हैं?
0: देखिए सर्जरी जिस दिन होती है उसी दिन से हम जो है थोड़ा जो सर्जरी पार्ट में आप देखेंगे फ्लूइड कलेक्शन रहता है, रेडनेस रहता है, तो उसको हम थोड़ा आइस पैक वगैरह देके इन्फ्लेमेशन कम कर देते हैं, उसमें कुछ फूट एक्सरसाइज वगैरह कर देते हैं, साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज देते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा उस हिसाब से उनको सीढ़ी कैसे चढ़ना उतरना, घुटना कैसे मोड़ना है, सीधा करना है, कहां पे पिलो लगाना है, वो सब हम बताते हैं। जैसे एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ता हो गया, फिर हम जो है मसल को मजबूत करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ चलने के जो एक्सरसाइज है या तरीका है, जो गेट ट्रेनिंग बताते हैं वो भी हम बताते हैं, कैसे चलना चाहिए, कब जो है वॉकर यूज करना चाहिए, कब वॉकर हटाना चाहिए, वॉकर से फिर स्टिक में कब आएंगे, फिर स्टिक भी कैसे विड्रॉ करना, तो ये सारा फिजियोथेरेपी एक प्रोटोकॉल होती है। तो फिर हम सिखाते भी हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन रिप्लेसमेंट करेंगे तो फिर रेकमेंड करेंगे फिजियोथेरेपी करने के लिए पेशेंट। कुछ लोग समझदार हो जाते हैं, दो दिन फिजियोथेरेपी करके एक्सरसाइज सीख के वही ये सोच के बैठे हुए हम जीवन भर यही एक्सरसाइज करेंगे, बट इसमें प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज होती है, पहले सिंपल होगी, फिर हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, फिर अच्छे से हेल्दी हो गया, फिर स्ट्रेचिंग करा देते हैं, फिर गेट ट्रेनिंग करते हैं।
1: लगभग कितना समय लगता है किसी को पूरी तरह से रिहैबिलिटेट होने में?
0: देखिए ये कंडीशन वाइज है, टाइप ऑफ सर्जरी है, कंडीशन कैसे, उम्र के हिसाब से होती है। अब ओल्ड एज है, 70-80 साल है, उनको थोड़ा लंबा चल जाता है, थोड़ा हेल्दी है, किसी को 40-45 में भी लोग रिप्लेसमेंट हो जाते हैं,
1: पेशेंट है, टाइप ऑफ सर्जरी पे डिपेंड करता होगा। तो सर जैसे कुछ एक्सीडेंट्स के केसेस की बात करते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, हेड इंजरी हो गई या एब्डोमिनल इंजरी हो गई या किसी तरह की भी इंजरी हो सकती है, नी की इंजरी हो गई, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसमें किस तरह से आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से उनको सही करने की कोशिश करते हैं?
0: अब जिसको हेड इंजरी हो गया हम उनको हम आईसीयू से हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। हेड इंजरी में क्या होता है, वो सांस लेने में दिक्कत या फिर पहचानने में, उसका जो जीसी स्केल बोलते हैं अकॉर्डिंग स्केल के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। अब आईसीयू में हम क्या करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, वहां पे चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि जब वेंटिलेटर का कोई भी फॉरेन बॉडी के अंदर जाता है तो फिर वो चेस्ट इन्फेक्शन आ जाती है, बलगम वगैरह बन जाती है, अगर चेस्ट के अंदर क्लियर नहीं रहेगा यार, एक गैस एक्सचेंज नहीं होती है, तो इसलिए चेस्ट फिजियोथेरेपी है। पैर में टेढ़ापन नहीं आ जाए तो इसलिए वहां पे पैर में भी फिजियोथेरेपी सिखाते हैं, करते भी हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात करें, कुछ लोग जो है बाइक एक्सीडेंट या ऊपर से गिर जा रहे, ट्रॉमा मीन्स एक्सीडेंट नहीं है, वो ऊपर बिल्डिंग से भी हो जाते गिर जाते हैं ना, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है, गर्दन पे चोट लग जाता है, दोनों हाथ दोनों पैर पैरालाइज हो जाते हैं, अगर उसे कमर पीठ में अगर चोट लगा वो दोनों पैर पैरालाइज हो जाता है, तो उनको भी हम जो है उसी हिसाब से फिजियोथेरेपी करते हैं। वो भी आप कुछ लोगों का आधी मसल्स काम करता है, कुछ कंप्लीट पैरालाइज हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो कमजोर मसल्स को मजबूत करते हैं 2 महीने 6 महीना, किसी किसी के 2-2 साल भी, क्योंकि हेड इंजरी में क्या होता है वो सामने वाला का पहचान भी नहीं पाते हैं, वो क्या जब सामने वाला बात नहीं कर पा रहा आपको पहचान नहीं रहा, तो फिर उनको तो पूरी आपका नर्सिंग केयर बहुत जरूरी, क्योंकि प्रेशर सोर बन जाती है, जख्म बन जाती है, पैर अकड़न हो जाती है, उसको तो आपको कर करके मुलायम रख के, अगर नहीं चल रहा एटलीस्ट व्हील चेयर घुमाओ, सनलाइट, क्योंकि उसमें विटामिन डी भी कम हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बाहर निकलना बहुत जरूरी है, कई लोगों को मैंने ये बोलते भी सुना है कि फिजियोथेरेपी क्या है, हम घर पे योग तो कर रहे हैं, योग से ही ठीक हो रहे हैं हम, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा बताएं।
0: योगा बिल्कुल आज की जो हमारा लाइफ हम जी रहे हैं, योगा बहुत जरूरी है हेल्दी पर्सन के लिए बिल्कुल, जहां फिजियोथेरेपी है वहां पे क्या है थेरेपी डिजाइन हो जाएगी अकॉर्डिंग द पेशेंट। योगा क्या है, सूर्य नमस्कार तो मतलब वही स्टेप है,
1: जनरल है,
0: हाँ जनरल है
1: फॉर हेल्दी पीपल,
0: फॉर हेल्दी पीपल, एग्जाम्पल, अब वहां पे आप पेशेंट है, उनको कमर दर्द है, फिर हम कमर दर्द को भी जो है एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज नहीं होती है, किसी को जो है उल्टा लेट के पैर पीछे करना

0: होगा, किसी को सीधा लेट के ऊपर करना होगा, किसी के कोर मसल्स के ऊपर ध्यान देना होगा, किसी को फैसेट जॉइंट, मतलब इसमें कई ऐसे डिजाइन है जो पेशेंट को, हर पेशेंट का अलग थेरेपी होती है।
1: और इसमें मशीन्स भी आप बहुत यूज करते हैं?
0: मशीन्स इलेक्ट्रोथेरेपी, क्योंकि फिजियोथेरेपी क्या है, एक पार्ट इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर बहुत इलेक्ट्रोथेरेपी जो पेन रिलीविंग मोडालिटीज है, एक एक्सरसाइज थेरेपी है, उसमें हम एक्सरसाइज थेरेपी एक्सरसाइज भी सिखा सकते हैं। आजकल जो मैनिपुलेशन थेरेपी है, मायोफेशियल रिलीज, बहुत टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोथेरेपी ऐसे जो पेन किलर टाइप का ही है जो हम लगाते हैं, पेन तो कम हो जाएगा, बट मैक्सिमम आजकल जो फिजियोथेरेपिस्ट हैंड्स ऑन में हो गया, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का जो मैजिक 10 उंगली में है, ये दर्द दूर करने के लिए आप एक गोली खा के रिलीव होने में जो टाइम है, उससे कम टाइम पे वो 10 उंगली का जो मैजिक है वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास है, वो यूं मिनटों में दर्द दूर कर देगा। तो इसलिए फिजियोथेरेपी के जो एक टैग लाइन है, हम फिजियोथेरेपिस्ट पेन को ट्रीट नहीं करते हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट दर्द को इलाज नहीं करते हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट दर्द कारण को इलाज करते हैं, ताकि जो है जड़ से कदम हो।
1: बहुत अच्छी बात आपने फिजियोथेरेपी के बारे में बोली, और बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो इसकी इम्पोर्टेंस को आज समझ पाएंगे। एक चलते चलते और प्रश्न करना चाहूंगी कि हमने एक शब्द सुना है डॉक्टर साहब, न्यूरो फिजियोथेरेपी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये क्या है, हमारे श्रोताओं को समझाएं।
0: ठीक है, एक तो फिजियोथेरेपी एक समुद्र है, क्योंकि इसके अंदर आप कई ऐसे सब डिविजन है, न्यूरो, कार्डियो, पीडियाट्रिक, रिहैबिलिटेशन, कैंसर,
1: किस तरह
0: हर चीज के होती है। तो इसमें आप रिहैबिलिटेशन, जो आप न्यूरो की बात, न्यूरो में आप देखेंगे बच्चों में भी प्रॉब्लम, बूढ़े में भी प्रॉब्लम होती है, मिडिल एज में। अब बच्चों में आप देखेंगे इसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, सर्वल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम है, ये सारा आप देखेंगे, वो भी डिपेंड फिजियोथेरेपी है। अब आप सीपी एससीपी में कैसे ऐसे ऐसे वैरायटीज हैं, तो उसमें माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है, किसी को अकड़न ज्यादा रहता है, किसी को जो है अथिटाइट टाइप बोलते हैं, कंट्रोल नहीं रहता, वॉलंटरी कंट्रोल नहीं रहता, तो उसके कोई बैलेंसिंग प्रॉब्लम रहता है, अटैक्सिक बोलते हैं। वो जो पेशेंट है उसको क्या थेरेपी चाहिए, उसके एक्सपर्ट है। अब फिजियोथेरेपी के अंदर जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न्यूरो सर्जन, इस तरह ऑर्थो फिजियोथेरेपी अलग कोर्स हो, न्यूरो फिजियोथेरेपी अलग कोर्स हो, सुपर स्पेशलाइज्ड। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज हम समझाते हैं।
1: बहुत सारी जानकारी आपसे हमें मिली है और निश्चित तौर पर हम इसका फायदा भी जरूर उठाएंगे, और बहुत कुछ अभी जानना भी बाकी है। तो आपको हम ये कहेंगे कि आगे भी कार्यक्रमों में आते रहिए, हमें समझाते रहिए कि फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है, और उसकी जो सब ब्रांचेस की बात करेंगे आज समय नहीं है, पर आगे हम कोशिश करेंगे इन विषयों को भी छुएं और अपने श्रोताओं तक पहुंचाएं। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: अभी आप फिजियोथेरेपी फॉर फोस्ट सर्जरी रिकवरी, इस विषय पर डॉक्टर ए एस मूर्ति, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, एम्स न्यू दिल्ली से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: अब आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रही हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में दिन में 1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म कर्तव्य के कुछ गीत। इसके अलावा आज दिन में 2:30 पर आप सुन सकते हैं एक रूपक राग के मंसूर पंडित मल्लिकार्जुन। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। इसके अलावा आज आप सुनेंगे 10:10 पर आपके ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का संगीत, आपकी पसंद। आप हमें ईमेल कर सकते हैं और अपने पसंदीदा गीत सुन सकते हैं। तो आपके फरमाइशों का, आपके ईमेल पर ईमेल का हमें लगातार इंतज़ार रहेगा, वक्त रहेगा 10:10 पर। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 9:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम धरती आकाश।
4: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इन पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह उन तक नई नई जानकारियां नए नए विशेषज्ञों के द्वारा पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि पता चला है 22 जुलाई 2026 को कि सिक्किम के नामची जिले में

0: एनएचपीसी के निर्माणाधीन तीस्ता विद्युत परियोजना की सुरंग में एक दुर्घटना हो गई और सूचना अनुसार 20 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। इस तरह की दुर्घटनाएं उस पनबिजली परियोजना के लिए या बांध बनाने के लिए होती रहती है। आखिर बांध की सुरक्षा के उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर तकनीकी क्या है, इसका विज्ञान क्या है, किस तरह से जगह का और उस जमीन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और उस तकनीक के अलावा इसमें जन जागरूकता किस तरह की होनी चाहिए लोगों के लिए, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा। आप भारत सरकार के राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण में पैनल बद्ध तकनीकी विशेषज्ञ हैं, साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार में विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर चुके हैं और डिजास्टर एंड क्लाइमेट एक्शन फेडरेशन नई दिल्ली के संस्थापक भी रहे हैं। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं श्री मनी कुमार। आप असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन कार्यक्रम, मेघालय की एशियाई विकास बैंक समर्थित जलवायु अनुकूलन एवं सामुदायिक जल संचयन परियोजना, सिक्किम की जल विद्युत परियोजनाओं, मराठवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न नदी जोड़ों एवं जल हस्तांतरण से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता दे चुके हैं। डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा जी और श्री मनी कुमार जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले हम बात करते हैं बांध के सुरक्षा की, विज्ञान की, तकनीक और जन जागरूकता की। तो एक जब बांध का निर्माण किया जाता है तो उस जगह का चुनाव और बांध की क्षमता, इन सब का निर्धारण कैसे किया जाता है? मिश्रा जी,
1: तो बांध का जो चुनाव होता है उसके लिए कई तरह के साइंटिफिक और रिसर्च स्टडीज की आवश्यकता होती है। जब भी सरकार किसी भी क्षेत्र में बांध बनाने के लिए घोषणा करती है उसके पहले उनको सबसे प्रमुख 3 से 4 तरह के साइंटिफिक स्टडीज करनी होती है। सबसे पहले तो बांध बनाने के लिए जो उपयुक्त स्थान है उसके लिए उसका जियोलॉजिकल और साइस्मिक स्टडीज सबसे मैंडेटरी होता है, बिकॉज जहां पर बांध बनेगा उसके अंदर की भू संरचना क्या है, उसमें जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, कौन कौन से रॉक प्रोफाइल में वो डैम बनने जा रहा है, तो उसके रॉक की स्टेबिलिटी और वहां पे जो सोयल की स्टेबिलिटी, इन दोनों का असेसमेंट बहुत डिटेल रूप में किया जाता है। इसके साथ साथ उसकी टोपोग्राफी के एस्पेक्ट्स को देखना बहुत जरूरी, बिकॉज बांध बनाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली विस्तृत हैं, जैसे कि हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट जनरेशन है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लड कंट्रोल्स हैं और अन्य हैं। तो इसके साथ साथ जो उस बांध बनाने के लिए जो लोकेशन का चुनाव करना है वहां पे जो अर्थक्विक की क्या प्रोफाइल है, तो उसके लिए साइस्मिक स्टडीज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट हो सकता है बांध बनाने के दौरान या बांध बनाने के बाद, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है या इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे, उन सब के लिए बेसिकली मुख्यतः 3 तरह की स्टडीज प्रमुख होती है, जो एक जियोलॉजिकल असेसमेंट, उसमें उनका स्ट्रक्चरल असेसमेंट, साथ में साइस्मोलॉजिकल भूवैज्ञानिक या वहां का जो अर्थक्विक का निर्धारण, साथ में उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को देखा जाता है।
0: अब जैसा कि अभी वर्तमान में मॉनसून का समय है और बारिश अनिश्चित होती जा रही है, कभी कभी काफी एक ही साथ बहुत सारी बारिशें हो जाती है और कई बार लोग उसका पूर्वानुमान नहीं कर पाते हैं संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, तो मानसून के दौरान बांधों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या होती है और ऐसे समय में किस तरह की विशेष सावधानियों का पालन किया जाता है?
1: इस संदर्भ में डैम जो ऑपरेटर्स होते हैं या जो अलग अलग प्रबंधन की जो डैम्स हैं, जैसे कुछ डैम्स तो प्राइवेट ओन्ड होते हैं, कुछ डैम भारत सरकार के नियंत्रण में होते हैं, उनका समय समय पे होता रहता है। इसमें जो डैम में जो वर्कर हैं वहाँ के डैम के इंचार्ज हैं, वो प्री एंड पोस्ट मानसून एक इंस्पेक्शन अपने तरीके से करते हैं, साथ में ही जो भी डैम ऑपरेटर्स हैं या डैम यूनिट्स हैं उन डैम यूनिट में एक इमरजेंसी एक्शन प्लान एक विस्तृत जो है खाका सरकार तैयार करवाती है, जो कि नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट में एक मैंडेटरी उनका एक डॉक्यूमेंट है। तो इमरजेंसी एक्शन प्लान जो होता है उसमें अगर कोई इमरजेंसी डैम में आती है, अचानक जल स्तर बढ़ता है या अगर डैम के ब्रेक की सिचुएशन होती है, तो उसमें जो इमरजेंसी एक्शन प्लान में जो भी प्रोटोकॉल्स दिए होते हैं, जैसे कि मान लीजिए गेट में अचानक पानी बढ़ रहा है तो उस संदर्भ में क्या करें, उसमें डैम को ओपन करें, साथ में उनके जो डिजास्टर रिस्पॉन्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि स्टेट में आपका डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है उनको सूचना देना, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, साथ में SDRF, NDRF, पुलिस, तो जब भी इस तरह की अचानक कोई दुर्घटना होने का ऑब्जर्वेशन होता है तो इमरजेंसी एक्शन प्लान में उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए होते हैं, वो पूरी तरह से निर्धारित होते हैं और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को वो सारी सूचनाएं रहती हैं कि कौन से पर्टिकुलर डैम में उसका EAP क्या है और EAP के अंदर कौन कौन से जो प्रभारी हैं या अधिकारी हैं जो नियुक्त हैं, किनका क्या काम है। तो इमरजेंसी जो एक्शन प्लान है वो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है और उसमें डैम में आने वाली कोई

0: भी समस्या है, अचानक जल स्तर बढ़ रहा है, या कोई डिजास्टर ऊपर आ गया, कोई ग्लॉफ का इंसिडेंस हो गया, उसमें जो भी सावधानियां बरतनी है उसके लिए ईएपी अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। और ये एनडीएसए के एक मैंडेटरी जो एक डॉक्यूमेंटेशन है, असेसमेंट है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण
1: तो
0: है।
1: ये क्या कानूनी
0: ये
1: प्रावधान है?
0: कानूनी प्रावधान है नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट में। ये जितने भी छोटे या बड़े स्तर के डैम है, चूंकि भारत में अभी करीब धर्मा जो पोर्टल है, करीब 6,500 से ज्यादा डैम जो है उसमें रजिस्टर्ड है। धर्मा पोर्टल जो नेशनल सीड एंड वाटर कमीशन का एक डिजिटल रिकॉर्ड है, भारत में जितने भी छोटे बड़े डैम है, वही ओल्ड एज डैम है जो 100 साल से अधिक कुछ डैम्स है, करीब 290 डैम भारत में ऐसे हैं जो कि 100 साल से ऊपर या ओल्ड एज डैम्स हैं, वही 50 साल से पुराने डैम करीब 1,000 से अधिक उनकी संख्या है। तो इन सब के रख रखाव, उनके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी असेसमेंट, या अगर कोई वहां पे दुर्घटना हो जाती है डाउन स्ट्रीम में, जो जनता वहां रहती है, लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी मतलब बस्तियां हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक डैम है उसका जो कैचमेंट एरिया है या उसका जो इम्पैक्ट एरिया है, अगर बांध टूटता है वो काफी बड़ा है। तो इस केस में भारत सरकार ने जो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में बनाया है, उस डैम सेफ्टी एक्ट में इमरजेंसी एक्शन प्लान और उसका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी एक मैंडेटरी ऑप्शन है। वो हर डैम यूनिट अपने लेवल पे बनाता है, उसमें सारे प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स को लिख करके कंसर्निंग जो एसडीएसओ है और एनडीएसओ उसको जमा करना पड़ता है। तो सारा जो क्रियान्वयन है वो उसी एक्शन प्लान के हिसाब से ही ऑपरेट होता है।
1: मनी कुमार जी, जो बांध के जो डाउन स्ट्रीम में लोग रह रहे हैं उनके लिए सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई बार वो पहाड़ी इलाकों में देखते हैं नदी सूखी है और अचानक पानी छोड़ा जाता है, तो उस स्थिति में इवैल्यूएशन के लिए या इवैक्यूएशन के लिए किस तरह की प्लानिंग होती है, और वहाँ के लोगों को क्या किसी तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, मॉक ड्रिल किया जाता है, प्रशिक्षण या जन जागरूकता कार्यक्रम आदि किया जाता है, तो वो किस तरह का है?
2: एनडीए के प्रोटोकॉल के तहत आज के डेट में जितने भी डैम्स हैं उनका हम लोग डैम ब्रिज एनालिसिस करते हैं। डैम ब्रिज एनालिसिस या डैम ब्रेक एनालिसिस के आधार पे हम ये जानते हैं कि अगर डैम ब्रिज कर जाता है, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेज हो, या तो एक्सट्रीम फ्लड हो, क्लाउड ब्रस्ट हो, ग्रोव का इफेक्ट हो, एकाएक ज्यादा पानी आ जाता है, हालांकि हमारे डैम्स में उसका प्रोविजन रहता है, फिर भी अगर उस तरह के अगर सिचुएशंस आ जाते हैं उसके लिए हम लोग एक डैम ब्रेक एनालिसिस करते हैं। ये इसका प्रावधान एनडीएसए में किया गया है, ये हर डैम्स के लिए आवश्यक होता है। और उस डैम ब्रेक एनालिसिस के बाद हम देखते हैं कि अगर डैम ब्रेक करता है, डैम फेलुअर होता है, तो उसका पानी डाउन स्ट्रीम में नीचे के क्षेत्र में कहाँ तक फैलता है, उसका एक्सटेंट कहाँ तक जाता है, और वो पानी का जो जमाव होता है उसका क्या डेप्थ है, किस वेलोसिटी से वहां पहुंचता है, उसके अराइवल का समय क्या है, ये सारी जानकारी हम लोग उस एनालिसिस के आधार पे निकालते हैं और एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनता है, और उस इमरजेंसी एक्शन प्लान में वो सारा चीज समाहित रहता है, और अकॉर्डिंगली हम लोग एक प्लान इवैक्यूएशन का भी उसमें रखते हैं कि अगर इस टाइप की स्थिति आ जाती है, अगर ये हमारा एरिया इनंडेट हो जाता है तो वहां के लोगों को कैसे हम इवैक्यूएट करेंगे, और इसमें हमारा पूरा सिस्टम्स लगा होता है, हमारे केंद्रीय एजेंसी, राज्य स्तर की एजेंसी और लोकल प्रशासन और कम्युनिटी, ये सारे मिल के इस आपदा से हम लोग निजात पाते हैं। तो ये सारा प्रावधान किया हुआ है और आज की स्थिति में हम उसको करने में सक्षम है।
0: इसमें कुछ चीजें मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी एक्सपर्ट रहा हूँ, तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के साथ साथ इमरजेंट सिचुएशन में अगर कोई डिजास्टर आती है, अचानक फ्लड लेवल हो गया या ऊपर कोई लैंडस्लाइड हो गया या ग्लॉफ हो गया, तो उस सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना हुआ है, क्योंकि डैम जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो 3 लेवल का स्ट्रक्चर भारत में बनाता है। ऊपर तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, उसके बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनी हुई है, इसके बाद जो लोकल जो प्रशासन है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये मैंडेट होता है कि अपने क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट में अगर इस तरह के कोई डैम या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं तो वहाँ पे समय समय पे मॉक ड्रिल हो, एक प्रॉपर सिचुएशन को क्रिएट करके, जैसे मान लीजिए कि अचानक दुर्घटना हो जाए तो उस केस में लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है, लोकल जो वहाँ पे प्रधान होते हैं उनको बुलाया जाता है और एक पूरा मॉक ड्रिल किया जाता है कि उस सिचुएशन में कैसे करें, सपोज अगर इवैक्यूएशन मास इवैक्यूएशन प्लान करना है तो कैसे करें, तो उसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फुली इन्वॉल्व होता है,
1: उसमें लोगों को अवेयर
0: अवेयर किया जाता है।
1: आजकल जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर जगह दिखने को आ रहा है, अत्यधिक वर्षा, अचानक बाढ़, फ्लड्स के भी आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप दोनों के अनुसार अंत में जानना चाहेंगे कि विज्ञान, आधुनिक तकनीक, प्रभावी कानून और जन जागरूकता, इन चारों के समन्वय से भारत को बांध

0: रक्षा के क्षेत्र में और अधिक सक्षम कैसे बनाया जा सकता है?
1: जहाँ तक बांध की सुरक्षा का सवाल है तो हमारे देश में नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट 2021 बना है, जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं। 2021 के पहले वैसा कोई यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, और जो भी होता था वो CWC केंद्रीय जल आयोग के गाइडलाइंस में किया जाता था। लेकिन ऐसा पाया गया कि बहुत सारे हमारे जो बांध हैं वो एक स्टेट के नहीं दो स्टेट के जुडिक्शन को कवर करते हैं, या फिर वैसी स्थिति में अगर कहीं कोई रिस्क है तो एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क होना जरूरी होता है। तो ये सोचते हुए 2021 में एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया, नेशनल लेवल पे एक कमेटी बनी और एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का गठन किया गया। उसी तरह से फिर राज्य स्तर पे भी एक कमेटी है और कमेटी के अलावे एक ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया गया, जिसे स्टेट SDSO के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे चीज एक्ट के हिसाब से गठित किए गए हैं। अब रहा कि ये हमारे डैम्स के संचालन में मदद करते हैं और जो ओनर्स हैं इसको फॉलो अप करें, डैम सेफ्टी के लिए इसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, इसका सर्विलेंस प्रॉपरली होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, ऑपरेशन मेंटेनेंस होना चाहिए। ये सारे चीज हमारे जो अथॉरिटी है उसको देखते रहते हैं कि किसी तरह की उसमें कोई कमी तो नहीं है, और उसमें वो मदद करते हैं।
2: जैसा कि आपने बताया क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है और हमारे डैम जितने भी हैं बिकॉज बहुत सारा पानी उनमें स्टोर होता है, तो उसके लिए NDSE की जो गाइडलाइन है उसमें कई सारे प्रावधान है, जैसे कि CDSE है, कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी वैल्यूएशन, वो अभी मैंडेटरी है सारे डैम्स को करना है और वो 2026 दिसंबर तक सारे डैम को कम्प्लीट करना है। अभी भारत सरकार में जितने भी स्टेट में डैम्स है सब लोगों ने भी CDSE करवाने का ऑलमोस्ट एकदम बीड़ा उठाया हुआ है। मैंने भी काफी सारे डैम में CDSE में मैं कार्यरत हूँ, पार्टिसिपेट भी किया है। जो डैम सेफ्टी के इश्यूज हैं बहुत ही कंसर्न में है और सारे डैम ऑपरेटर्स एवं भारत सरकार, राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज भी सेफ्टी को लेकर के कई सारे कदम उठा रहे हैं। इसमें कई सारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं रिस्क असेसमेंट्स करने के लिए, और इसमें जैसे कि 8-10 मैंडेटरी कंप्लायंस है, स्टडीज है, जैसे कि आपका CDSE है वो सबको करना है, इमरजेंसी एक्शन प्लान सबको बनाना है, डैम ब्रेक एनालिसिस सबको करना है, हजार्ड क्लासिफिकेशन होना अनिवार्य है क्योंकि डाउन स्ट्रीम में लोग रहते हैं तो रिमोट सेंसिंग GIS का उपयोग करके कैचमेंट एरिया में फ्लड लेवल कितना बढ़ेगा,
0: ड्रोन वगैरह से भी
2: असेसमेंट करते हैं। और पिछले करीब 8-10 साल में हमने बहुत सारे डैम फ्लड में डैम को टूटते हुए देखा, जैसे चमोली इवेंट 2021 हुआ, सिक्किम में 2023 में, और आपने आज जिक्र किया कि बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना हुई। तो इन सबको देखते हुए NDSE एक्ट में काफी सारे कंप्लायंस और स्टडीज ऑलरेडी एक्सपर्ट ने बताया हुआ है और इन सबका पालन भी डैम ऑपरेटर्स चाहे प्राइवेटली ओन डैम हो या गवर्नमेंट संचालित जो भी डैम हो उसको कर रहे हैं। और अभी भारत सरकार ने रिसेंटली करीब 100-101 लोगों की लिस्ट भी जारी किया एक्सपर्ट की, और वो सब लोग अलग अलग प्रदेशों में जहां जैसा उनका हो रहा है वो लोग अपने हिसाब से उसको असेसमेंट में इन्वॉल्व है। भारत सरकार इस पे बहुत सचेत है और मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 8-10 सालों में डैम सेफ्टी में भारत ने बहुत अच्छा काम किया, चूंकि एक ड्रिप प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक फंडेड है जिसमें डैम के रिपेयर और सारी सुविधा की गई है, साथ में धर्मा पोर्टल जो डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ डैम है, इसके पहले हमारे पास नहीं थे इतने रिकॉर्ड, तो धर्मा पोर्टल में करीब 6,600 से अधिक डैम जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड में है और उसमें सब कुछ असेसमेंट वगैरह स्काडा सिस्टम के थ्रू सब कुछ हो रहा है।
0: निश्चित रूप से बांध के निर्माण के बाद बांध की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा जी और श्री मणि कुमार जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने बांध सुरक्षा, विज्ञान, तकनीक और जन जागरूकता विषय पर विस्तृत जानकारियां दी। आकाशवाणी आने के लिए और इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
4: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके हाजिर हाँ मैं जसपाल कौर ते अज दे प्रोग्राम विच असी सुनांगे एक वार्ता। इस तो अलावा माता दियां भेटां भी सुनांगे। अज 12 सितंबर है ते अज दा दिन संयुक्त राष्ट्र दक्षण तो दक्षण सहयोग दिवस वजों मनाया जांदा है। इस दिन दा मुख उद्देश विकासशील देशां वल्लों एक दूजे नाल अपने ज्ञान तजर्बे हुनर तकनोलॉजी अते सफल तरीकियां नू सांझा करना है। ए दिन दक्षण तो दक्षण अंतरराष्ट्रीय सहयोग दी महत्ता ते जोर दिंदा है। जलवायु परिवर्तन होवे, खुराक सुरक्षा जां सेहत संकट, अजोके समय विच कोई भी देश इकल्ला विश्विक चुनौतियां दा हल नहीं कर सकदा। ए सिर्फ देशां विचकार सहयोग दी गल नहीं, सगो बराबरी नाल सिखण अते सांझे तौर ते अगे वधण दी सोचे, जिस दे तहत एक देश दा तजर्बा दूसरे देश लई किसी भी चुनौती जां समस्या दा हल बन सकदा है। दक्षण तो दक्षण सहयोग सानू याद दिवांदा है कि भावें दुनिया विच वख-वख देश ने, वख-वख भाषावां ने, वख-वख सभ्याचार ने, पर साडियां कई चुनौतियां अते टीचे सांझे ने। ज्ञान सांझा करन नाल ज्ञान घटदा नहीं, सगो वधदा है। तजर्बे सांझे करन नाल नवे हल निकलदे ने अते सहयोग नाल ओ कम भी मुमकिन ने जो इकल्ले करना किसी भी देश लई मुश्किल हो सकता है। दक्षण दक्षण सहयोग विकास का एक महत्वपूर्ण तत् है, जिस दे नतीजे देशां विचकार असमानतावां नूं दूर करन अते टिकाऊ विकास दे हरेक टीचे नूं प्राप्त करन विच मदद कर सकते ने। ए तां गल हुई दक्षण तो दक्षण सहयोग बारे, ते आओ प्रोग्राम की शुरुआत करदे हां परवेज पेजी ते सलीम दी गाई माता दी इस भेंट दे नाल। आए दर्शन करन पुजारी मखोल बूहे मंदरां दे।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी

0: वर्ग जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंचे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो रेल का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। ओडिशा के दक्षिणी हिस्से में कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी तेज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान के 131 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 4 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। यूएस ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने आज पहले सेमीफाइनल में रूसी खिलाड़ी करेन खाचनोव को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आयरना सबालेंका आज रात न्यूयॉर्क में फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकीना का सामना करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Sarabjit Kaur. The 18th BRICS summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy security, healthcare, disaster resilience, and critical supply chains. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, and Iranian President Masoud

0: पेश किया। द समिट विल बिगिन विद अ क्लोज सेशन फॉर ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज ऑन इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस एंड स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म। द प्राइम मिनिस्टर शेड्यूल्ड टू होल्ड अ सीरीज ऑफ बायलैटरल टॉक्स विद ब्रिक्स लीडर्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट टुडे। दीज इंक्लूड मीटिंग्स विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Lee Myng Hung. Prime Minister Narendra Modi has called for secure sea lanes, open supply routes and the safety of seafarers to sustain global trade. He also urged BRICS countries to work towards removing trade barriers and expanding opportunities for businesses. Mr. Modi stated this while addressing leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi last evening.
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: Amid the worsening flood situation in Uttar Pradesh, the state government has stepped up relief and rescue operations to assist affected families. At least 25 districts are currently affected by flooding following heavy rains and the release of water from dams. According to the State Relief Commissioner's Office, around 8,000 people were shifted to safe locations on Thursday alone, taking the total number of evacuated people to around 21,000. Affected people are also being provided safe shelter, with around 3,000 individuals currently staying in relief camps. Lok Sabha Speaker Om Birla has extended greetings to citizens on the occasion of the Prakash Purb of Sri Guru Granth Sahib today. In a social media post, Mr. Birla said that Sri Guru Granth Sahib imparts a profound spiritual message of humanity, love, equality, service, compassion and harmony. Saudi Arabia said that it has shut down a major cross-country oil pipeline a day after it was attacked by drones. The statement by country's Ministry of Energy said the east-west pipeline after it was attacked the day before. The statement called the shutdown a precautionary measure. The east-west pipeline has played a key role in Saudi Arabia's ability to continue exporting oil following the disruption of the Strait of Hormuz during Iran's war with the US and Israel. The Saudi Foreign Ministry blamed the attack on several drones that came from Iraq. The Iraqi government condemned the assault and ordered an investigation. In US Open tennis, 8th seed Ben Shelton has set up men's singles title clash with top seed Alexander Zverev. Zverev of Germany defeated unseeded Russian player Karen Khachanova 6-3, 7-6, 7-6, in the first semi-final this morning. Later in the other last four match, Ben Shelton overpowered 11th-seeded Francis Tiafoe 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 in an all-American clash. In women's singles, defending champion Aryna Sabalenka will take on second-seed Elena Rybakina in title clash in New York later tonight. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy rainfall accompanied by thunder squall for coastal Andhra Pradesh today. According to IMD, heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Gujarat, Konkan and Goa. And that is the end of this news bulletin.
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 10:10 हुए हैं। ये वक्त है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपकी फरमाइश का, जिसमें हम आपके पसंद के गीत सुनवाते हैं और ये पसंद आप हमें भेजते हैं ईमेल के थ्रू। तो आज बहुत सारे ईमेल्स हम लोगों को मिल चुके हैं और उन तमाम ईमेल पर हम आधारित आपको कार्यक्रम सुनवा रहे हैं। बहुत सारे गीत मैंने निकाले भी हैं, बहुत सारे गीत मैंने क्यू भी किए हैं और उम्मीद है ये गीत आपको पसंद भी आएंगे और ये गीत कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश से मिलते जुलते हों। जो पहला ईमेल मुझे इस समय दिखाई दे रहा है वो ईमेल मुझे अनिल ताम्रकर का दिखाई दे रहा है और ये लिखते हैं कि वक्त की रफ्तार के बीच ज़िंदगी की खूबसूरती, वक्त को महसूस करने का हर अंदाज तमाम हालतों, बहुत सारी बातें उन्होंने वक्त के बारे में लिखी और कहते हैं कि इसलिए शायद ऐसा आपको हर रंग बेरंग महसूस होता है और प्यार करने का

अंदाज हर रंग को अपने दिल के करीब महसूस करता है। शिवाजी चौक कटनी से इन्होंने ये मेल हमें भेजा है और इनका नाम हम शामिल कर रहे हैं। अगला ईमेल हमें मिला है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा और इनके बहुत सारे साथी हैं, संदीप कौर हैं, सुरेश जाटव हैं, सुरेश, अभिजीत जाटव, अभिषित शर्मा, और लिखते हैं कि विनम्र निवेदन यह है कि आप हमारा ईमेल शामिल कर लीजिए, हमने आपका मेल शामिल कर लिया है। एक और ईमेल हमें मिला है ओम प्रकाश राय का। देखिए, ईमेल आपके हमें मिल ही रहे हैं, आपके पसंद का गीत हम आपको सुनवाएंगे क्योंकि यह आप ही का कार्यक्रम है, लेकिन अगर गीतों के साथ कुछ बातचीत हो जाए, कुछ संदेश जो आप देना चाहते हैं अपने दोस्तों को हमारे माध्यम से, वो बताइए। और अगर हम दिल्ली के लोग हमें सुन रहे हैं या दिल्ली के बाहर के लोग सुन रहे हैं, तो आज शनिवार का दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन आपके लिए तैयार खड़ा है ये बताने के लिए कि आज मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आप अपने इस दिन को आज कैसे बिताना चाहते हैं और इस दिन का स्वागत कैसे करना चाहते हैं, ज़रूर हमें लिख भेजिए। देखिए, हमें लिख भेजा है हरजिंदर सिंह भाटिया ने, नमस्कार लिखते हैं, और इनके साथ जो है ईमेल हमें जमशेदपुर से आता है, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू, पप्पी और तमन्ना भाटिया का। एक और हमें ईमेल आ रहा है, ये है हमें ईमेल बबलेश्वर पवार का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कोई गीत हमें सुनवा दीजिए, पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब के ये हैं, बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल, तो ये भी इन्होंने मेल भेजा है। सतीश अनेजा का हमें मिल चुका है मेल और वो भी बहुत ही खूबसूरत गीत की उन्होंने फरमाइश की है। बहरहाल, आप सबकी पसंद का एक मुला जुला आपकी पसंद है उसका एक शानदार गीत मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ। ये गीत है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में और जो फिल्म है वो है दिल है कि मानता नहीं। गीत के बोल है, कैसे मिजाज हैं आपके ज़रा फरमाइए।

तो कहिए कैसे मिजाज आपके हैं, फरमाइए। और ये फरमाइश आपको देनी है अपने ईमेल पर हमें, ताकि हम जो है आपका फरमाइशी गीत प्ले कर सकें। बोधराज खोलवाल उत्तम नगर दिल्ली से हमें लिखते हैं, कमला रानी गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, इनका ईमेल हमें मिल चुका है। शिशपाल वरदान का ईमेल हमें मिला है, वो कहते हैं कि आप हमारे को भी शामिल कर लीजिए, हमने आपको शामिल कर लिया है। नवी हसन का हमें ईमेल मिला है, सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, आदाब और नमस्कार, मेरा नाम शामिल कर लीजिए, आपका नाम हम शामिल कर रहे हैं, आपकी पसंद का गीत भी हम शामिल कर रखे हैं। इनके साथ लिखने वाले हैं नवी हसन, शाहनवाज हैं, नावेद हैं, सुहेल, अमनम, यशफ और इनके बहुत सारे साथी। रविंद्र मोहनदास, इनका भी ईमेल हमें मिल चुका है। अब जिस तरह से हमने आपसे कहा था कि भाई आपका नाम अगर हम सीधे सीधे पढ़ देते हैं, आपकी पसंद का गीत सुना देते हैं, लेकिन हमारी आपसे बात तो हो ही नहीं पाती। हम बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे सुनना चाहते हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप किस तरह का आपका व्यवहार है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह का आपका मिजाज है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपको कोई तकलीफ़ है, क्या हमारे पसंद आपके पसंदीदा गीत जो हम प्ले कर रखे हैं और हमारी बातें क्या आपकी दुख तकलीफ़ को कुछ कम कर सकती हैं, क्या आकाशवाणी से जितने खूबसूरत प्रोग्राम, जितने खूबसूरत गीत आप सुनते हैं अपने नाम के साथ, क्या वो आपको सुकून देते हैं। बहुत सारी बातें हम सुनना चाहते हैं, बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं आपके नाम के साथ। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से इन्होंने हमें मेल भेजा है। इसके अलावा मोहम्मद सईद अब्बासी, मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से इनका ईमेल हमें मिल चुका है। निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अजान और अब्बासी परिवार के सभी तक एक और आपसे गुजारिश है कि देखिए आपका मेल अगर हम शामिल कर लेते हैं तो प्लीज़ आप दोबारा उस मेल को नहीं भेजिए, आपका नाम हमने शामिल कर रखा है। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रखे हैं और वो चाहते हैं कि उनका नाम भी यहाँ से उद्घोषित हो और वो अपने नाम को अपने गीत के साथ सुन सकें। अगला जो हमें मिला है डॉक्टर आशीष का हमें मिला है, सादर प्रणाम लिखते हैं, अपना गीत भी इन्होंने भेजा है, फिल्म भी भेजी है, कोशिश करेंगे कि आपका गीत और आपके फिल्म जो है हम आपको सुनवा सकें। आपका चरणदास जी का हमें मैसेज मिला है, राजू अग्रवाल, केशव विवेक वस, इनका भी ईमेल हम शामिल कर रहे हैं। एक और खूबसूरत मेल है, जयपाल यादव जी का भी मेल मिला है। जयपाल यादव भी बहुत अच्छी बात लिखते हैं और कहते हैं कि देखिए आपने हमारे गीत को, हमारे ख़त को अगर आप शामिल कर लेते हैं तो ये हमारे पर बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो साहब मेहरबानी नहीं होगी, आपका अपना कार्यक्रम है, आपके ईमेल पर आधारित है, तो आपके ईमेल पर आधारित कार्यक्रम के में हम आप ही के अगर पसंदीदा गीत नहीं सुनवाएंगे, आपका नाम नहीं उद्घोषित करेंगे, तो फिर ये कार्यक्रम किस बात का। बहरहाल आप सबकी मिली जुली फरमाइश पर एक शानदार गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, फिल्म वंश का, लता मंगेशकर और SV बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ है। और याद कीजिए 90s का वो दौर जब

आइए आज हम दोस्ती पर बात करते हैं। जानते हैं दोस्ती का रिश्ता सबसे अनमोल होता है, जिसमें ना कोई लालच होता है, बस एक दूसरे का साथ, और यही साथ पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है। आज क्यों ना हम इसी पर बात करें उन तमाम अपने साथियों के साथ जो हमें ईमेल लिख रखे हैं अपने फरमाइशी गीतों के लिए।

आदाब नमस्कार, जसपुर उत्तराखंड से लिखते हैं रियायत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, मोहम्मद समरीन और माहिना नूर। इनका ईमेल हमने शामिल कर लिया है। अगला ईमेल हमें हमारा है, नमस्कार जी, धन्यवाद। कालानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। ये हमें मेल मिला है इस समय स्वीटी का। देखिए, हमने दोस्ती पर बात करी थी ना, तो नई दिल्ली से इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी और रविंदर छाबड़ा, ये लिखते हैं कि दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं है, बल्कि उस रिश्ते का नाम है जो दूर होकर भी दिल के करीब होता है। बहुत सुंदर। सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खुशी में मुस्कुराए और मुश्किल वक्त में बिना कहे साथ खड़ा हो जाए। और इसके बाद उन्होंने एक छोटे से दिल का इमोजी भी हमें भेजा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही है। यही दोस्ती होती है। देखिए, दोस्ती में आपको किसी से कुछ मांगना नहीं है, आपको किसी को कुछ देना नहीं है। दोस्ती वो होती है जब आपकी बात सुनने के लिए कोई आपके सामने बैठा हो और बिना किसी मुनाफे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भी एक

तो होता है हील हुज्जत के वो आपसे आपकी बात सुने, आपको दिलासा दे और कहे कि भाई जब कोई तेरे साथ नहीं होगा तो मुझसे बात करना, मैं हर हाल में तेरे साथ हूँ, हर बार तेरे साथ खड़ा हूँ। यही दोस्ती होती है। एक बार फिर मैं नाम पढ़ना चाहूँगा, रविंद्र कौर छाबड़ा, स्वीटी और रविंद्र छाबड़ा का बहुत ही खूबसूरत संदेश उन्होंने भेजा है। एक और संदेश हमें मिला है इस समय सुदर्शन सुधाकर जाधव जी का, प्रेम पूर्वक नमस्कार इन्होंने भेजा है। सुधाकर राजे, जाधव देशमुख, प्रशांत राजे और इनके बहुत सारे साथी हैं।

अगला संदेश हमें मिला है संदीप ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल सहानी, पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर से।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम है, आपके ईमेल पर आधारित ये कार्यक्रम है और इस समय मैं हूँ आपका दोस्त नवीन सक्सेना आपके साथ। अगला ईमेल हमें मिला है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी और बेबी बॉय हिमाक्षी, इनका संदेश हमें मिला है। अगला संदेश धर्मेंद्र चिप्पा, इनका संदेश हमें मिला है। लिखते हैं कि प्रोग्राम शानदार है, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन नगमे आप सुना रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, परंतु हमारा मैसेज शामिल नहीं होता है। अब इस पे हम शुक्रिया कहें या हम कहें कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए क्योंकि आपका ईमेल हमें आपसे बहुत देर से मिला है। एक नज़र हम पर भी ज़रा गौर फरमाइएगा, देखिए गौर फरमाया है हमने आप पे और आपका ईमेल भी हम पढ़ रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार का, अब आपकी नाराज़गी हमसे दूर हो गई होगी, इसलिए अब आपसे अनुरोध है कि अब दोबारा ईमेल इस कार्यक्रम में ना ही भेजे तो बेहतर होगा क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त, आपके बहुत सारे साथी जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं। हम तो सभी से खुश होकर मिलना पसंद करते हैं। ये लिखते हैं कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान और पूरी खान फैमिली, कहते हैं कि रेडियो सुनना हमारा शौक है, बुज़ुर्गों से मिलना, उनके साथ चाय पीना और रेडियो सुनना, इस वक्त मेरे पास दो बुज़ुर्ग बैठे हैं, बहुत बढ़िया बात है, आपको सुन रहे हैं, आपको आदाब बोल रहे हैं और इस रेडियो ने तो बेशुमार रेडियो दोस्त दिए हैं। बिल्कुल जानते हैं रेडियो एक ऐसा साधन है जो आपको तंग नहीं करता, आप अपने बट काम पे जाते रहिए, काम करते रहिए, रेडियो का वॉल्यूम तेज़ कर दीजिए, आपके नाम के साथ आपके पसंदीदा गीत, आपके दोस्तों के नाम, सब कुछ हम आपको यहाँ से बताते हैं, आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं, आपका मूड बना देते हैं और देखिए आपकी चाय की जो चुस्कियाँ हैं ना उसमें और मिठास भर देंगे और ये मिठास डायबिटीज़ वाली नहीं होगी, प्यार भरी मिठास है, इससे सेहत सुधरेगी। खान साहब कस्बा गन्नौर यूपी से ये थे फारूक अली खान, बहुत सुंदर संदेश के साथ इन्होंने अपना ईमेल हमें भेजा है। रिस्पेक्टेड सर जी नमस्कार, एनी सॉन्ग प्लीज थैंक्स, ये लिखने वाले हैं हमें राजी शर्मा, आदर्श नगर मलौत पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा और मंदी शर्मा, सौरभ शर्मा और शायना शर्मा, इस पूरा शायना परिवार और उनके दोस्त, ये सब लिखते हैं कि दोस्ती से बड़ा आज कोई रिश्ता नहीं है, आज लोग अपने रिश्तेदारों से उतना प्यार नहीं करते जितना दोस्त से, क्योंकि आज रिश्तेदार सब किसी से खुश नहीं है। ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, देखिए कुछ रिश्तेदार बिल्कुल आपके दोस्त की तरह होते हैं लेकिन हाँ, और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आपको व्हाट्सएप या आपके स्टेटस पर लाइक करते हुए नजर आएंगे, अच्छे दोस्त वो हैं जो बिना व्हाट्सएप के बिना स्टेटस देखे आपको फ़ोन करते हैं, दोस्त वो हैं जो आपके जन्मदिन पर आपको फ़ोन करके कहते हैं कि आपका जन्मदिन बहुत बहुत बहुत मुबारक, है ना, ऐसे दोस्तों को ढूंढिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, दिन खूबसूरत बनाइए और ये गीत सुनिए।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: बिल्कुल जानकार रहिए, सतर्क रहिए, ऐसा RBI कहता है। और हमें से कोई ना कोई जरूर कभी ना कभी तो इस तरह के फ्रॉड में जरूर फंसा होगा। तो टेक केयर, ख्याल रखिए अपनों का भी और अपना भी। चलिए वापस आते हैं आपके ईमेल पर। नमस्कार जी आपको, और लिखते हैं, देखिए पहला मेल मैंने इस समय खोला है ब्रेक के बाद, और शिकायत है। देखिए शिकायत ना कीजिए कि है, शिकायत अच्छी नहीं लगती है। कोशिश करते हैं सबके मेल शामिल हो, कोई रह जाता है तो आपके पास बहुत चांस है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप उसमें मेल कर सकते हैं। बहरहाल ये मेल हमें भेजा है नीटू मल्होत्रा ने, खैल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडू कोयल मल्होत्रा, और रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, जग्गू भाविक सिक्का का। अब उम्मीद है कि आपकी नाराज़गी दूर हो गई होगी। निसार साहब का हमें मेल आया है, निसार सलमानी, नौशत सलमानी, बेबी आलिया, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, साथ में आयान बाबूजी भी हैं, नमस्कार कहते हैं लेकिन कोई संदेश नहीं लिख के भेजते, तो देखिए थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगता है। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, धन्यवाद शुक्रिया, आपका मेल हमने शामिल कर लिया है। लालगिरी से ये हैं, लिखते हैं, हमें कार्यक्रम आपकी पसंद पेश करता जी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, लालगिरा स्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, इन्होंने कहाँ से भेजा है ये? इन्होंने हाँ, रघुनाथपुरा ज़िला, श्रीगंगानगर, राजस्थान से इन्होंने हमें मेल भेजा है। अनिल जैन साहब का हमें मेल चुका है, मालियान सरधाना मेरठ से, साथ में है संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर GVM जैन, आपके पसंद का गीत भी हम आपको सुनवाएंगे। हरजिंदर साहब का हमें मेल मिल चुका है, गांव सथाना पंजाब से, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, बहुत सुंदर सुंदर मेल आप हमें लिख रहे हैं, बहुत सी बातें हमें लिख रहे हैं, लेकिन हमने दोस्ती की बात कही थी उस पर बहुत कम लोग अपनी बात हमें लिख पा रहे हैं। क्या आपके दोस्त नहीं हैं? नमस्कार जी, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। सुभाष योगी जी का हमें मेल मिला है, साथ में सुशील हैं, डब्बू डब्बू और राजू मेघलानी जी हैं। यशमीत याशु जी का हमें मेल मिला है, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है हम उस गीत को हम बस अब क्यों करने वाले हैं। रुपेश सांघवी जी का हमें मेल मिल चुका है इन्होंने, और महाराष्ट्र श्रोता संघ से हैं, रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रितेश और पूरा संघई परिवार जो है ये अपनी पसंद का गीत सुनना चाहता है। तुलसी मस्कीन जी का हमें मैसेज मिल चुका है, ये मैडम जी नमस्कार करें। देखिए मैडम जी नहीं, तुलसी जी, प्रोग्राम को थोड़ा सीरियसली सुन लीजिए, सर जी प्रोग्राम कर रहे हैं। तुलसी, वीना, आशीष, चैतन्य, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना जी, इन्होंने भी अपना मेल शामिल करने के लिए हमें कहा है। मुकेश कश्यप जी का हमें मेल मिल चुका है, मुकेश कश्यप जी ने ज़िला मुरादाबाद से लिखा है, साथ में शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, मोहिनी और बलबीर सिंह जी हैं। स्वर्ण सिंह का हमें है गांव लोखंड ठाकुरवाला से, स्वर्ण सिंह गिल, साथ में हैं दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल। देखिए आप लिखते हैं कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए, कोई लिखता है कि अपनी पसंद का गीत सुनवा दीजिए, कोई अपनी बातें बहुत कम लिखता है, तो जो हम में से बात करना चाहते हैं ना तो हमें उनका मेल पढ़ने में भी बहुत आसानी होती है, तो हम उनका मेल भी पढ़ लेते हैं। DKP परिहार साहब का हमें मेल मिला है, आपकी पसंद कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और बेहतर जानकारी दे रहे हैं आप दोस्ती पर। देखिए आप हमारा कार्यक्रम सीरियसली

सुन रखे हैं और इन्हें मालूम भी है कि आज हम किस टॉपिक पर, किस विषय पर हम बात कर रखे हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी पे इन्होंने लिखा है और देखिए लिखते हैं कि आज सोशल मीडिया के समय है और गीत तो हम कोई भी कभी भी ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्मेट में सुन सकते हैं, लेकिन अपने नाम के साथ गीत सुनने का जो आनंद रेडियो पर मिलता है उसकी बात कुछ और है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही की है। देखिए जब भी हम ऑफ रेडियो होते हैं ना, कि जब हम कंसोल पे नहीं होते हैं, प्रोग्राम पेश नहीं कर रखे होते हैं, और जब हम रेडियो सुनते हैं और अपने दोस्तों के नाम सुनते हैं ना, तो मन में तो आता ही है, अरे इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरा दोस्त है। तो रेडियो पे अपना नाम सुनना और अपना पसंदीदा गीत सुनना आज भी उतना ही लाजवाब है जितना पहले के ज़माने में हुआ करता था। बहरहाल अब जो रेडियो है, हो सकता है कि आपके टेबल से उठ के आपके मोबाइल में आ गया हो, लेकिन रेडियो की बात आज भी रेडियो है ना। हमारी आवाज़ें, आपकी पसंद के गीत, आप सिर्फ हमें हमारी आवाज़ों से जानते हैं, आप सिर्फ हमें हमारे नाम से पहचानते हैं, लेकिन फिर भी हमसे लगाव है ना। ऐसे ही हमें भी आपसे लगाव है। हम आप जैसे बहुत से श्रोताओं को बाई फेस नहीं जानते, लेकिन जब नाम आता है स्वरण सिंह, नवी हसन, रवि कुमार, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप हमारे सामने बैठे हैं। आपके पसंद के गीत हम आपको सुना रहे हैं, हम आपसे बातें कर रखे हैं, और जानते हैं आपकी जो पसंद होती है ना, उसी से आपके व्यवहार का भी पता चल जाता है कि आप किस तरह के गीत सुनना चाहते हैं और कितने खूबसूरत हैं आप दिल से। ये ईमेल हमें मिला है भगवत वर्मा का, दंतरेंगी से, साथ में देवी लीलावती और विनीता शर्मा और रुद्र वर्मा। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता रॉट, निखिल कांगड़ा और तनवीर साहब का भी हमें मेल मिल चुका है।

दुनिया में दुख कभी होता ही नहीं, मगर ऐसा होता नहीं है। नमस्कार, आपकी प्रस्तुति और आपकी पसंद के गीत हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। लिखने वाले हैं डोल राणा और नेहरू विहार दिल्ली से, टीबी राणा बेसिकली इनका नाम है। और कहते हैं दोस्ती के धागे बहुत कमज़ोर होते हैं, इसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए और दोस्ती का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अनिल जैन जी का

0: आपकी पसंद का गीत जरूर सुनवाएं, लेकिन हमने आपका नाम जरूर शामिल कर लिया है। उत्तम कुमार भगेल, रुक्मणी भगेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से ये हमें मेल मिल चुका है, हमने आपका मेल शामिल किया है। नमस्कार जी, दोस्ती एक रिश्ता नहीं है, एक एहसास का नाम है। सच्चा दोस्त वो होता है जो हमारे अंदर की कमी या बुराई को बेझिझक सामने लेकर आए और सही राह पर ले जाने की कोशिश करे। दैट्स द बेस्ट संदेश, बहुत अच्छा संदेश आपने भेजा है। देखिए, कई दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको सामने बिठाकर सिर्फ आपकी अच्छाइयाँ करते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ शुरू कर देते हैं। पहचान लीजिए ऐसे दोस्तों को, और हाँ, और जब पहचान नहीं आ जाए ना, कुछ मत कहिए, सिर्फ मुस्कुरा के उनसे दूरी बना लीजिए। समझ आ जाएगा उनको कि आप उनके लिए कितने ख़ास थे जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। लिखने वाले हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। बहुत खूबसूरत संदेश, बहुत ही अच्छी बात कही है। आर कुमार जी का वडिंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा बहुत सुंदर संदेश के साथ हमें मिल रहे हैं। ग्राम गेंदा टोला से हमें ये संदेश मिला है, और एक और संदेश हमें टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा जी का एक संदेश मैं पढ़ रहा था। हाँ, ये संदेश है ग्राम गेंदा टोला बाजार चौक से, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि, योगिता, राजेंद्र और भूषण सोनी का। इन्होंने भी हमें मेल भेजा है, और भी बहुत से मेल हैं लगातार हमारे पास आ रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके नाम शामिल कर लिए जाएँ। फिर भी अगर कोई नाम उससे छूट जाता है तो माफ़ी ही मांग सकते हैं, क्योंकि और तो हमारे पास कोई चारा है नहीं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी नामों को मैं शामिल कर सकूं, और मेरा कोई भी दोस्त जो है मुझसे ना छूटे। और अगर किसी ने मेल भेजा और मैं उसका नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ एक बार फिर आप मेल भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके इस मेल को, आपके नाम को मैं शामिल कर सकूँ। बहरहाल, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने।
1: मैंने

अगला मेल हमें मिला है नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से। लिखने वाले हैं अक्रम हुसैन, ब्रैकेट में डाक बाबू, शायद इस नाम से ये ज़्यादा फेमस हैं। बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकट।

मैंने तेरे लिए ही इतने सारे गीत चुने अपने पसंदीदा श्रोताओं के लिए। प्रसारक महोदय हीरामन खिराड़े, सारिका खिराड़े, सोनाली आदर्श और अभय खेड़ा वाशिम महाराष्ट्र से, इन्होंने कहा है कि हमें शामिल कीजिए आज के इस प्रोग्राम में। हमने शामिल किया आपको आज के इस प्रोग्राम में। पंकज शर्मा का हमें मेल मिला है। भाई जी राम राम जी, दोस्ती वो होती है ना पक्की जी, दुख सुख में काम आएगा, गुड दोस्ती कहलाती है जी। मेरा ईमेल शामिल कीजिए प्रोग्राम में। आपका ईमेल हमने शामिल कर लिया है प्रोग्राम में। आपकी हमारी दोस्ती पक्की। पंकज शर्मा लिखने वाले हैं।

दोस्ती के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें हमने आज कही ना, चलिए उनमें से एक छोटी सी बात को तो हम अपना लेते हैं। मेरी तरफ से असली दोस्ती दिल से होती है और वो दिल में रहती है। कहते हैं कुछ दोस्त दोस्त नहीं, दिल का सुकून होते हैं मेरे दोस्त।

अरब प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। चलते चलते बहुत ही खूबसूरत सा गीत के साथ मैं आपका दोस्त नवीन सक्सेना आपको छोड़े जा रहा हूं, लेकिन ये मत समझिएगा 5 मिनट है, ढेर सारे मेल शामिल करना चाहूँगा, लेकिन इस खूबसूरत गीत को भी सुनते रहिए।

तो जल जा। चलते चलते एक और ईमेल हमें मिला है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुमित साहू का। डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी, डॉक्टर सोनम, अदीबा और दानिश अंसारी का। कोला बाजार

0: आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इंतजार कीजिए समाचारों का अब से कुछ सेकंड बाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 21 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन की शुरूआत ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है, साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्था के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रेजनकोव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस भी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका दौरा साझा प्रगति और समृद्धि के लिए स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक सहयोग के महत्व को दर्शाता है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहुल ने उनका स्वागत किया। भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसर विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
3: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस बीच सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्यना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबकिना का सामना करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे सबरस कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सारंगी पर बजाया राग मुल्तानी। कलाकार हैं किशोर नारायण।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप सुन रहे थे सारंगी पर बजाया राग मुल्तानी। कलाकार थे किशोर नारायणम। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज दिन में 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म कर्तव्य के कुछ चुनिंदा गीत। इसके अलावा दिन में 2:30 पर आप सुनिएगा विशेष रूपक राग के मंसूर पंडित मल्लिका अर्जुन। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 3:30 पर। क्षमा कीजिए, ब्रजमाधुरी कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 3 बजे और 3:30 पर आप सुन सकते हैं नाटक रामानुज। इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रताप सहगल, निर्देशन काजल सूरी का है। समाचार प्रभात का कार्यक्रम परिक्रमा सुना जा सकता है शाम 4:30 पर। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में, और 12:10 पर आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 12 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।

जहां द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी तथा क्षमता निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इथियोपिया की भागीदारी की सराहना की और कहा कि इसकी उपस्थिति से ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी आज देर शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बेलारूस के विदेश मंत्री मार्क्सिम रिजनकोफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति

0: श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस बीच सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। और इस बीच खबर मिली है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज शाम उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today held bilateral talks with his Ethiopian counterpart Dr. Abiy Ahmed Ali on the sidelines of the 18th BRICS summit in New Delhi. The Minister of External Affairs said in a statement that the two leaders held discussions aimed at further strengthening the bilateral strategic partnership. Both the leaders reviewed progress across key sectors, including economic cooperation, defence and security partnership, and capacity building. The meeting built on Prime Minister Modi's historic visit to Addis Ababa in December 2025. The two leaders also exchanged perspectives on regional and international developments of mutual interest and reaffirmed their commitment to close cooperation in multilateral fora. During the meeting, Prime Minister Modi expressed appreciation for Ethiopia's participation in the 18th BRICS summit and noted that its presence helped in reinforcing the collective voice of the Global South. The Prime Minister also held bilateral talks with his Malaysian counterpart Anwar Ibrahim on the margins of the BRICS summit being held under India's chairship. During the meeting, the two leaders reviewed the progress in bilateral cooperation across a range of areas including trade and investment, defence and security, and people-to-people ties. They also took stock of the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Malaysia in February this year. Mr. Modi appreciated Malaysia's continued support in strengthening ASEAN-India relations. The leaders exchanged views on key regional and global issues of mutual interest and expressed their continued commitment to advancing the India-Malaysia Comprehensive Strategic Partnership. The Prime Minister also held bilateral talks with Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and the Prime Minister of Vietnam, Le Minh Hung. Chinese President Xi Jinping has arrived in New Delhi to participate in the BRICS Summit 2026. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold a bilateral meeting with the Chinese president later today. Foreign Affairs Minister of Belarus, Maxim Ryzhnikov, arrived in New Delhi this morning to participate in the 18th BRICS summit in New Delhi. India and Belarus share warm and friendly relations marked by growing cooperation across a broad range of areas in bilateral and multilateral spheres. Prime Minister of Vietnam, Le Minh Hung, has also arrived in New Delhi for the summit. He was received by the Minister of State for Civil Aviation, Muralidhar Mohol, at the airport. The 18th BRICS summit is set to begin in New Delhi this afternoon. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy security, healthcare, disaster resilience and critical supply chains. The summit is being held under India's 2026 BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Several world key leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, and Iranian President Masoud Pezeshkian. The summit will begin with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Leaders of the BRICS member countries will also visit the Bharat Innovates exhibition at Bharat Mandapam. This will be followed by a joint tree planting ceremony and a gala dinner hosted by Prime Minister Modi. In hockey, India reached the final of the Women Junior Asia Cup 2026, defeating South Korea 5-1 in Mochi, China today. For India, Supriya scored a hat-trick, while Madhu Sidhar and Sukhveer Kaur also found the net for India. Yuri Jong scored South Korea's only goal of the match. India will face the winner of the second semi-final between China and Japan in the final. Union Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla have extended their wishes to the countrymen on the occasion of Prakash Purab of Sri Guru Granth Sahib today. In a social media post, Mr. Shah said that by conferring the status of Guru upon Sri Guru Granth Sahib, Sri Guru Gobind Singh conveyed the message that true guidance in life comes from knowledge, truth and principles. And that is the end of this news bulletin.

0: घर आंगन। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आ गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर।
1: और घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर,
0: और मैं हूँ दीपा भूषण।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। और
0: श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, यानी 100.1 MHz पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के YouTube और इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर।
1: और श्रोताओं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और गुरबाणी का प्रकाश

0: मन को शांति, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा
1: बिल्कुल
0: देता रहे, यही हम सब चाहते हैं। और साथ ही दीपा, देखो आज है छुट्टी का दिन, और
1: बिल्कुल
0: छुट्टी के दिन खास तौर पर थोड़ा सा आलस तो हो ही जाता है।
1: उठने में सुबह,
0: हाँ,
1: बट आलस
0: लेकिन
1: होना चाहिए पर एक्टिव भी होना
0: हाँ,
1: चाहिए हम
0: लेकिन
1: सबको।
0: आलस के साथ साथ हम ये चाहते हैं, चाहे दिन कोई भी हो आपका, छुट्टी का दिन हो या ना छुट्टी का दिन हो, पर अपनी जो रूटीन है ना वो कायम रहनी चाहिए, वो
1: बिल्कुल
0: बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: अगर
1: सही
0: जैसे
1: बात,
0: बदली तो आपका फिर स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो इसीलिए अपनी रूटीन को कभी ना बदलने दीजिए। और आज श्रोताओं के लिए जो हम जो सवाल लेकर आए हैं,
1: क्या सवाल है
0: वो
1: सिमरन
0: सवाल है कि
1: तुम्हारा?
0: आपकी दिनचर्या में सबसे ज़्यादा एक्टिव समय कौन सा होता है, सुबह, दोपहर या शाम? आप हमें लिख के बिल्कुल जल्दी जल्दी से अपने जवाब भेज दीजिए, और हमें इंतज़ार है आपके जवाबों का। तो ये था आज का सवाल। तो दीपा, कैसा लगा ये सवाल तुम्हें आज का?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लगा सिमरन, और तुम अपनी वो मेल भी तो बता
0: हाँ,
1: दो।
0: मेल तुम बताओ कि किस मेल
1: हाँ,
0: पे
1: किस
0: हमें,
1: मेल पे आप
0: हमारे
1: हमें
0: श्रोता जो
1: अपने
0: हमें जवाब देंगे?
1: जवाब दे सकते हैं, और आपके जवाब हम आज ही शामिल करेंगे fmgoldga@gmail.com पर।
0: और साथ ही अब जब तक हमारे श्रोता हमें जवाब लिखकर भेजें, सोचें, तब तक हम अपने श्रोताओं को खूबसूरत सा क्यों न गीत सुनवाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत, फिल्म थी जमी आसमां।
1: दोस्तों, अब आज हम बात करेंगे विशेष दिन की। आज के आज दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा दिवस है। आज यानी 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं। और दोस्तों, ये दिन वर्ष के सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसाइटी महासंघ IFRC ने की थी।
0: बिल्कुल। और इसका उद्देश्य आम लोगों में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को और आपात स्थिति में जीवन बचाने वाली तुरंत सहायता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, और साथ ही दुर्घटना और अत्यधिक रक्तस्राव या अचानक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार की जानकारी कई बार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा सिमरन। और आज एक ख़ास दिन और है। आज यानी 12 सितंबर को हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध महान रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की पुण्यतिथि है। अपनी कालजयी कहानी उसने कहा था से हिंदी कथा साहित्य को एक नई दिशा देने वाले गुलेरी जी स्वयं महान इतिहासकार और भाषाविद भी थे।
0: बिल्कुल। और दीपा, देखो, उनकी अपार विद्वत्ता के कारण उन्हें इतिहास दिवाकर की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। और ख़ास तौर पर उनका अमर साहित्य जो साहित्य जो भी था, आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। मतलब जो उनका अमर साहित्य था वो हमारा
1: बिल्कुल,
0: आज भी मार्गदर्शन
1: हम लोग
0: करता
1: का
0: है। बिल्कुल
1: मार्गदर्शन कर रहा है। बिल्कुल सही कहा सिमरन तुमने। और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन।
0: और साथ में दीपा, मैं एक बार फिर से ये दोहराना चाहूंगी कि हमारा आज का जो सवाल है वो है, आपके दिनचर्या में सबसे ज्यादा एक्टिव समय कौन सा होता है? यानी कौन सा ऐसा समय होता है सुबह, दोपहर, शाम, या जब आपका मतलब आप बहुत ही उत्सव, आप एनर्जी
1: एक्टिव
0: आपके
1: होते,
0: अंदर हो,
1: एनर्जी रहती
0: हाँ,
1: है।
0: और आप काम करने में बेहद खुशी महसूस करें, कोई भी काम करने में। कई बार होता है हम आलस में कोई काम कर नहीं पाते, तो हमें जो भी है आपके मैसेज वो भी हमें फटाफट से भेज दीजिए, तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। और मैसेज करने के लिए एक बार पता बता दो।
1: हाँ, हमारा पता है ईमेल के लिए fmgoalga@gmail.com।

0: दोस्तों, अभी आपने लता मंगेशकर जी का गाया हुआ शक्ति फिल्म से ये गीत सुना। और सिमरन, हमारे जो तुमने प्रश्न पूछा था उसकी कुछ मेल आने लगी हैं।
1: बताओ कौन सी मेल आई है।
0: बहादुरगढ़ से मेल आई है महेश अग्रवाल जी और मीना अग्रवाल जी। वो लिखते हैं कि दीपा जी, सिमरन जी नमस्कार, और बहुत ही खूबसूरत गाने और बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा है। और वो लिखते हैं कि कार्यस्थल पर तो हमारा शाम के समय बहुत ही हम एक्टिव होते हैं, और घर पर सुबह के वक्त हम बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ऐसा वो लिख रहे हैं।
1: और साथ में एक रजत की मेल आई है, ये है नोएडा से। इन्होंने लिखा है, नमस्कार बुआ, दोपहर के भोजन के बाद का समय मेरे लिए सबसे अधिक सक्रिय रहने का समय होता है, और ये आसान नहीं है, लेकिन शरीर और मन को आलस्य से दूर रखना ज़रूरी है। तो थोड़ी सी नियमितता और इच्छा शक्ति से हम खुद को सक्रिय और ऊर्जावान रख सकते हैं। भाई देखो, बहुत ही अच्छा रजत जी ने लिखा है, और कितनी अच्छी बात कही है। हमारे मेल का जवाब बहुत ही खूबसूरत ढंग से इन्होंने लिख कर हमें भेजा है। तो देखो, अगर हम बात कर ही रहे हैं कि एक्टिव कैसे रहते हैं, जीवन शैली हमारी कैसी रहती है, तो क्यों ना हम एक बात करें कि ज़रा एक पल रुक कर खुद से पूछिए कि कितनी एक्टिव है आपकी जीवन शैली। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारी दिनचर्या में कितना समय ऐसा होता है जब हमारा शरीर सक्रिय रहता है, ये बताओ।
0: और आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी में दोस्तों, हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन शारीरिक गतिविधि अक्सर कम होती जा रही है। घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करना, लिफ्ट का इस्तेमाल करना, पास की दूरी के लिए भी वाहन लेना, और खाली समय में लगातार मोबाइल या टीवी देखना, ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है।
1: लेकिन एक्टिव रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको घंटों जिम में जाकर पसीना बहाना है। छोटी छोटी आदतें भी आपकी जीवन शैली को ज़्यादा सक्रिय बना सकती हैं।
0: बिल्कुल। और मसलन अगर मंजिल पास है तो पैदल चलिए, मतलब अगर आप पास में ही आपकी जो लिफ्ट है से जाना ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर आप सेकंड फ्लोर पर रहते हैं तो आप चढ़ के भी जा सकते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए, लंबे समय तक बैठने के बीच थोड़ा उठकर चलिए ज़रूर।
1: बिल्कुल सही। और सुबह या शाम कुछ समय टहलना, पसंदीदा संगीत पर हल्का डांस करना, या घर के कामों में सक्रियता में हिस्सा लेना भी शरीर को गतिशील रख सकता है।
0: और दोस्तों याद रखिए, एक्टिव लाइफस्टाइल सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मन को भी तरोताज़ा रखने का एक खूबसूरत तरीका है।
1: तो आज से खुद को एक छोटा सा चैलेंज दीजिए, हर दिन अपनी दिनचर्या में थोड़ी और गतिविधि जोड़ने का, क्योंकि स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत अक्सर एक छोटे से कदम से होती है, जैसे

0: जान पहचान पहले से थी, ये गीत अभी आपने सुना। गायक कलाकार थे आशा भोसले और किशोर कुमार। फिल्म थी भला मानुष।
1: और दीपा, एक मेल आ गया है मेरे पास।
0: बिल्कुल सही है,
1: उन्होंने,
0: बताओ।
1: ये है चरण दास का मेल है, इन्होंने लिखा है कि FM गोल्ड 2 साल से सुन रहा हूँ, रोजाना जवाब भेजता हूँ, शामिल होते नहीं। आज भेजूंगा प्रस्तुतकर्ता का ना, नाम सुनते ही समझ गया कि आज तो मेरा शामिल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है चरण दास जी, हमने आपका मेल शामिल किया है और हम पढ़ भी रहे हैं कि आपका मेल शामिल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। हमने आपका मेल भी शामिल किया और हम आपका नाम भी पढ़ रहे हैं। साथ में एक और मेल मेरे पास आया है, ये है अफरोज़ शेख का। इन्होंने लिखा है कि मैं तो पूरे दिन अपने काम में एक्टिव रहता हूँ जी। बहुत
0: वाह,
1: अच्छी बात
0: बहुत
1: है,
0: अच्छी बात है।
1: हाँ, कि पूरे दिन अच्छा है। और कई बार क्या होता है कि हम किसी समय सुबह हो जाते हैं एक्टिव, कई बार हमें एनर्जी ज़्यादा होती है जब हम उठते हैं सुबह, लोग कहते हैं एनर्जी काफ़ी होती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे दोपहर आ जाती है तो थोड़ा सा एनर्जी लो हो जाती है और शाम को थोड़ी सी और कम। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने लिखा है पूरे दिन रहते हैं, तो बहुत अच्छी
0: बहुत
1: बात
0: अच्छी
1: है।
0: बात
1: हाँ,
0: है।
1: अब अगला क्या बताने वाली हो तुम?
0: हाँ, अब हम बात करने वाले हैं सिमरन। आज एक राष्ट्र एक समय की। देखो, देश में घड़ियां तो पहले भी एक ही समय बताती थी, और अब जो हमारी सरकार है उसकी कोशिश है कि देश की महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियों की घड़ी भी एक ही भरोसेमंद समय से चले,
1: बिल्कुल
0: है
1: सही कहा
0: ना।
1: तुमने, और खास तौर पर जब घड़ी की बात तुम एक कर ही रही हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि समय बदलता है, बदलता
0: हाँ
1: नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि समय जो नापने और रिकॉर्ड करने के लिए एक आधार जो है वो करता है ना?
0: हाँ मतलब ये है कि समय को, समय बदलना है बल्कि समय को नापने और रिकॉर्ड करने का आधार एक करना है, कि मतलब हम समय को नहीं बदल रहे हैं। और इस उद्देश्य से सरकार ने एक राष्ट्र एक समय के तहत 27 अगस्त 2026 को नए नियम जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य पूरे देश में भारतीय मानक समय IST को एक समान और आधिकारिक समय के रूप में इस्तेमाल करना है। एक राष्ट्र एक समय इस पहल से देश की महत्वपूर्ण प्रणालियों को भारतीय मानक समय यानी IST को एक समान और विश्वसनीय स्रोत से जोड़ा जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और सरल शब्दों में कहें तो देश में समय जो है बताने और दर्ज करने का एक ही भरोसेमंद आधार होगा। आज हमारी ज़िंदगी का लगभग हर काम सही समय पर निर्भर करता है, जैसे कि बैंक में पैसे भेजना, प्राप्त करना, ऑनलाइन भुगतान, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं, रेलवे और हवाई सेवाएं, बिजली व्यवस्था, सरकारी रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड, है ना? इन सभी में ज़रूरी है कि समय और टाइम स्टैम्प बिल्कुल सही हो।
0: बिल्कुल सही होना चाहिए, ये सही बात है। और अगर अलग-अलग प्रणालियों में समय में थोड़ा भी अंतर हो तो लेन-देन, रिकॉर्ड और सेवाओं में परेशानी हो सकती है।
1: और ये जो नियम है वो तुरंत नहीं लागू होंगे, है ना,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि इनके लागू होते ही पहले 180 दिनों का समय दिया गया है, और इस दौरान सरकारी विभाग, बैंक, कंपनियां, संस्थान और दूसरी संबंधित एजेंसियां अपनी नज़दीकी प्रणालियों के जांच करके ज़रूरी बदलाव कर सकेंगी। बिल्कुल, है ना?
0: एक, हाँ बिल्कुल सही बताया सिमरन तुमने। और दोस्तों, एक राष्ट्र एक समय का मतलब है देश के महत्वपूर्ण कामों और डिजिटल प्रणालियों के लिए समय का एक ही भरोसेमंद भारतीय मानक IST। इससे समन्वय बेहतर होगा, डिजिटल रिकॉर्ड अधिक सटीक होंगे और महत्वपूर्ण प्रणालियों से समय की गड़बड़ी भी कम होगी।

0: समय तू धीरे धीरे चल, ये गीत अभी आपने सुना। गायक थे किशोर कुमार, आशा भोसले और फिल्म थी कर्म। और सिमरन कुछ और मेल आई हैं, तो जो नवीन भाटिया जी हैं इन्होंने भी अपनी मेल पहले भेजी थी, जो है ये कहते हैं कि सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान के बाद ये काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, ये बात उन्होंने लिखी
1: बहुत
0: है,
1: अच्छी बहुत बात अच्छी है। बात है। और साथ में मेरे पास भी दीपा एक मेल और आ गया है, ये गौरीशंकर जी का मेल है और इन्होंने राम राम तो कही हम दोनों को, और साथ में इन्होंने कहा है कि सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी है। राम वैसे काम के लिए सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, सारा दिन ध्यान काम में रहता है इंसान के, सुबह कुछ और विचार होते हैं, शाम को बदलाव आ जाता है। तो ये आपने बहुत ही अच्छा कहा, अगर शरीर का इस्तेमाल भाग दौड़ में नहीं करेंगे तो शरीर बीमारी का घर बन जाएगा।

0: शुक्रिया गौरीशंकर नांगलोई से, बहुत बहुत शुक्रिया गौरीशंकर जी, आपका मेल बहुत अच्छा था और हमें अच्छा
1: हमारे
0: लगा।
1: सभी जो श्रोता मेल लिख रहे हैं उनको हम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज सिमरन अब हम बात करने वाले हैं सड़क नियमों के आगे शिष्टाचार, मतलब सड़क पे हमारे क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि देखो आज की जो ये हमारी बातचीत है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत जुड़ी हुई है। हम में से बहुत सी महिलाएं हैं या और भी लोग हैं खुद कार या टू व्हीलर्स चलाते हैं, और अगर वाहन नहीं चलाते तो पैदल सड़क का इस्तेमाल तो करते ही हैं, कार्यालय जाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने या लेने के लिए।
0: बिल्कुल, और ख़ास तौर पर दिल्ली NCR में रहने वालों के लिए यातायात जो है हमारी रोज़ की कहानी है। लेकिन यातायात में फंसते ही एक दिलचस्प बात होती है, हम अक्सर दूसरे को बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं और बहुत जल्दी ऐसे बोलते हैं कि जैसे मतलब उन्होंने कि अचानक ब्रेक क्यों लगा दी और इन्होंने दिशा रंग नहीं दिया, है ना, अपने आप ही बदल दी गाड़ी और साथ में मेरी लेन से मेरी लेन में क्यों आ गए, ऐसे बोलने लग जाते हैं। और कई बार क्या होता है, इतना हॉर्न जोर से क्यों बजा रहा है,
1: हाँ, ये बहुत
0: ये तो
1: होता है
0: आम बातें
1: सिमरन।
0: हैं जो रोज़ ही हर कोई बोलता है।
1: हाँ, लेकिन आज एक छोटा सा सवाल खुद से भी पूछते हैं, क्या सड़क पर हमारा अपना व्यवहार ही भी उतना अच्छा है जितना हम दूसरों से चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं? क्योंकि सड़क केवल हमारी नहीं है, ये एक साझा स्थान है जहाँ कार चालक, दोपहिया वाहन चालक, पैदल यात्री, बच्चे, बुजुर्ग और साइकिल चालक सभी एक दूसरे के साथ जगह बांटनी होती है। सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देश भी इसी बात पर जोर देते हैं कि हमें सतर्क और दूसरों के प्रति संवेदनशील भी रहना चाहिए।
0: और यहीं से आता है सड़क का शिष्टाचार, यानी कि नियम हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और लेकिन शिष्टाचार हमें ये सिखाता है कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए हमें।
1: यानी दोस्तों, दिशा सूचक देना सिर्फ एक यातायात नियम नहीं है, इससे सामने और पीछे चल रहे लोगों को पहले से पता चल जाता है कि हम आगे किस दिशा में मुड़ने वाले हैं या जाने वाले हैं। इसी तरह अगर कोई वाहन सुरक्षित तरीके से हमारी लेन में शामिल होना चाहता है तो हर बार उसे रोकने के बजाय जहाँ संभव हो उसे थोड़ी जगह देना भी सड़क पर हमारे शिष्ट और जिम्मेदार व्यवहार की निशानी है।
0: लेकिन देखो दीपा, देखो कभी कभी हमारी जो परेशानियाँ सिर्फ यातायात की नहीं होती, बल्कि हमारा अपना गुस्सा और अधीरता जो भी होती है वो यातायात को और तनावपूर्ण बना देती है। लगातार हॉर्न बजाना, बहुत कम दूरी और साथ में बनाकर पीछे चलना, अचानक लेन अपनी चेंज कर
1: बिल्कुल
0: देना अपनी, है ना, और उसके बाद दूसरे चालक को रास्ता ना देना, ये सब सड़क शिष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है।
1: इसलिए सड़क पर हमारी छोटी छोटी आदतें दोस्तों मायने रखती हैं। सुरक्षित दूरी रखना, समय पर दिशा सूचक देना, बिना ज़रूरत हॉर्न ना बजाना, पैदल यात्री को रास्ता देना और सामने वाले की गलती पर तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया ना देना।
0: और दीपा देखो, ये समझना है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा किसी और से नहीं होती, बल्कि हमसे खुद से होती है।
1: तो अगली बार जब हम सड़क पर निकलें, याद रखें सड़क पर हमें एक दूसरे के मुकाबला नहीं करना है, एक दूसरे के साथ सुरक्षित रहना है। सुरक्षित चलिए, संयम से चलिए और दूसरों को भी सुरक्षित चलने का मौका दीजिए।

0: और दीपा देखो एक मेल और आ गया हमारे पास, ये आया है गाजियाबाद से, योगांशु कौशिक का। इन्होंने लिखा है
1: क्या लिखते
0: कि
1: हैं?
0: इन्होंने लिखा है कि खास तौर पर कि मैं FM गोल्ड बचपन से सुनता रहा हूँ, आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। वही, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक
0: और
1: यू।
0: मेरा एक्टिव टाइम जो होता है शाम को होता है, जिसमें मैं 7-8 घंटे कम से किलोमीटर वॉक करता हूँ और फिट रहने के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं फिट रहूँ, है
1: बहुत
0: ना।
1: अच्छी
0: बहुत
1: बात
0: अच्छी
1: है।
0: बात है, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है। और ये भी होना भी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही एक्सरसाइज करें, आप शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और साथ में मैं ये कहूँगी कि अब मैं एक बात करना चाहती हूँ कि दुनिया तो जीत ली, क्या खुद को जीता हमने कभी,
1: ये तो बड़ी
0: कहते
1: बात
0: हैं।
1: कही सिमरन तुमने।
0: बिल्कुल। और
1: कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को जीत लेता है।
0: हम सब जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को अच्छा चाहिए, घर चाहिए, है ना, किसी को बड़ी नौकरी, किसी को नाम पहचान, और सबको पाने की कोशिश में हम अक्सर एक सवाल भूल जाते हैं, क्या हमने खुद को समझा है कभी।
1: दुनिया की नजरों में सफल होना आसान हो सकता है, लेकिन लेकिन अपने डर पर जीत पाना, अपने गुस्से को काबू करना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और मुश्किल वक्त में भी खुद पर भरोसा बनाए रखना, यही असली जीत है सिमरन।
0: और कभी कभी हम दूसरों को जीत जाते हैं लेकिन अपने मन को हार जाते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश में आपकी अपनी खुशी जो होती है वो भूल जाते हैं, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते उतरते ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी उम्मीदें क्या थी।
1: तो आज थोड़ा ठहरिए दोस्तों और खुद से पूछिए, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया लेकिन क्या मैंने खुद को जीता? क्या मैं अपनी गलतियों को माफ़ कर पाता हूँ? क्या मैं मुश्किल परिस्थितियों में शांत रह पाता हूँ? क्या मैं बिना किसी तुलना के अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ?
0: तो याद रखिए, दुनिया की तालियां कुछ पल की खुशी देती हैं लेकिन खुद पर जीत जिंदगी भर का सुकून देती है, इसलिए दुनिया जीतने की दौड़ में खुद को मत हारिए।
1: क्योंकि आखिर में सबसे खूबसूरत जीत वही है जब इंसान आईने में खुद को देखे और कह सके, हाँ, मैंने दुनिया को नहीं, सबसे पहले खुद

0: दीपा मेल आ
1: हाँ
0: गया लगता है जैसे।
1: एक मेल आई है। इद्रीस सैफी जी लिखते हैं कि जो सुबह का समय होता है वो उनका बहुत एक्टिव।
0: गीता मुखी, सिमरन मुखी, ये शांति नगर सोनीपत से है और इन्होंने लिखा है कि दीपा जी और आप मतलब बहुत बहुत आपको बधाई हो, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और
1: थैंक
0: लग
1: यू।
0: रहा है और साथ में कार्यक्रम की प्रस्तुति शाह सदाबहार गीत बहुत सुंदर लग रहे हैं, अति उत्तम प्रस्तुति है आपकी, अनमोल बातें और गीतों की तो उन्होंने तारीफ कर ही दी है। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि दिल से बहुत बड़ी बड़ी बधाई और साथ में आपका जीवन भी बहुत अच्छा रहे और ऐसी तरह से
1: हाँ,
0: एक्टिव रहे। बहुत
1: हमारी
0: बहुत
1: तरफ से
0: शुक्रिया आपका। और
1: भी।
0: साथ में एक और मेल आ गया है मेरे पास, ये है मेरठ से सुनैना गुप्ता का। इन्होंने भी लिखा है कि मेरा जो सबसे सही समय होता है जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बहुत एनर्जी फील करती हूँ और साथ में पार्क तो मैं जाती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, अगर ना जा पाऊँ तो घर में छोटी मोटी एक्सरसाइज कर
1: बहुत
0: लेती हूँ,
1: बढ़िया।
0: तो इसलिए मेरा समय जो है सुबह का बहुत अच्छा होता है। तो चलो सुबह के समय के साथ एक और गाना भी सुनवा देते हैं।

0: और देखो दीपा, समय जो घड़ी हमारी इशारा कर रही है कि हमारे कार्यक्रम का वक्त समाप्त होने को है, तो लेते हैं विदा। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मौजूद है हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, प्रधानमंत्री ने अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है इस शिखर सम्मेलन से अलग, और अभी और किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का आज कार्यक्रम है?
1: हाँ जागृति, आज का दिन राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से करीब 1.5 घंटे बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से ही ब्रिक्स के सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इसके अलावा इथियोपिया ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर चर्चा हुई। जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की पहली यात्रा है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। और इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगशो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। ये सेवा ऐसे समय फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60

0: वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय में बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली की चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 18th BRICS summit is set to begin in New Delhi this afternoon. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues, including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy security, healthcare, disaster resilience, and critical supply chains. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, and Iranian President Masoud Pezeshkian. The summit will begin with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Leaders of the BRICS member countries will also visit the Bharat Innovates exhibition at Bharat Mandapam. This will be followed by a joint tree planting ceremony and a gala dinner hosted by Prime Minister Modi. Let's cross over live to our correspondent Anupam Mishra, who's at the venue of the summit, that is Bharat Mandapam in New Delhi. So Anupam, can you give us a sense and the overall vibe of the venue?
2: Yes, Shagun, the BRICS summit is all set to begin here in Bharat Mandapam. And nearly after an hour, the heads of state and heads of government will start arriving at the venue, and the close for 11 begin at the summit hall at 2:30, where they will deliberate on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Shagun, Prime Minister held bilateral meetings with his counterparts from Ethiopia, Malaysia, and Vietnam, and also with counterparts of Abu Dhabi, and he will hold talks with Chinese President this evening. Shagun, if we talk about India's BRICS chairship, it is coming at a time of significant global transformation as international system is experiencing economic fragmentation, technological disruption, right, and geopolitical uncertainty. BRICS providing an important avenue for addressing these challenges through dialogue and coordinated action. Shagun.
1: All right. Thank you, Anupam, for laying out those specifics for us from the ground. Chinese President Xi Jinping has arrived in New Delhi to participate in the BRICS summit. Prime Minister Modi is scheduled to hold a bilateral meeting with the Chinese President later today. Foreign Affairs Minister of Belarus, Maxim Ryzhnikov, arrived in New Delhi this morning to participate in the 18th BRICS summit in New Delhi. Prime Minister of Vietnam, Le Minh Hung, has also arrived in New Delhi for the summit. He was received by Minister of State for Civil Aviation, Muralidhar Mohod, at the airport. Earlier this morning, Director General of WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, landed in New Delhi to attend the summit. External Affairs Ministry said that his visit underscores the importance of global cooperation in health-related matters.

0: that is, for shared progress and prosperity. Prime Minister Narendra Modi today held bilateral talks with his Ethiopian counterpart Dr. Abiy Ahmed Ali on the sidelines of the 18th BRICS summit in New Delhi. The Ministry of External Affairs said in a statement that the two leaders held discussions aimed at further strengthening the bilateral strategic partnership. Both the leaders reviewed progress across key sectors, including economic cooperation, defense and security partnership, and capacity building. The Prime Minister also held bilateral talks with his Malaysian counterpart Anwar Ibrahim on the margins of the BRICS summit being held under India's chairship. During the meeting, the two leaders reviewed the progress in bilateral cooperation across a range of areas, including trade and investment, defense and security, and people-to-people ties. Mr. Modi appreciated Malaysia's continued support in strengthening ASEAN-India relations. The leaders expressed their continued commitment to advancing the India-Malaysia Comprehensive Strategic Partnership. In hockey, India reached the final of the Women Junior Asia Cup 2026, defeating South Korea 5-1 in Mochi, China today. For India, Supriya scored a hat-trick, while Madhu Sidhar and Sukhveer Kaur also found the net for India. Yuri Rong scored South Korea's only goal of the match. India will face the winner of the second semi-final between China and Japan in the final. Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and Lok Sabha Speaker Om Birla have extended their wishes to the countrymen on the occasion of Prakash Purab of Sri Guru Granth Sahib today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. और अब समय है आपके रेडियो कार्यक्रम एक ही फिल्म से, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश.
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ.
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले. आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे.
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे.
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में.
2: सर 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं.
3: अरे
2: काट दिया.
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है.
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें. अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे.
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: आदाब, सत श्री अकाल. आपकी दोस्त और इस लाइव कार्यक्रम की होस्ट RJ रैना तंवर का स्वीकार कीजिए प्यार भरा खुशनुमा नमस्कार. और आज लेकर हाजिर हूँ फिल्मी गलियारों से जुड़ा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जहाँ हम बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसमें अपने ही दौर में एक दर्शकों के लिए दिल पर एक छाप छोड़ दी थी. जी हाँ, आज की फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इसका नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दर्शाता है. जी हाँ, 1979 में रिलीज हुई ये फिल्म की कहानी रोमांस, इमोशंस, परिवार, जंगल और एक्शन के साथ इंसाफ की कहानी है, जिसमें धर्मेंद्र, रेखा और विनोद बेहरा ने अभिनय निभाया. अरे बाबा, मैंने तो शायद लगता है बातों बातों में सारे क्लू दे डाले हैं. तो चलिए श्रोताओं, आज के इस फिल्मी सफर को शुरू करते हैं आप ही के साथ. तो फोन उठाएं, हमें आज के इस कार्यक्रम में किस फिल्म की हम बात कर रहे हैं और किस गानों को लेकर हम आए हैं, किस फिल्म के गानों को लेकर आए हैं, हमें जल्दी से मैसेज करें हमारे इस ईमेल आईडी पर. जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com. जो भी सबसे पहले हमें सही जवाब देगा, जैसे कि आप जानते हैं रहना है तो ये खेल, तो हमें कुछ तो कहना है. जो भी सबसे पहले हमें सही जवाब देगा वो हमारे आज के इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता होगा. तो देरी किस बात की, जल्दी से आप फोन उठाएं और हमें मैसेज भेजें. इंतजार रहेगा इस गाने के साथ.

जी हाँ, हम जिस फिल्म की बात लेकर आज हम आए हैं, हमारे पास ना बहुत सारे जवाब आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले जिसने हमें जवाब दिया है वो है हीरा मणि वर्मा जी, धनरेगी भाटापारा से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत बधाई आपको कि आज आप हमारे इस लाइव कार्यक्रम के हमारे फेवरेट श्रोता हैं। तो दोस्तों, आज के इस फिल्मी सफर में हम 1979 की फिल्म कर्तव्य की बात कर रहे हैं, एक ऐसी फिल्म जिसमें धर्मेंद्र का दमदार अंदाज, रेखा की खूबसूरत अभिनय, विनोद मेहरा जी का महत्वपूर्ण दमदार किरदार है, और निरूपा रॉय का इमोशनल टच, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और साथ ही लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और उषा मंगेशकर, यानी कि एक ही फिल्म में उस दौर की कई महान आवाजों का संगम। दोस्तों, कर्तव्य की कहानी का केंद्र है विजय, जिसका किरदार निभाया था धर्मेंद्र जी ने, विजय नाम से, और एक वन अधिकारी हैं, और कहानी जंगल, वन्य जीवों और अपराधी की दुनिया से जुड़ती है। विजय के सामने सिर्फ अपनी नौकरी निभाने की चुनौती ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और अतीत से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने की भी है। यही वजह है कि शायद जहां फिल्म का नाम कर्तव्य अपना असली अर्थ सामने लाता है, क्योंकि कर्तव्य सिर्फ नौकरी निभाना ही नहीं होता, कर्तव्य सही और गलत के बीच सही फैसला लेना भी होता है।

जी हाँ, क्या आप जानते हैं विनोद मेहरा वाले ग्रे शर्ट विलन यानी कि दुष्यंत के रोल के लिए ये मेकर्स की जो पहली पसंद थी वो जितेंद्र जी थे। जितेंद्र साहब इस रोल के लिए पहले मान भी गए थे लेकिन बाद में उन्होंने बैकआउट कर दिया। उन्हें डर था कि एक नेगेटिव रोल करने से उनकी चॉकलेटी जो छवि है वो हीरो वाली इमेज खराब हो जाएगी। और दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार ने भी इस फिल्म में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड के रूप में स्पेशल अपीयरेंस भी दी है लेकिन उनका नाम फिल्म के टाइटल स्क्रीन में नहीं दिखाया गया। और इसी तरह से बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का हमारे कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें अपने हौसला अफजाई मिल जाती है अगर आप हमें मैसेज करते हैं। और स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज जी ने हमें मैसेज किया है अब इस कार्यक्रम में। और उसी तरह के से हमें भूषण खेरा जी ने मैसेज किया है पंजाब से, और विशु शालिनी खेड़ा और इन सभी ने हमें मैसेज किया है। बिट्टू गंगेजा ने भी, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा, इन्होंने हमें मैसेज, थोड़े सुदर्शन शाह जी ने हमें मैसेज किया है, और नितेश देवांगन जी ने, दुर्गा, पराग, पूना, कृष्णा देवांगन जी ने हमें मैसेज किए हैं, राजकुमार जी ने हमें मैसेज किया है, और सुदर्शन मुखी जी ने, नीता, सिमरन, शांति नगर, सोनीपत जी हमें मैसेज कर रही हैं, और हीरा मनी जी ने हमें किया ही था, डोल राणा जी ने मैसेज किया, प्रकाश वर्मा जी ने, प्रिंस निखिल, यशस्वी, अन्नपूर्णा जी ने मैसेज किया है, आर कुमार जी ने मैसेज, पिंकी मिंटू पंजाब से, वनवीर खेड़ा और आरती लवली, पिंकी पिंकी और लवली ने किया है। तो हम सुनते हैं अब ये अगला नगमा।

जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आरजे रैना के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है 1979 की फिल्म कर्तव्य। इस फिल्म की जो से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि फिल्म कन्नड़ सिनेमा की मशहूर फिल्म गंडागुड़ी की रीमेक है, और 11 मई 1979 की रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा उस दौर में बच्चों और परिवारों के बीच ब्लॉकबस्टर गाना हिट हुआ।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म कर्तव्य की, और फिल्म बनने के दौरान बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हुई, जैसे कि विनोद मेहरा की निजी जिंदगी में काफ़ी उथल पुथल रही। इस फिल्म के दौरान मीना से शादी की थी, वहीं दूसरी तरफ एक खतरनाक स्टंट सीन करते समय उनका एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो गया था। फिल्म में सितारों की जिंदगी कैमरे के सामने, जिंदगी ग्लैमरस तो होती है लेकिन कैमरे के पीछे उतनी ही मेहनत और मुश्किलें होती हैं। और हमारे पास बहुत सारे इस तरह से मैसेज आए हैं। धर्मेंद्र छिप्पा जी का मैसेज आया है, हमारे राजस्थान से कपिल ईशान पूजा जी का मैसेज आया है, और इशाक मोहम्मद जी का हमें आया है, आफरीन, खतीजा बेगम, नीलोफर वातिमा, और हमारे पास हमें मैसेज कर रहे हैं देवशंकर तमुरिया जी का मैसेज आया है की फिल्म से। जी बिल्कुल सही जवाब आपका भी है, छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज कर रहे हैं डोडी लोहरा बालोद, देवशंकर तमुरिया जय, तुषार डॉली बेबी पूजा, और राधिका प्रभा देवी, मास्टर अल्प कबीर, और फागुनी राम यादव जी हमें मैसेज कर रहे हैं, और फागु राम, ज्योति ओजस्वी, और इसी तरह से सुधाकर जाधव जी ने हमें मैसेज किया है, प्रशांत राधे और राजे जाधव देशमुख, और सचिव संचित देशमुख, और इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज आने का, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप हमें मैसेज करते रहिएगा, और सुनते हैं अगला ये नगमा।

गुरमीत जी का साउथ एक्सटेंशन से हमें मैसेज आया है, और इसी तरीके से स्वर्ण सिंह जी का, दलजीत राजे गुरनूर गुरनाल अविराज जी, संजय धिंगिया जी, देवशंकर तमुरिया जी का, और धर्मेंद्र छिप्पा जी का, संदीप मक्कर जी का, राजकुमार जी का, संदीप मक्कर, अनिल मोहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरीके से अजीत भावस्कर का भी मैसेज आया है, और राधेश्याम देवांगन जी का, और लाल गिरी जी का, फारूक अली खान का, धर्मेंद्र छिप्पा जी का, दिग्दर्शन जी का, पीएस नावस्कर का, भूषण खेरा जी का, कमलकंत का, स्वर्ण सिंह का, धर्मेंद्र छिप्पा, अभी बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिनका हम नाम नहीं ले पाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारी कोशिश रहती है कि हम सभी श्रोताओं का नाम इस कार्यक्रम में शामिल करें।

मधुकर जी का मैसेज आया है, सुशीला सदानंद कुमार गौरव जी का मैसेज हमें आया है, कमलकांत जी का आया है और मसूर हसन जी का हमारे पास मैसेज आया है। बहुत बहुत शुक्रिया।

तो दोस्तों, ज़िंदगी में रिश्ते बहुत बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियां हमें निभानी पड़ती हैं, क्योंकि अधिकार हमें खुशी दे सकते हैं लेकिन कर्तव्य हमें पहचान देता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आरजे रैना तंवर का लेती है आप इस कार्यक्रम से विदा। फिर मिलेंगे एक और यादगार फिल्म की कहानी, उसके गीत, अनसुने किस्सों के साथ। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, कुछ करें ऐसा जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके चेहरे को दे सुकून। एक अच्छा नागरिक बने। सुनते रहें आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज़ कुछ कहती है मेरे दोस्त।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हो रहा है हमारे पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी समाचारों का। तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के नाल मैं यादविंदर सिंह, पहला बुलेटिन दिया खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली च इथोपिया और मलेशिया के प्रधानमंत्रियों समेत कई ब्रिक्स नेतावान दुवली गलबात की। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने अज अपने 7 साल पूरे कर ले ने। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूजे पड़ा तहत 18,77,000 मकाना मंजूरी दी है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश पर्व अज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह मनाया जा रहा है। हाकी भारत दक्षिण कोरिया 5-1 हरा के महिला जूनियर एशिया कप हाकी टूर्नामेंट के फाइनल च पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली च 18वें ब्रिक्स सम्मेलन तो वक् इथोपिया के प्रधानमंत्री डॉ अबी अहमद अली नाल दुवली गलबात की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोवे नेताओं दरमियान हुई चर्चा का उद्देश्य दुवली रणनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूत करना सी। दोवे नेताओं ने आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा भाईवाली ते समर्थन निर्माण समेत मुख्य खेत्रां च प्रगति की समीक्षा की। दोवे नेताओं ने आपसी हित के खेत्रां ते आलमी मुद्दों उत्ते भी विचार सांझे कीते ते बहुपक्षी फोरमां च नजदीकी सहयोग प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 18वें ब्रिक्स सम्मेलन च इथोपिया की हिस्सेदारी की शलाघा की। कहा कि इस मौजूदगी ने ग्लोबल साउथ की सोहक आवाज होर मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम नाल भी दुवली गलबात की। मीटिंग दौरान दोवे नेताओं ने व्यापार ते निवेश, रक्षा ते सुरक्षा और लोगों तो लोगों के संबंधों समेत वख खेत्रां च दुवली सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने फरवरी महीने प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया यात्रा दौरान हुई प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान भारत संबंधों को मजबूत करने मलेशिया के निरंतर समर्थन की शलाघा की। दोवे नेताओं ने आपसी हित के मुख्य खेत्रों के आलमी मुद्दों उत्ते विचार विरांदरा किया। भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक भाईवाली होर अगे बढ़ाने लई अपनी वचनबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने आबू धाबी के वली अहद शहजादे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान वियतनाम के प्रधानमंत्री ले निन हुंग नाल भी दुवली गलबात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नाल भी दुवली गलबात करेंगे।

0: Strategic islands tightening grip on Red Sea shipping route. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Orange alert for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, Telangana and Vidarbha for today. And in hockey, Indian women team enters Junior Asia Cup 2026 final, defeating South Korea 5-1 in Mochi, China. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबू धाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से, लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोखी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
2: जी जागृति, देखिए।
1: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और इस सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
2: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है।
1: जी,
2: विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे ये नेता। इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। यह देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह ये भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक GDP में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति।
1: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज

0: शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी चिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं, और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
1: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
0: जी,
1: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति चिनफिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
0: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगशो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थीं, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
3: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
4: फ्रॉम लैब टू मार्केट, फ्रॉम इंडिया टू वर्ल्ड।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2,000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
1: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेश श्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय

0: वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पुणे के सौजन्य से प्राप्त रूपक। शास्त्रीय संगीत के अमर गायक, स्वर साधक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर पर केंद्रित है हमारा आज का रूपक। लेखक डॉक्टर सुनील केशव देवधर, प्रस्तुति देवकी कुलकर्णी। आइए सुनते हैं रूपक राग के मंसूर पंडित मल्लिकार्जुन।

0: भारतीय शास्त्रीय संगीत समन्वय का अन्यतम उदाहरण है। भारत के कंपोजिट कल्चर सामासिक संस्कृति के अविरल धारा, धर्म जाति संप्रदाय से परे सिर्फ और सिर्फ स्वर की साधना।
1: याद आते हैं घराने जहां स्वर ही देवता है।
0: आगरा घराने के गायक गुरु पंडित श्री कृष्ण बुआरा तंजंकर गाते हैं बंदिश सुमेरा साहेब सुलतान, और रामपुर सहसवान घराने के उस्ताद इनायत खां की पेशकश प्रथम धर ध्यान गणेश। इसे दोहराते हैं।

ये संगीत ही है जिसकी साधना उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर के शारदा मंदिर में करते हैं और उस्ताद बिस्मिल्ला खां वाराणसी के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में।

0: और पंडित रामशरण मिश्र पुत्र प्राप्ति की मन्नत के बाद पुत्र का नाम ही दरगाही मिश्र रखते हैं।
1: और इतना ही नहीं, एक नाम ही ऐसा है जिसमें तहजीब की खुशबू और संस्कृति की सुगंध बसती है, वो नाम है
0: पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर।

0: मल्लिका का अर्थ है अगर की गंध या चमेली का फूल। मंसूर अरबी भाषा का शब्द है, अर्थ है विजेता या अजित, अजिंक्य। अर्जुन उज्जवल, दिन सा उजाला, रुपहला और पवित्र।
1: हम कह सकते हैं अपने पवित्र स्वर की सुगंध या खुशबू लिए राग के रथ पर आरूढ़ जेत्ता या विजेता से उज्जवल और धवल हैं।
0: पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर।

0: धारवाड़ जिले के मंसूर गांव के एक साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ। तारीख थी 31 दिसंबर 1910। छोटे से गांव में शिक्षा की सुविधाएं कहाँ थी, इसलिए पिता श्री भीमरायप्पा मंसूर ने प्राथमिक शिक्षा के लिए धारवाड़ भेजा।
1: स्कूली शिक्षा आरंभ हुई, लेकिन इस पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बालक मल्लिकार्जुन के मन में संगीत कला के लिए एक आंतरिक स्फूर्ति और लगाव था।
0: संगीत की आरंभिक शिक्षा अय्यप्पा स्वामी ने कर्नाटक शैली में दी और उसके बाद ग्वालियर घराने के नीलकंठ बुआ से प्रशिक्षण प्राप्त कर मल्लिकार्जुन मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर आदि नगरों में अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे।

पंडित मंसूर का विशिष्ट योगदान है कि उन्होंने कन्नड़ साहित्य में वचन और रगड़े गद्य की अधिकता वाली एक शैली को संगीत की शैली में ढालकर उसे लोकप्रिय

पंडित मंसूर के गायन पर उस्ताद अल्लादिया खां के बेटे, उनके गुरु मज्जी खां और भुर्जी खां का अत्यधिक प्रभाव है। कहते हैं, पंडित मंसूर के गाए राग गौड़ मल्हार और अडाना की प्रस्तुति से प्रभावित होकर ही उस्ताद मज्जी खान ने उन्हें अपना गंडाशिष स्वीकार किया।

0: किस्सा कहाँ सुना जाता है। पंडित मंसूर एक महफिल में गायन प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने तान ली और श्रोताओं में उपस्थित गायन के जानकार ने कहा,
1: आपके उस्ताद तो ऐसी तान नहीं लेते थे।
0: पंडित मंसूर का उत्तर था,
1: मैं अपने उस्ताद का शागिर्द हूं, स्टेनोग्राफर नहीं।
0: और उसके बाद उन्होंने वो तान भी ली जिसे उनके गुरु उस्ताद मज्जी खान लिया करते थे।
2: मंजी खास और सुनने से किसी

0: सन 2010 पंडित मंसूर का शताब्दी वर्ष था। आयोजन हो रहे थे, कैटलॉग और फोल्डर्स प्रकाशित हो रहे थे। एक पर अपने शुभकामना संदेश में स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी ने लिखा था,
1: पंडित मंसूर वॉज माई सीनियर एंड वी शेयर्ड मैनी क्लोज मोमेंट्स। हिज टोटल डेडिकेशन टू म्यूजिक एंड पैशन फॉर सिंगिंग मेड हिम द आइडियल म्यूजिशियन एंड अ ट्रू तपस्वी।
2: पंडित मंसूर मेरे वरिष्ठ हैं और हमने कई आंतरिक पल साथ बिताए हैं। उनका संगीत के लिए संपूर्ण समर्पण और गायन के जुनून ने ही उन्हें आदर्श संगीतज्ञ और सच्चे अर्थों में तपस्वी बनाया।

0: वैसे तो रागों की अदायगी का अपना रंग और राग है, और जयपुर अत्रोली घराने के पंडित मंसूर को कुछ अप्रचलित रागों की अदायगी में निपुणता हासिल थी। इस संदर्भ में राजशेखर मंसूर बताते हैं,
1: जयपुर अतरौली घराने ने शुरू से ही लीक से हटके ऐसे रागों को छांटा जो बाद में तो अप्रचलित हुए भी, लेकिन उस समय भी वो बड़े ही वक्रत्व लिए हुए थे। तो
2: हाँ जी,
1: ऐसा कौन सा उन्होंने चॉइस की जिसके कारण ये कुछ अंग जो हैं, विशेष तौर से कान्हड़ा अंग
2: हाँ जी,
1: और बिलावल अंग, इन्हें ही ज़्यादा छाटा गया, इनके ही राग ज़्यादा आए प्रचार में जयपुर वालों के लिए?
2: हाँ,
1: जी
2: इसका उत्तर मैं दे दूंगा। ये जो जयपुर अत्रौली घराने का सिस्टम है, इसका उद्देश्य ये है कि विशेष अंग, अष्ट अंग बोलते हैं हम, इनको अलग अलग रख के नहीं बनाए। आलाप, उसके बाद बोल, उसके बाद बोलबाट, ऐसा
1: नहीं
2: नहीं
1: किया।
2: नहीं किए, क्योंकि वैसे करने से क्या होता है, सिंपल बन जाता है, सिस्टम ही सिंपल बन जाता है।
3: शुद्ध नट, हेम नट, खट और शिव भैरव, इसके अलावा बहादुरी तोड़ी जैसे राग उनकी गायन शैली से नई पहचान पा जाते थे।

पंडित मंसूर लय और ताल दोनों में भाव तत्व की मौजूदगी के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। उनका स्वर ताल के साथ मिलकर अभिव्यक्ति और व्यंजना को और भी अधिक तरल और मुखर कर देता है और एक अकल्पनीय नाद की रचना हो जाती है।

0: पंडित मंसूर ने कन्नड़ में अपनी आत्मकथा लिखी मेरी संगीत यात्रा, जिसका अंग्रेजी अनुवाद माई जर्नी इन म्यूजिक उनके बेटे राजशेखर मंसूर ने किया। अपनी इस आत्मकथा को उन्होंने रसयात्रा कहा। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है,
1: मेरे लिए कोई भी महफिल उन कभी न समाप्त होने वाली महफिलों का विस्तार भर है जो मेरे मन में लगातार चलती रहती हैं। जिंदगी मेरे लिए एक सुरीली महफिल है और मैं उसे श्रोताओं के सामने उनकी टिप्पणी के लिए गाता हूं। बरसात का पानी नदी में गिरता है और नदी एक बार फिर समुद्र तक पहुंचती है। समुद्र से

0: हाँ, इस बारे में तुम्हारा एक पर्चा भी देखा था अब किसी मैगजीन में। क्या था भला उसमें?
1: यही कि हम एक संख्या को कई तरह से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर चार। चार को हम पांच तरह से लिख सकते हैं। हाँ, जैसे 4+0, 3+1, 2+2, 2+1+1 एंड 1+1+1+1 है। इसी तरह से एक्सेसिव एंड डिफेक्टिव नंबर है। 6 एंड 28 जैसे परफेक्ट नंबर्स हैं। इसके अलावा मैंने कुछ प्राइम नंबर्स यानी मूल अंकों का पता लगाया है। वो हैं 3, 5, 7, 11।
2: यानी
1: यानी ये वो नंबर हैं जो इंडिविजिबल यानी जिनका कोई विभाजन नहीं हो सकता। इसके अलावा टेंजेंट फंक्शन, गामा फंक्शन और थीटा फंक्शन पर भी कुछ काम किया है मैंने।
0: रामानुजन भाई, कुछ हमारे लिए भी छोड़ोगे?
2: थोड़ा बहुत नाम हम भी कमा लें। हाँ
0: अब आ ही गए
1: यार, ऐसे तो बहुत से एरिया हैं। अच्छा, एरिया से मुझे याद आया कि बेतरतीब जमीन के टुकड़े का क्षेत्रफल जानने के लिए मैंने डाइवर्जेंट सीरीज पर काम किया है।
2: चाहे वो टुकड़ा कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो।
1: हाँ।
0: अरे ये सायरन कैसा है?
1: टोटल ब्लैकआउट का टाइम हो गया।
0: बात तो कर सकते हैं ना? बड़ा खतरनाक वक्त है। अरे बम यहीं ना गिर जाए।
1: अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ
0: रामानुजन, तुम अपनी बात कहते रहो, ये तो बचपन से ही डरपोक है।
2: अच्छा, जहाज पर चढ़ने से तुम डर रहे थे या मैं?
0: वो अलग बात है। वो
2: मैं। समुद्री लहरों से तुम घबरा रहे थे या मैं?
0: अच्छा, बस बस बस बस बस।
2: अरे, ये बू कैसी आ रही है?
0: हाँ,
1: बारूद की बू है ये, पूरी हवा में है। ये बारूदी धुआं मेरी जान लेने का।
0: क्या हुआ? पहले पहले भी ऐसा होता
2: अरे
0: है क्या?
2: बिस्तर पर लेटाओ।
0: डॉक्टर बुलाएं?
2: अरे, अस्पताल ले चलें।
0: हाँ,
2: कुछ नहीं कुछ नहीं, पानी पानी दे तुम मुझे सिर्फ।
0: हाँ,
2: ये लो पानी। ये दवा तुम्हारी है?
1: वो वहां रखिए दवा।
0: हाँ, मैं लेके आया। ये
1: मैं सो रहा हूँ अब।
0: चिंगल चिंगल, क्या हुआ?
2: कृष्ण स्वामी, बुरी खबर।
0: हैं?
3: चिंगल, व्हाट डिड डॉक्टर से?
2: तपेदिक, ट्यूबर क्लासेस सर।
3: ओह नो, एट दिस एज?
0: चिंगल, अब
2: डॉक्टर ने कहा है कि इसे भारत वापस ले जाना ठीक रहेगा। एक तो जंग, सारे वातावरण में बारूद ही बारूद की बू।
0: हाँ।
2: और कृष्ण स्वामी, तुम तो जानते हो, श्रीनिवास को कई चीजों से परहेज भी है।
0: हाँ, वो तो है।
3: नो नो नो, लेट मी टॉक टू द डॉक्टर।
2: उसे कुछ तो बताना होगा सर, और वापस जाना बहुत जरूरी है।
0: जी सर, जी।
4: क्या हो गया ये सब तुम्हें?
1: लगता है चलने का वक्त आ गया।
4: नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। ये रोड नहीं छोड़ना था, वहां अपना घर है।
1: मद्रास में भी राव बहादुर का अपना ही घर था।

0: परेशान जानकी, मैंने तुम्हें कब परेशान नहीं किया?
1: एक बात पूछूं,
0: बोलो।
1: लंदन से मेरी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं देते थे?
0: मैं जवाब नहीं देता था? तुम्हारी हर चिट्ठी का जवाब दिया मैंने, और जब तुमने ही चिट्ठी लिखना बंद कर दिया तो क्या करता?
1: कितनी चिट्ठियां लिखी थी मैंने तुम्हें, पर जब तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया तो मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखना बंद कर दिया।
0: चांद की, मैंने तुम्हारी हर चिट्ठी का जवाब दिया, तुम्हारी याद के सिवा मेरे पास और था ही क्या वहाँ?
1: झूठ, तुम तो हमेशा अपने नंबरों में ही उलझे रहते हो।
0: हाँ, रहता था, लेकिन हाथ में रात को सोता भी है जानकी, उस वक्त तुम्हारी याद जरूर आती थी।
1: झूठ,
0: फिर नंबर आते जाते जाते आते पता ही नहीं चलता था कि कब तुम्हारी याद को नंबर ठक लेते थे और कब नंबरों के साथ ही तुम्हारी याद तैरने लगती थी, सब गड़बड़ हो जाता था तो नींद घेर लेती थी।
1: चिट्ठियों का जवाब देते थे तो फिर जाती कहाँ थी तुम्हारी चिट्ठियाँ? मैंने तो एक एक चिट्ठी लंदन भी भेजी थी, तुम्हारे वो तुम्हारे दोस्त स्वामी के हाथ।
0: स्वामी के हाथ?
1: हाँ,
0: लेकिन उसने बताया नहीं मुझे, और ना ही चिट्ठी थी, तुमने खुद दी थी?
1: हाँ, मैंने खुद दी थी उसे। नहीं नहीं, मुझे याद आया, मैंने वो चिट्ठी लिखकर अम्मा को दी थी। आप समझ गई सारी बात।
0: अम्मा? ऐसा क्यों किया अम्मा ने? अम्मा ऐसा क्यों करेगी, समझ में नहीं आ रहा।
1: समझ में तो आता है, लेकिन चलो छोड़ो ये सब। सबसे जरूरी बात है कि तुम्हारी सेहत में सुधार हो जाए और तुम जल्दी से ठीक होकर फिर से अपने काम में तेजी से जुट जाओ। अपना काम प्योर मैथमेटिक्स, नंबर से जुड़े रहोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा सुनो, प्रोफेसर हार्डी से तुम्हारी बात होती है?
0: हाँ, उन्हें मैंने अपने मार्क थीटा फलन के आविष्कार के बारे में खत लिखा था, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं मिला।
1: मार्क थीटा?
0: हाँ, प्रोफेसर रोसस ने फॉल्स थीटा फलनों का कुछ अध्ययन अपने निबंध में किया है, लेकिन मेरी खोज में ये गणित में बड़ी खूबसूरती से लागू किया जाता है।
1: मेरे पास नहीं है इतनी समझ, प्रोफेसर हार्डी को भेजो ना।
0: भेजा है ना, साथ में कुछ उदाहरण भी भेजे हैं, लेकिन अभी तक उनकी राय नहीं मिली, बहुत बिजी हैं वो।
1: आराम से चलो, सूरज भी छिपने जा रहा है, हवाओं में नमी बढ़ जाएगी। चलो अंदर चलो।
0: एक मिनट, सहारा दो मुझे।
1: आराम से चलो
0: चलो।
2: श्रीनिवास का भारत लौटना भी आखिरकार निरर्थक रहा। भारत में उसका इलाज शुरू हुआ मद्रास में, मद्रास से कुंभकोणम, समुद्री हवाएं,
3: पहाड़ी मौसम,
2: बेहतर दवाएं,
3: दोस्तों की दुआएं और जान की भाभी की अथक सेवा,
2: अम्मा की पूजा,
3: नामगिरी का मंत्र जाप,
2: फिर भी हालत नहीं सुधरी।
3: श्रीनिवास ठीक नहीं हो सका, और वो कुंभकोणम में पैदा हुआ भारत का विलक्षण अंक दृष्टा 26 अप्रैल
2: 1920 को छोटी सी 32 वर्ष की आयु में अपनी अक्षय कीर्ति छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। वो जिसने बचपन में सवाल किए थे, पहला सवाल, क्या शून्य को शून्य से भाग देने पर संख्या आएगी,
3: और फिर जीवन भर सवाल ही करता रहा, ढूंढता रहा उनके जवाब, संख्याओं का वो जादूगर चला गया।
2: वो अंकों का खिलाड़ी नहीं रहा।
3: अब हमारे पास समुद्री हवाएं हैं, पहाड़ों का मौसम है, अंकों का संसार, और हम खाली हाथ उठाए खड़े हैं
2: आसमान की ओर, जहां सिर्फ शून्य है, शून्य का विस्तार, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं रामानुजन के गणित का इस्तेमाल, प्योर मैथमेटिक्स,
3: शुद्ध गणित,
2: परमाणु शक्ति,
4: शून्य, शून्य का विस्तार, और हम आज भी खोज रहे हैं रामानुजन होने का अर्थ, रामानुजन होने का अर्थ, रामानुजन होने का अर्थ।
5: अभी आप सुन रहे थे नाटक रामानुजम।

0: लेखक डॉक्टर प्रताप सहगल, भाग लेने वाले कलाकार थे साबिर हुसैन, राजेश बख्शी, राजीव शर्मा, किशोर सहजानी, ब्रजमोहन यादव, जयदीप सिंह, उर्मिला चंदोलिया, सविता शर्मा और नौरीन शर्मा। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है और ये शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
2: प्रधानमंत्री ने वैश्विक शासन के लिए 10 सूत्री कार्य योजना का प्रस्ताव रखा और कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अब और टाला नहीं जा सकता।
3: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
2: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता दीपेंद्र। दीपेंद्र, शिखर सम्मेलन से जुड़ा क्या ताजा अपडेट है आपके पास?
4: जी देवेंद्र, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले सदस्य देशों के नेता जो है समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया बड़े बदलाव, आर्थिक चुनौतियों और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस ब्रिक्स समिट का संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि यदि हमारा भविष्य साझा है तो उसके निर्माण का अधिकार भी साझा होना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में सभी नेताओं का गर्व स्वागत किया था। वहीं सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए एकत्रित होंगे। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं के सम्मान में भव्य रात्रि भोज का। जी देवेंद्र
2: जी, धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और अबू धाबी के युवराज के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा तथा क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान भारत संबंधों को मजबूत करने में मलेशिया के समर्थन की सराहना की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक में दोनों पक्षों ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत

0: करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन से मुलाकात की। इससे पहले कल श्री पेजिश्किन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगचो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। ये सेवा ऐसे समय में फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। और भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साहिरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the chairship changing every year. In his opening remarks at today's session of the BRICS Summit 2026, which got underway at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister said the mechanism would enable follow-up of all initiatives and outcomes through the Troika. The Prime Minister said, BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. He said the process must begin with the grouping's own working system.
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो प्रपोज टू एस्टैब्लिश अ सी फेयरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क टू कनेक्ट द मैरिटाइम अथॉरिटीज एंड डिप्लोमेटिक मिशंस ऑफ रेलेवेंट कंट्रीज टू फैसिलिटेट असिस्टेंस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स।
2: सी फेयरर्स का वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, किंतु अक्सर मुश्किल समय में उन्हें सहारे की कमी महसूस होती है। मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम सी फेयरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं। इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: Prime Minister Modi said the time has come to translate the unity and consensus among BRICS countries into concrete outcomes on the global stage. He stressed that BRICS members respect one another and move forward through consensus. He said the grouping is not working against anyone but is moving forward with the approach of taking everyone along. The Prime Minister described this year's BRICS summit as a historic milestone as it is celebrating its 20th anniversary. He said BRICS is at its coming-of-age moment and has established its distinct identity on the global stage over the past 2 decades. Mr. Modi said India's chairship of BRICS is based on a people-centric and humanity-first approach. He said resilience, innovation, cooperation and sustainability have been India's foremost priorities as chair. The Prime Minister noted that the Global South stands in the front row of global crisis but in the back row of decision-making. On the issue of reform in the UN Security Council, the Prime Minister emphasized that the reform of UNSC can no longer be postponed and negotiations on this matter must be linked to a definite time frame and clear outcomes. Earlier, Prime Minister Narendra Modi welcomed the leaders of BRICS member countries at the Bharat Mandapam for the summit. We now go over live to our correspondent Anupam Mishra, who is present at Bharat Mandapam. Anupam, what's the latest that you have for our listeners?
3: Saira, on the first day of BRICS summit, leaders of the member countries are discussing ways to promote inclusive global governance and strengthen multilateralism. And at the beginning of the session, Prime Minister Modi gave the message that BRICS summit should be clear And if the future is shared, then the right to shape the future should also be shared. After the session, leaders of all member countries visit the India Innovate Exhibition. They will jointly participate in a tree planting ceremony and gather for a family photograph. In the evening, Prime Minister Narendra Modi will host a gala dinner in the honor of the BRICS leaders attending the summit. Saira.
1: Right. Thanks a lot, Anupam, for that update. Prime Minister Modi today held a series of bilateral meetings on the sidelines of the 18th BRICS summit in New Delhi. He met Ethiopian Prime Minister Dr. Abiy Ahmed Ali and reviewed cooperation in trade, defense and security and capacity building. Mr. Modi also held talks with Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Both sides reiterated the importance of India-UAE comprehensive strategic partnership. Later today, the Prime Minister is scheduled to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. और अब समय हुआ है खोए पाए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं का. सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई है थाना नंदनगरी नई दिल्ली कमिश्नरेट से. खोए पाए व्यक्ति की जानकारी, उनके नाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है. अंतिम बार उन्हें 30 अगस्त को देखा गया था. उनकी आयु 25 वर्ष पुरुष, कद 5 फुट 5 इंच. जिस किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो, कृपया संपर्क करें थाना नंदनगरी कमिश्नरेट नई दिल्ली. अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना नंदनगरी से ही, कमिश्नरेट दिल्ली. खोए पाए व्यक्ति की नाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है. आयु 50 से 55 वर्ष पुरुष, कद 5 फुट 5 इंच. जिस किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो, कृपया संपर्क करें थाना नंदनगरी कमिश्नरेट दिल्ली. अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर. खोए हुए व्यक्ति का नाम नेहा, पुत्री राम बहादुर, निवासी ग्राम गंग गहतोली. आयु 15 वर्ष महिला, कद 5 फुट 3 इंच. घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं. जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो, कृपया संपर्क करें थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर. अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना सेक्टर 24 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर. खोए हुए व्यक्ति का नाम मसूदा, पत्नी अब्दुल खालिक, उम्र 29 वर्ष महिला, कद 5 फुट 2 इंच. घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं. जिस किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो, कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 7456884944. थाना सेक्टर 24 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर. अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर. खोए हुए व्यक्ति का नाम है मनीषा, उम्र 13 वर्ष स्त्री, कद 4 फुट 1/2 इंच. घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं. जिस किसी को भी इनके बारे में सूचना प्राप्त हो, कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9457134589. थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर. अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना जारचा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर. खोए हुए व्यक्ति का नाम है सोनिया, पुत्री श्री मेहरुद्दीन, ग्राम खंगोड़ा, उम्र 22 वर्ष, महिला।

कद 5 फुट, जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें। 8595902550 एक और नंबर है 9131267518। नंबर हम दोबारा बता देते हैं 8595902550 9131267518। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें। थाना जारचा, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना इकोटेक 3 से, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। खोई हुई व्यक्ति का नाम है स्नेहलता, पुत्री राकेश कुमार, उम्र 21 वर्ष स्त्री, कद 6 फुट 2 इंच, घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो कृपया संपर्क करें थाना इफ्कोटेक 3, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर।

अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना बादलपुर, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। खोए हुए व्यक्ति का नाम है सुजीत कुमार, पुत्र नवल किशोर, निवासी चरनी बिहार, भारत धर्म कांटा, पंचकुला कॉलोनी, रेलवे लाइन। आखिरी बार इन्हें घर पर 31 जुलाई को देखा गया था। उम्र 50 वर्ष पुरुष, शरीर की बनावट सामान्य, कद 5 फुट 4 इंच, दिमागी रूप से कमजोर हैं। 31 जुलाई 26 को समय करीब 1:30 बजे दिन में अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए। गुलाबी रंग की शर्ट और हाफ पैंट, रंग नीला है जिसका, वो पहने हुए थे। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो, कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें। नंबर हैं 8171720990। अगला नंबर है 8595902547। नंबर हम दोबारा बता देते हैं 8171720990। एक और नंबर है 8595902547। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो, कृपया संपर्क करें थाना बादलपुर, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। ये थी अब तक की खोए पाए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं की।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

से हैं आप सब। आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस

0: 110023 within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly look up the website at www.cvc.gov.in. The Indian Waterways Authority of India, Ministry of Port, Shipping and Waterways invites applications from eligible employees of central or state governments, PSUs, statutory or autonomous bodies for one post of a private secretary on deputation basis, initially for 3 years. Applications in the prescribed format, routed through proper channel and accompanied by requisite certificates and APARs for the last 5 years, should reach the Assistant Secretary Admin and Establishment, IWAI, A13, Sector 1, Noida, 201301, by 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Further details are available on the website, that is at www.iwai.gov.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय TSU राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। कार्यकारी अभियंता सह प्रबंधक एक पद, प्रबंधक प्लेसमेंट एक पद तथा सहायक कुल सचिव 6 पद। विस्तृत भर्ती अधिसूचना ऑनलाइन आवेदन पोर्टल, पात्रता मानदंडों और संदर्भ की शर्तों की जानकारी के लिए देखिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.tsu.ac.in। मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। यांत्रिक मैकेनिकल 8 पद, इलेक्ट्रिकल 3 पद तथा रासायनिक केमिकल अनुभाग में 15 पद। पद नाम है यांत्रिक और वैद्युत विभागों के लिए सहायक अभियंता और रासायनिक केमिकल अनुभाग के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक अभिक्षमता संपन्न उम्मीदवार। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत विज्ञापन के लिए देख सकते हैं वेबसाइट www.mrpl.co.in। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अधिकारी विधि विभाग में वरिष्ठ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल अनुभाग में उपप्रबंधक इलेक्ट्रिकल तथा सिविल और उपप्रबंधक नीति एवं विनियामक कमिश्निंग रूफटॉप। इसके अतिरिक्त इन पदों को भी भरा जाना है महाप्रबंधक अनुबंध एवं खरीद, उपमहाप्रबंधक विधि, उपप्रबंधक EMD, उपप्रबंधक इंजीनियरिंग सिविल, उपप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा अधिकारी वित्त अधिकारी तथा इंजीनियर कॉर्पोरेट प्लानिंग। विस्तृत अधिसूचना के लिए देखिए वेबसाइट www.sci.co.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई आमंत्रित कर रहा है सहायक प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी के पद को अनुबंध के आधार पर भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन। रिक्ति 1 है और विस्तृत विज्ञापन, पात्रता मानदंड, नियम और शर्तों तथा अन्य जानकारियों के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.iitbhilai.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आमंत्रित करती है विमान अनुरक्षण अभियंता के पद को भरने के लिए आवेदन। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार देख सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट igrua.gov.in। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता आमंत्रित करता है

0: औषधीय रसायन विज्ञान विभाग में प्राध्यापक पद को भरने के लिए आवेदन, आवश्यक शैक्षिक एवं वांछनीय योग्यता, अनुभव और सामान्य निर्देशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखिए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट www.niperkolkata.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: शाम के 4:30 हुए हैं। वक्त है न्यूज मैगजीन परिक्रमा का, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आप तक पहुंचाएंगे हम, साथ ही अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे उनके क्षेत्र के खास समाचार। खेल गतिविधियां भी कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगी और उन खास हस्तियों को भी हमेशा की तरह आज भी याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। परिक्रमा के आज के अंक में मैं हूँ आपके साथ नईम अख्तर और साथ हैं सायरा मुजतबा। सायरा, क्या हाल है आपके?
5: बहुत बढ़िया हाल है। आप सुनाइए नईम। वेरी वेरी आदाब एंड नमस्कार टू यू एज वेल एंड टू आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड। और नईम, ऑफ कोर्स वी आर सिटिंग इन दिल्ली, सो वी आर सीइंग, यू नो, ब्रिक्स समिट इज हैपनिंग, सो एवरीवेयर देयर इज अ थ्रिल इन द एयर, इजंट इट?
4: हमारी आकाशवाणी भवन के एकदम पास से उस दिन कार्काइट भी निकला था, तो वो सब कुछ भी हमने देखा और बहुत अच्छा सजा हुआ है।
5: yes.
4: तो मतलब लगता है कि हाँ, हम राजधानी में रह रहे हैं तो कुछ खास है।
5: Absolutely, indeed, a big moment for our country and for our capital as well.
4: Bilkul.
5: And so of course we'll bring a lot for you, for our listeners, regarding the BRICS summit. And jo parikrama hai show hamara, jisme hum desh ki parikrama to karenge hi, we'll go to different parts of the country, see what interesting stories our correspondents have from there. But let's start with the headlines first.
4: Ji, aap hi shuruaat kijiye.
5: BRICS summit under India's presidency is underway in New Delhi. Focus on global governance, multilateralism, trade, security and supply chains. World leaders assemble for two-day summit.
4: Pradhanmantri Narendra Modi aaj sham Cheen ke rashtrapati Xi Jinping ke saath dvipakshiya vaarta karenge.
5: New Delhi declaration adopted on first day of the summit. Prime Minister Modi holds bilaterals with his Malaysian, Vietnamese and other world leaders. And Ethiopian counterparts also confers the Crown Prince of Abu Dhabi.
4: यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की।
5: ऑरेंज अलर्ट फॉर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल ओवर छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड विदर्भ टुडे।
4: और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया।
5: And Naeem, as we had mentioned that we'll bring more details regarding the BRICS summit for our listeners in our Dateline India.
4: Banta hai.
5: So yes, New Delhi is once again at the center of the diplomatic map of the world. The 18th BRICS summit is being held in the Indian capital today and tomorrow, bringing together leaders of major emerging and developing economies at a time when the global order itself is undergoing a major transformation.
4: Bharat ke is summit ki mezbani karne ki ek khas ahmiyat hai. Ye chauthi baar hai jab Bharat BRICS ke adhyaksh अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012 में नई दिल्ली में, 2016 में गोवा में और 2021 में नई दिल्ली से वर्चुअली ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी और लीडर्स समिट की मेजबानी की थी। अब 5 साल बाद भारत की राजधानी में एक बार फिर ब्रिक्स का झंडा लहरा रहा है।
5: द थीम ऑफ इंडियाज 2026 ब्रिक्स चेयरशिप इज Building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Well, those are merely 4 words, but behind them lies some of the biggest questions facing the world today.
4: बिल्कुल, आइए अब उस समय में वापस चलते हैं सायरा, जब ब्रिक्स का सफर शुरू हुआ था। असल में इसकी कहानी अर्थशास्त्र की दुनिया से शुरू होती है। 2011 में अर्थशास्त्री

0: जिम ओनील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की उभरती हुई आर्थिक क्षमता को बताने के लिए ब्रिक शब्द गढ़ा था। उस समय ब्रिक कोई राजनीतिक समूह नहीं था, ये सिर्फ एक आर्थिक अवधारणा थी।
1: That's right. That was in 2001. And Brazil, Russia, India and China began meeting at the foreign ministers level. And then in 2009, against the backdrop of the global financial crisis, the first BRIC leader summit was held in Russia. The message was significant. Emerging economies wanted a stronger voice in decisions making and shaping the international financial system.
0: अगले साल नेता ब्राजील के ब्रासिलिया शहर में मिले, फिर 2011 में ये समिट चीन के सानिया शहर में हुआ और इस बैठक से एक बड़ा बदलाव आया। दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हो गया, नाम में एक अक्षर और जुड़ गया, लेकिन समूह का भौगोलिक और राजनीतिक दायरा काफी बढ़ गया। ब्रिक से ये ब्रिक्स बन गया और ये सब कुछ हमें बहुत अच्छी तरह याद है सायरा।
1: That's right. And from there on, the summit journey continued across continents. A grouping that began with just four countries in 2006 has two decades later evolved into a much larger family of 21 BRICS member and partner countries. Its agenda too has expanded.
0: जो शुरुआत में मुख्य रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बातचीत के तौर पर शुरू हुआ था, वो अब व्यापार, वित्त, ऊर्जा, तकनीक, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवा, विकास, वैश्विक शासन, खाद्य सुरक्षा, आपदा से निपटने की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा करने वाले एक मंच के रूप में विकसित हो गया है।
1: Today, BRICS represents around half of the world's population, about 40% of global GDP, and more than a quarter of global trade. Well, that's quite a big transformation.
0: तो असल में BRICS क्या है? क्या ये एक आर्थिक गठबंधन है, एक राजनीतिक गुट, स्थापित पश्चिमी संस्थाओं का मुकाबला करने वाला संगठन, या फिर कुछ बिल्कुल अलग? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। ब्रिक्स नाटो जैसा कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, इसका कोई एक स्थायी मुख्यालय या कोई ऊपर की सरकार यानी कि सुपर नेशनल गवर्नमेंट नहीं है।
1: एग्जैक्टली नहीं। इट्स चेयरमैनशिप रोटेट्स एंड ईच चेयरिंग कंट्री सेट्स इट्स प्रायोरिटीज एंड होस्ट द लीडर्स समिट। Its strength lies somewhere else, that is in bringing countries with different political systems, economic structures and national interests around one table to identify common interests and cooperate where their priorities converge.
0: और इसी वजह से भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि भारत इस बातचीत में सिर्फ एक मूक दर्शक या पैसिव भागीदार के तौर पर शामिल नहीं हो रहा है, वो इसकी मेजबानी कर रहा है, वो इसकी अध्यक्षता कर रहा है और वो अपनी सोच या विजन भी सामने रख रहा है। भारत की 2026 की थीम लचीलापन, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी उसी सोच को दिखाती है और नई दिल्ली में हो रही बातचीत में इन चारों विचारों पर पहले से ही अमल किया जा रहा है।
1: Well, at the BRICS Business Forum Leaders Session at Bharat Mandapam, Prime Minister Narendra Modi called for secure sea lanes, open supply routes and the safety of seafarers to sustain global trade.
0: 2014 से भारत ने लगभग 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और ब्रिक्स में भी भारत व्यापार की बाधाओं को कम करने और व्यवसायों के लिए ज्यादा अवसर पैदा करने पर केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत कर रहा है।
1: Well, this brings us to another major part of India's BRICS agenda, that is innovation. The BRICS Incubator Networks, BRICS MSME Portal and BRICS Startup Innovation Fund, they're designed to connect startups and small and medium enterprises with markets, finance, investment and talent.
0: कितनी अच्छी बात है और इसके कई मौके के बारे में सोचा जा सकता है। भारत के एक छोटे से स्टार्टअप में आया कोई आइडिया हजारों किलोमीटर दूर ग्राहकों तक पहुंच सकता है। एक युवा एंटरप्रेन्योर किसी दूसरे ब्रिक्स देश के इन्वेस्टर से जुड़ सकता है।
1: एंड इवन अ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन वन इमर्जिंग इकोनॉमी कैन हेल्प सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अनदर। एंड दिस इज द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल कोऑपरेशन दैट इंडिया वांट्स ब्रिक्स टू एनकरेज।
0: और आर्थिक आंकड़े एक और दिलचस्प कहानी बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जहां पिछले दो दशक में ग्लोबल जीडीपी लगभग 2.5 गुना बढ़ी है, वहीं ब्रिक्स देशों की कुल जीडीपी लगभग 4.5 गुना बढ़ी है।
1: Well, in other words, the economic strength of BRICS has grown at nearly twice the pace of the world economy. That's more than a statistic, Naeem. It's actually a signal. Hmm. A signal that the economic center of gravity is changing.
0: जी बिल्कुल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स बाजारों के बढ़ते आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाला। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने ब्रिक्स सदस्यों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के अधिक से अधिक उपयोग का आह्वान किया।
1: South African President Cyril Ramaphosa stressed that the

0: Global South must lead in manufacturing, technology, and value creation while raising concerns over unilateral sanctions. Brazilian Foreign Affairs Minister Mauro Vieira described BRICS as a platform connecting some of the world's most dynamic economies.
1: और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। ज्यादा संतुलित व्यापार, सेवाओं में अधिक व्यापार और किसानों, महिला उद्यमियों, युवा व्यवसायों और एमएसएमई के लिए अवसर।
0: Chinese journalist Ren Yan has praised India for the arrangements of the BRICS summit, saying that comprehensive preparations have been made for the global event. He said the summit has attracted the attention of not only the member countries, but also the wider international community. Talking exclusively to Akashvani, Mr. Yan said that India has built a bridge among the member countries and created a platform for greater cooperation among the Global South nations.
2: This Chinese President Xi Jinping's visit to India after 7 long years. As we all know, China and India are good neighbors and also has greater civilizations. I think the BRICS summit has provided a good platform for both leaders of China and India to meet together and discuss many issues.
1: रशियन ब्लॉगर और थिंक ब्रिक्स की को फाउंडर अनास्तासिया गोलियाकोवा ने भी ब्रिक्स समिट के आयोजन में भारत की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के बीच आपसी बातचीत का स्तर हर साल बढ़ रहा है।
3: We see we have friendly nations around us like India, like People's Republic of China, other BRICS countries. So together we are much more stronger.
0: The scale of the business gathering itself is remarkable. More than 2,000 business leaders and delegates from member and partner countries are participating in what has been described as the largest BRICS business forum ever held.
1: और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदानोम घेब्रियसिस की मौजूदगी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करती है।
0: The participation of the African Union is significant as well, with Burundi's President Evariste Ndayishimiye representing the bloc at the summit.
1: Summit के पहले बंद सत्र का फोकस समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर है। कार्यक्रम में नेताओं का भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का दौरा, उसके बाद सामूहिक वृक्षारोपण समारोह और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित एक शानदार डिनर भी शामिल है।
0: Antony, this actually makes me recall the famous saying by Mahatma Gandhi that the future depends on what you do today. And of course, that thought befits the BRICS conversation today perfectly.
1: और आपने अगर महात्मा गांधी की बात की तो मुझे भी रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही सुंदर पंक्ति याद आ रही है। उन्होंने लिखा, जहां मन निडर हो और सिर गर्व से ऊंचा हो।
0: That's right, the famous poem where the mind is without fear and the head is held high.
1: बिल्कुल। आज जब अलग अलग महाद्वीपों के नेता नई दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं तो भारत उस भावना को आज के दौर के हिसाब से एक नया अर्थ दे रहा है। एक आत्मविश्वास से भरा भारत, एक नई सोच वाला भारत, एक ऐसा भारत जो बाजारों, विचारों और लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा भारत जिसे यकीन है कि उसकी अपनी तरक्की की कहानी दुनिया की तरक्की की कहानी में योगदान दे सकती है।
0: और इसी फेमस टैगोर पोएम की जो आखिरी पंक्ति थी ना, वो भी एकदम बिफिट हो रही है, दैट इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम लेट माई कंट्री अवेक।
1: आपने तो कंप्लीट कर दी पोएम।
0: एंड वेल, परहैप्स द बिगेस्ट क्वेश्चन टुडे इज नॉट वेदर द वर्ल्ड इज चेंजिंग, बिकॉज अनडाउटेडली इट इज ऑफ कोर्स चेंजिंग। द बिगर क्वेश्चन इज हु विल हेल्प शेप दैट चेंज। Here in New Delhi, India is making its answer heard through cooperation, through innovation, through resilience, through sustainability, and through a distinctly Indian confidence that when nations work together, possibilities can become opportunities. This is BRICS 2026, and this is India at the center of the conversation about the future.
1: और सारा वक्त है अब अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। आप आगाज करें।
0: यस नईम, तो हम लोग जो है देश की परिक्रमा पे निकल लेते हैं और हम लोग ने ब्रिक्स के बारे में तो बहुत चर्चा की, बट बहुत से ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे देश में जो हमारे लिसनर्स दे वांट टू हियर व्हाट्स हैपनिंग। सो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी फ्रॉम पंजाब एंड ऑन द ओकेजन ऑफ सारेगाड़ी टुडे। Tributes were paid to the martyrs of the Battle of Sargadhi at its memorial in Firozpur.

0: विदर्भ की खनिज संपदा, विशेष रूप से गढ़चिरौली के लौह आयस भंडारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश और करीब 50 MTPA इस्पात उत्पादन क्षमता विकसित की जा रही है। फडणवीस ने कहा कि गढ़चिरौली के साथ चंद्रपुर, भंडारा, नागपुर, गोंदिया और यवतमाल जिलों में भी नई औद्योगिक परिसंस्था विकसित हो सकती है। ग्रीन स्टील, स्वच्छ तकनीक और बेहतर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी से रोजगार के तथा आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
1: एंड वेल, फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वी नाउ गो to the northeast. Well, a 3-day national conference on natural farming was held at the College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences from 9th to 11th September. We have more from our Shillong correspondent.
2: It brought together farmers, scientists, policy makers, natural farming practitioners and entrepreneurs from across the country. From soil health and climate pressures to rising input costs and the need for better farm incomes, the conference deliberated on various topics. Over the 3 days, technical sessions and farmer interactions looked at sustainable resource management, biodiversity, eco-friendly plant protection.

0: antigenetic resources on display, where rows of unique germplasm samples. More than 500 participants attended the national conference to discuss insights into bringing together traditional farming wisdom, research and modern markets. For Parikrama, Anumita, Akashvani, Shillong.
1: और क्या अब हम खेल के मैदान की तरफ चलें सायरा?
2: Absolutely.
1: तो जानते हैं वहाँ की हलचल के बारे में, और उसमें ही पहले हॉकी के बारे में अपने श्रोताओं तक खबर पहुँचाते हैं। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की तरफ से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई, जबकि मधु और रघुवीर कौर ने 1-1 गोल किया। और यूएस ओपन टेनिस के बारे में भी मेरे पास एक खबर है। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रैबाइकिना का सामना करेंगी। अब हम पहुंच गए अपने लास्ट सेगमेंट में, जहां हम याद करेंगे अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को, और साथ ही बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
3: आज हम बात करेंगे तीन बहादुर महिलाओं की, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ये वीरांगनाएं थीं तमिलनाडु की वेलु नाचियार और कोयली, तथा उत्तर प्रदेश की सुभद्रा कुमारी चौहान।
4: वीर मंगई यानी बहादुर महिला वेलु नाचियार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जंग का बिगुल फूंकने वाली पहली भारतीय महारानी थीं। वे 1780 से 1790 तक तमिलनाडु में शिवगंगा की महारानी रहीं।
3: रामनाथपुरम की राजकुमारी वेलु नाचियार युद्ध शैली के अनुकूल हथियारों के उपयोग सहित लड़ाई की अनेक विधियों तथा वल्लरी, सिलंबम जैसे मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तीरंदाजी में प्रशिक्षित थी। वे कई भाषाएं जानती थीं और फ्रेंच, अंग्रेजी तथा उर्दू जैसी भाषाओं में पारंगत थीं। जब युद्ध में उनके पति मुत्तु वडुगनाथ पेरियावडिया तेवर की अंग्रेज सैनिकों ने हत्या कर दी, तो वेलु नाचियार युद्ध के मैदान में उतर गईं।
4: इस अवधि के दौरान वेलु नाचियार ने सेना का गठन किया और 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अभियान शुरू करने के उद्देश्य से हैदर अली के साथ गठबंधन के प्रयास किए। जब वेलु को मालूम हुआ कि अंग्रेज अपने हथियार कहाँ रखते हैं, तो उन्होंने उस जगह आत्मघाती हमले की योजना बनाई और सारा भंडार जला दिया। उन्होंने अपने पति के राज्य को पुनर्गठित किया और 10 से अधिक वर्ष तक वहां शासन किया। 25 दिसंबर 1796 को वेलु नाचियार का निधन हो गया।
3: महारानी वेलु नाचियार की सेनापति कोयली को भारतीय इतिहास की पहली महिला शहीद माना जाता है। कोयली का जन्म 18वीं सदी में शिवगंगा जिले में हुआ था। वे वेलु नाचियार की समर्पित कमांडर थीं और उन्होंने कई बार वेलु की जान बचाई। कोयली के निष्ठा और बहादुरी देखकर उसे सेना की महिला इकाई का कमांडर इन चीफ बना दिया गया।
4: 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के किले पर हमला करते समय कोयली ने अपने शरीर पर घी मला और स्वयं को आग लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शस्त्र भंडार में छलांग लगा दी।
2: We are also remembering some other personalities. A very prominent writer, Bibhuti Bhushan Bandyopadhyay's birth anniversary is today. Well, his best known works are the autobiographical novel Pathar Panchali, jis pe of course we all know Satyajit Ray ne banayi, Aparajito, Chandar Pahad and Aranyak. And Martin Smith actually in his guide to modern world literature describes Bibhuti Bhushan Bandyopadhyay as perhaps the best of all modern Indian novelists, going on to write that probably nothing in 20th century Indian literature in prose or poetry comes to the level of Pathar Panchali. And Bandyopadhyay was posthumously awarded the Rabindra Puraskar in 1951, a literary award in West Bengal, for his novel Ichhamati.
1: हिंदी के विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार रांगे राघव की आज पुण्यतिथि है। इनका मूल नाम TNB आचार्य था। जन्म इनका आगरा में हुआ, लेकिन उन्हें हिंदी के साथ साथ तमिल और कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। और इसके अलावा ब्रज और संस्कृत पर भी उनका बहुत बड़ा अधिकार था। हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और महात्मा गांधी पुरस्कार कुछ खास पुरस्कार हैं जो उन्हें उनके जीवन में उनके कामों के लिए दिए गए।

0: आज ही पुण्यतिथि है जय किशन दया भाई पंकल की, जिन्होंने शंकर सिंह रघुवंशी के साथ मिलकर संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन के नाम से बनाई और इसी नाम से मशहूर हुए। इनकी मुलाकात के बारे में अगर हम बात करें सायरा, तो ओपेरा हाउस के थिएटर के पास इनकी मुलाकात हुई, और जब इनकी मुलाकात हुई तो शंकर को पता चला कि जय किशन हारमोनियम बजाते हैं। दोनों ही ने ही पृथ्वी थिएटर्स के परचम तले साथ साथ काम करना शुरू किया, और वहीं काम करते करते उनकी मुलाकात राज कपूर से हुई, जहां वो उनके करीब आ गए और शंकर जयकिशन को बरसात का संगीत राज कपूर ने सौंप कर एक पहला ब्रेक दिया।
1: That's right. SJ की जोड़ी, of course, we all know that widely considered to be the greatest music composers of the Hindi film industry. From 1949 until Jay Kishan's death in 1971, they composed musical scores for 136 films, introducing a new level of orchestral richness in film music. SJ collaborated with legendary singers such as Mukesh, Mohammad Rafi, Manna Day, Kishore Kumar, Talat Mehmood, Lata Mangeshkar, Suman Kalyanpuri, Asha Bhosle, and even Sharda. They worked extensively with the lyricist Shailendra and Hasrat Jaipuri, with whom they created some of the most memorable songs in their career.
0: एक के बाद एक उन्होंने ऐसे बढ़कर के फिल्मी गीत दिए जो आज भी हमारे गानों में रस घोलते हैं। तो क्यों ना कुछ गीतों की एक झलक ले ली जाए।

0: कल का तो वाकई नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन आज का पता है सायरा, कि अभी आज हमारी घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि सायरा और नईम इजाजत ले लीजिए अपने श्रोताओं से। तो चलिए परिक्रमा कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। अनुमति दीजिए नईम अख्तर और सायरा मुज्तबा को।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया

0: दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना उनकी साझा जिम्मेदारी है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है कि बदलती दुनिया को पुराने संस्थानों द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण में सुधार आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि नेताओं ने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों और उन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों के विकास में ग्लोबल साउथ के देशों की समान भागीदारी होनी चाहिए। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा ताकि हर साल अध्यक्षता बदलने के बावजूद समूह की संस्थागत गति बनी रहे।
1: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म अब पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा तथा क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा तथा सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति सी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। इससे पहले श्री पेजेश्कियन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैनिकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं जो भूमि और आजीविका का दोनों के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहूदी नववर्ष रोश हशाना के अवसर पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, इसराइल के लोगों और दुनिया में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि नया वर्ष सभी के लिए शांति, बेहतर स्वास्थ्य और सतत प्रगति लेकर आए। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 5:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम लोक रंजनी लेकर के। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि हमारे श्रोताओं को लोकगीत रागनी उपदेश सुनने के साथ साथ उनको जानकारी भी मिले। तो आज के लोक रंजनी कार्यक्रम में भी हम लोक संगीत के साथ जानकारियां लेकर के आए हैं। और जैसा कि हमारे सभी श्रोता जानते हैं, आज सितंबर माह का दूसरा शनिवार है और आज के दिन मनाया जाता है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस।
1: बिल्कुल शशि भाई, हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है।
0: और ये दिन एक वार्षिक अभियान है जिसका उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के महत्व को बढ़ावा देना और संकट में अधिक लोगों की जान बचाने के लिए इसकी पहुंच को बढ़ाना। जब कोई व्यक्ति मामूली या गंभीर चोट या फिर बीमारी से पीड़ित होता है, तो रोगी को दी जाने वाली प्राथमिक और तत्काल सहायता को फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार कहा जाता है।
1: बिल्कुल, बच्चों से लेकर बड़ों को प्राथमिक उपचार के प्रति जागरूक होना चाहिए। समय के साथ सेहत के लिए जरूरी इन चीज़ों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानने की जरूरत है ताकि प्राथमिक उपचार के माध्यम से दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सके। इसलिए प्राथमिक उपचार के बारे में जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, ये तो आपने जाना विश्व प्राथमिक उपचार दिवस के बारे में। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं उपदेश। कलाकार हैं सत्येंद्र यादव।
2: हेरा मंदिर मिल जा, हेरा भगत मिले और मैं

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे ये उपदेश, कलाकार थे सत्येंद्र यादव।
1: और अब नीलम बहन अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक लोकगीत। कलाकार हैं इंद्रवीर तेवतिया।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे लोकगीत। कलाकार थे इंद्रवीर तेवतिया।
1: नीलम बहन, इस लोकगीत में इंद्रवीर तेवतिया जी पानी के महत्व के बारे में बता रहे थे कि पानी का जो महत्व है हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, और वैसे भी हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा है पानी, और पानी के साथ साथ हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषण की भी आवश्यकता होती है। तो जो मोटे अनाज हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, हमारे शरीर को पोषण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल शशि भाई, मोटे अनाज गुड़ों की खान है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनमें पाया जाने वाला रेशा, जो अधिक मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशे के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करते हैं।
1: और मोटा अनाज खाने के बाद प्यास भी खूब लगती है, जो पाचन तंत्र के लिए बहुत स्वास्थ्यकर है। तो श्रोताओं, आप भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन में मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न को ज़रूर शामिल करें। और आइए इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं एक श्री अन्न गीत। कलाकार हैं ब्रिजपाल चरोरा।
2: अरे मोटे अन्न के अरे भोज बनाओ,

0: श्रोताओं, आप ब्रिजपाल चरौरा से सुन रहे थे ये श्री अन्न गीत।
1: और इसी श्री अन्न गीत के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए, आप सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: खेल खिलाड़ी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनजीत कौर और प्रतीक आनंद का
1: नमस्कार।
0: और आज के अंक में अगर हम बात करें तो आज सबसे पहले अगर हम अपनी जो शुरुआत करते हैं महिला T20 एशिया कप की रिपोर्ट के साथ, और साथ ही साथ हम बात करेंगे भारत बनाम अफगानिस्तान पहले

0: 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच के ऊपर चर्चा रहेगी और वहीं एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज एपिसोड नंबर 4 पर भी हम चर्चा करेंगे। तीरंदाजी की बात करें तो मैक्सिको में आज सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले खेले जा रहे हैं। यूएस ओपन पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी और साथ ही साथ जूनियर एशिया कप हॉकी के अंदर महिला एवं पुरुष पर हम खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रत्येक महिला T20 एशिया कप पर।
1: जी हाँ, महिला एशिया कप 2026 में फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका की महिला टीमें 11 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने थी। मुकाबला था सेमीफाइनल का और दाव पर था खिताबी मुकाबले में जगह बनाने का मौका। पाकिस्तान ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाजों ने शुरुआत से ही उस पर दबाव बनाए रखा। पाकिस्तान की ओर से कप्तान फातिमा सना ने मोर्चा संभाला और नाबाद 47 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनकी पारी के सहारे पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 130 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से चमारी अटापट्टू और चामुंडी प्रबोधा ने 2-2 विकेट हासिल किए। श्रीलंका के सामने 131 रन का लक्ष्य था, लेकिन उसकी शुरुआत भी आसान नहीं रही। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने गेंद से भी शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका के चारों बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने दबाव में धैर्य नहीं खोया। हर्षिता समर विक्रमा और कविशा दिलहारी ने पारी को संभाला और 5वें विकेट के लिए 67 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। हर्षिता ने 36 रन बनाए, जबकि कविशा ने 33 रन की उपयोगी पारी खेली। इसके बाद नीलाक्षी डे सिल्वा और कौशिनी नुथियांगना ने तेजी से रन जुटाते हुए श्रीलंका को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। आखिरकार श्रीलंका ने 18 ओवर में 4 गेंद में 6 विकेट खोकर 134 रन बना लिए और पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर महिला एशिया कप के 2026 के फाइनल में जगह बना ली। इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए फातिमा सना ने ऑलराउंडर प्रदर्शन खास रहा। उन्होंने पहले बल्ले से नाबाद 47 रन बनाए और फिर गेंदबाजी से 4 विकेट लेकर श्रीलंका को लगातार दबाव में रखा, लेकिन उनकी यह शानदार कोशिश पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचाने में पर्याप्त नहीं रही। दूसरी ओर श्रीलंका ने मुश्किल स्थिति में वापसी करते हुए दबाव में जीत हासिल की। इस जीत से श्रीलंका लगातार तीसरी बार महिला एशिया कप के फाइनल में पहुंचा और अब उसका सामना खिताब बचाने की चुनौती होगी, जो कि फाइनल में भारत के खिलाफ खेलेगा। भारत ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर पहले ही फाइनल में जगह बना ली थी। अब 13 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे से भारत और श्रीलंका के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। भारत लगातार 10वीं बार महिला एशिया कप के फाइनल में पहुंचा है और उसकी नज़र रिकॉर्ड्स 8वें एशिया कप खिताब पर होगी। वहीं श्रीलंका लगातार तीसरे फाइनल में पहुंच चुका है और मौजूदा चैंपियन होने के नाते अपना खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगा। खास बात यह भी है कि पिछले फाइनल में श्रीलंका ने भारत को हराकर खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में भारत के पास उस हार का जवाब देने और ट्रॉफी वापस हासिल करने का मौका होगा, जबकि श्रीलंका लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने के लक्ष्य के साथ उतरेगी।
0: बिल्कुल, और क्रिकेट को ही जारी रखते हैं और बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला कल अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें जापान के आईचीन नागोया में होने वाले एशियन गेम 2026 के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी और सीरीज का दूसरा और तीसरा T20 मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला जाएगा। भारत इस छोटे फॉर्मेट में अफगानिस्तान के खिलाफ मजबूत रिकॉर्ड के साथ पहले मैच में उतरेगा। वहीं दोनों टीमें अब तक अगर देखें तो 9 बार आमने सामने आ चुकी है, जिसमें भारत ने 8 मैच जीते हैं जबकि एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ है और बेहद ही शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया है और भारतीय टीम सीरीज की सकारात्मक शुरुआत करना चाहेगी। और टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम का प्रदर्शन शानदार रहा था और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम की निगाहें सीरीज का आगाज जीत के साथ करने पर होगी। और इसी के साथ अब हम क्रिकेट से आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करेंगे एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज एपिसोड नंबर 4 की, और जिसमें विशेष रूप से हम बात करेंगे बैडमिंटन, स्क्वैश और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की।
1: कल्पना कीजिए, एक तरफ रैकेट की वह तेज आवाज जो पलक झपकते ही शटल को कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देती है, दूसरी तरफ स्क्वॉश का बंद कोर्ट जहां दीवार

ये भी खेल का हिस्सा बन जाती हैं। और फिर एक ऐसी दीवार जिस पर चढ़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि शरीर, दिमाग और सेकंड के 100वें हिस्से तक की गणना चाहिए। 19 सितंबर से जापान में शुरू हो रहे आईची नगोया एशियन गेम्स 2026 में भारत अपने अब तक के सबसे बड़े और विविध खेल अभियानों में से एक के साथ उतर रहा है। हांगजू एशियन गेम्स में 107 पदकों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने वाला भारत इस बार उससे भी आगे निकलने की कोशिश करेगा। आज बात होगी बैडमिंटन की रफ्तार की, स्क्वॉश की रणनीति की और स्पोर्ट क्लाइंबिंग के रोमांच की। तीन खेल, तीन अलग अंदाज, लेकिन लक्ष्य एक, तिरंगे को पोडियम तक पहुंचाना। तो आइए एशियन गेम्स की सुविशेष चेयर फॉर इंडिया में आज बात करते हैं इन तीन खेलों की। शुरू करते हैं उस खेल से जहां भारत की पदक की उम्मीदें सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बैडमिंटन की। भारत और बैडमिंटन का रिश्ता अब सिर्फ एक लोकप्रिय खेल तक सीमित नहीं है। एशियन गेम्स में बैडमिंटन पहली बार 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स में शामिल हुआ था। शुरुआती दौर में पदकों के लिए भारत को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन पिछले 1.5-2 दशकों में भारतीय बैडमिंटन ने जिस तेजी से विकास किया है उसने इस खेल को भारत के प्रमुख मेडल स्पोर्ट्स में शामिल कर दिया है। साइना नेहवाल का 2014 में महिला एकल का स्वर्ण, पीवी सिंधु का 2018 में रजत और 2023 में सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का ऐतिहासिक स्वर्ण। यह सफर बताता है कि भारतीय बैडमिंटन अब केवल एक खिलाड़ी तक निर्भर नहीं रहा। एशियाई खेलों में भारत ने इस खेल में अब तक 13 पदक जीते हैं और हांगजू में भारतीय बैडमिंटन ने अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया था, जहां भारत ने 3 पदक जीते थे। पुरुष टीम ने रजत पदक जीता, HS प्रणॉय ने पुरुष एकल में कांस्य हासिल किया और फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण जब सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पुरुष युगल का स्वर्ण जीतकर एशियन गेम्स में भारत के लिए बैडमिंटन का पहला पुरुष युगल स्वर्ण पदक हासिल किया। यानी आईची नगोया में भारतीय बैडमिंटन टीम सिर्फ पदक जीतने नहीं जा रही, वह एक स्वर्ण पदक की विरासत को बचाने भी जा रही है। इस बार भारत का बैडमिंटन दल 20 खिलाड़ियों का है। पुरुष में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत, थरुण मानेपली, सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, हरिहरन आमसा करुणन, MR अर्जुन और ध्रुव कपिला शामिल है। वहीं महिला टीम में पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग, तन्वी शर्मा, ईशा रानी बरुआ, त्रिशा जौली, गायत्री गोपीचंद, कविप्रिय सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनिषा क्रस्टो शामिल हैं। लेकिन एशियन गेम्स की तैयारी केवल नामों से नहीं होती, फॉर्म भी मायने रखता है। और अगर आईची नगोया से पहले किसी भारतीय जोड़ी ने सबसे बड़ा संदेश दिया है तो वह सात्विक चिराग की जोड़ी है। 6 सितंबर को शेंजेन में दोनों ने चाइना मास्टर्स सुपर 750 का खिताब जीता। यह चाइना मास्टर्स में उनका पहला खिताब और इस सीजन का दूसरा सुपर 750 खिताब है। अब यही जोड़ी हांगजू के स्वर्ण पदक के बाद आईची नगोया में उस खिताब का बचाव करने उतरेगी। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन पर नजरें होंगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में उन्होंने ऑस्ट्रिया के कॉलिंस फिलिमोन को हराकर शुरुआत की, लेकिन दूसरे दौर में हार गए। फिर भी बड़े मुकाबलों का उनका अनुभव भारत के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उनके साथ एक नया नाम खास तौर पर ध्यान खींच रहा है, आयुष शेट्टी। 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में दिल्ली के घरेलू कोर्ट पर आयुष ने विश्व नंबर 1 और गत विजेता शी यूकी को पहले ही दौर में हराकर बड़ा उलटफेर किया। यानी पुरुष एकल में भारत के पास सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि एक ऐसी युवा ताकत भी है जो बड़े से बड़े नाम को चुनौती दे सकती है। महिलाओं में पीवी सिंधु का अनुभव किसी परिचय का मोहताज नहीं। वहीं उन्नति हुड्डा और युवा खिलाड़ियों की मौजूदगी भारतीय महिला बैडमिंटन में अगली पीढ़ी की तस्वीर दिखाती है। लेकिन एक नाम जिस पर सबकी खास नजर रहेगी, तन्वी शर्मा। अगस्त में ताइपे ओपन सुपर 300 में तन्वी ने खिताब अपने नाम किया। तन्वी 17 वर्ष 223 दिन की उम्र में ताइपे ओपन की सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी। यह उपलब्धि उन्हें एशियन गेम्स की टीम में एक उभरते हुए महत्वपूर्ण नाम के रूप में सामने लाती है। इसलिए आईची नगोया में बैडमिंटन से उम्मीद सिर्फ एक पदक की नहीं होगी। भारत के पास एकल, युगल और टीम इवेंट्स में कई संभावित मेडल रूट्स हैं और यही भारतीय बैडमिंटन को इस एशियन गेम्स में सबसे महत्वपूर्ण मेडल स्पोर्ट्स में से एक बनाता है। अगर बैडमिंटन में शटल हवा को चीरती है तो अगले खेल में गेंद 4 दीवारी के बीच अपना रास्ता तलाशती है। अब रुख करते हैं स्क्वॉश की तरफ। अगर बैडमिंटन रफ्तार और दूरी का खेल है तो स्क्वॉश प्रतिक्रिया और रणनीति का खेल। एक छोटी सी गेंद, 4 दीवारें, बेहद कम समय और सामने ऐसा प्रतिद्वंदी जो आपके अगले शॉट का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है। यानी यहाँ ताकत के साथ साथ दिमाग से भी खेला जाता है और भारत के लिए यह खेल अब कोई नई कहानी नहीं रहा। हांगजू में भारत ने स्क्वॉश में 5 पदक जीते थे जिनमें 2 स्वर्ण शामिल थे। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने मिश्रित युगल में स्वर्ण जीता, जबकि
जबकि भारतीय पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। सौरभ घोषल ने पुरुष एकल में रजत पदक जीता और महिला टीम तथा मिश्रित युगल में भारत ने कांस्य पदक भी हासिल किया। आईची नगोया में भारत 8 खिलाड़ियों के दल के साथ उतर रहा है। पुरुषों में अभय सिंह, वीर चोटरानी, वेलवंत सेंथिल कुमार और सूरज कुमार चांद शामिल हैं। वहीं महिलाओं में अनाहत सिंह, जोशना चिन्नप्पा,

0: तन्वी खन्ना और शमीना रियाज मौजूद हैं। इन खिलाड़ियों की भूमिकाएं एकल युगल और टीम इवेंट्स में अलग अलग हैं, इसलिए भारतीय दल की ताकत सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन में नहीं बल्कि टीम इवेंट्स में भी दिखाई देगी, और यही भारतीय टीम की सबसे दिलचस्प विशेषता है, अनुभव और युवा जोश का मेल। जोशना चिन्नप्पा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो 2006 से लगातार एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करती आ रही है, और आईची नगोया में वह अपनी 7वीं एशियन गेम्स प्रतियोगिता में शिरकत करेंगी। उनके नाम एशियन गेम्स में 5 पदक भी हैं, जिसमें 2 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ है अनाहत सिंह। युवा उम्र में अनाहत ने भारतीय स्क्वॉश को नई पहचान दी है। जुलाई में कनाडा में हुए वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप्स में अनाहत ने फाइनल में इजिप्ट की रुकैया सलेम को हराकर गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता। वह इस प्रतियोगिता में विश्व जूनियर चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय बनी। सीनियर सर्किट में भी उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है। अगस्त में लंदन स्क्वॉश क्लासिक में उन्होंने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया, जहां उन्हें विश्व नंबर 5 शिव संगरी सुब्रमण्यम से हार मिली। यानी जूनियर लेवल पर शीर्ष पर पहुंचने के बाद अब अनाहत सीनियर लेवल की बड़ी चुनौतियों के सामने खुद को लगातार परख रही हैं। आईची नगोया में अनाहत सिर्फ एक युवा खिलाड़ी के रूप में नहीं जाएंगी, वह विश्व जूनियर चैंपियन के आत्मविश्वास के साथ जाएंगी। महिला वर्ग में शमीना रियाज पर भी नजर रहेंगी। जून में उन्होंने पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर करते हुए साउथ अफ्रीका की शीर्ष वरीयता प्राप्त हेली वार्ड को 4 गेम में हराया। जुलाई में तमिलनाडु में स्टेट चैंपियनशिप्स का खिताब जीता और अगस्त में फिशू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप्स में भारतीय टीम के साथ रजत पदक हासिल किया। यानी एशियन गेम्स से पहले शमीना के पास भी अच्छे मुकाबलों और महत्वपूर्ण जीतों का अनुभव है। एशियन गेम्स की तैयारियों को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: प्लेयर फ्रॉम स्क्वैश।
2: हाय, आई एम शमीना। आई एम फ्रॉम द स्क्वैश टीम पार्टिसिपेटिंग इन द एशियन गेम्स 2026। So it's really a privilege to play, represent India the Asian Games, and with my team, Anna, Joshna, Tanvi, I think we have a really solid team and hoping for a medal for our country.
1: Anna is a world junior champion and you have a chance to get Olympic LA ticket.
2: Yeah, I mean, Anand is like, you know, one of the top players in the world squash. She's top 20 in the world. I think it's really nice to have her as a team partner, and we look forward in aiming for a medal with her.
1: How was the preparation regarding this Asian game?
2: Yeah, I mean, the preparation is really good. We just, as a team, working together. So hopefully we win a medal.
0: अब बात करते हैं पुरुष वर्ग की। पुरुष वर्ग में भी एशियन गेम्स से ठीक पहले भारत को शानदार प्रोत्साहन मिला है। वेलवन सेंथिल कुमार ने 29 अगस्त को बुदापेस्ट ओपन का खिताब जीता। उन्होंने सेमीफाइनल में अपने ही साथी वीर चोटरानी को 5 गेम के रोमांचक मुकाबले में हराया और फाइनल में हंगरी के बलाज फरकास को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। चोटरानी और सेंथिल कुमार के बीच खेला गया सेमीफाइनल ये दिखाता है कि आईची नगोया से कुछ ही सप्ताह पहले भारतीय खिलाड़ियों के बीच ही उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। यह स्क्वॉश की डेप्थ को भी दिखाता है। वीर और सेंथिल कुमार के साथ साथ सूरज कुमार चांद भी शानदार लय में है। अगस्त में मुंबई में हुए फिशू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वॉश चैंपियनशिप में सूरज ने पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने हंगरी के बेनेडिक्ट तकास को 3-2 से हराया। यह भारत के लिए इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का पहला स्वर्ण पदक था। आगे आने वाली प्रतियोगिताओं की तैयारियों पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा।
3: ये बहुत ही अच्छा चांस है, अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हैं इंडिविजुअल्स में एशियन गेम्स में तो आपको एक डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलती है LA 28 में। तो आई थिंक सारे प्लेयर्स, ना कि इंडिया के ही बाकी कंट्रीज के प्लेयर्स, इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हमारे लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
0: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिशू चैंपियनशिप में सूरज सिर्फ व्यक्तिगत चैंपियन नहीं बने बल्कि भारत की टीम के साथ रजत पदक भी जीता, जिसमें सूरज और शमीना दोनों शामिल थे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि 2028 में लॉस एंजलिस में होने जा रहे ओलंपिक्स खेलों के लिए स्क्वॉश को पहली बार खेल के रूप में चुना गया है और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। एशियन गेम्स से ठीक पहले भारत के पास गत विजेता होने का आत्मविश्वास, वेलवन सेंथिल कुमार और अनाहत सिंह के हालिया अंतर्राष्ट्रीय खिताब, सूरज का फिशू गोल्ड, शमीना के महत्वपूर्ण मुकाबलों का अनुभव, अभय सिंह और तन्वी खन्ना जैसे खिलाड़ी और जोशना चिन्नप्पा का वर्षों का अनुभव है और शायद यही भारतीय स्क्वॉश की सबसे बड़ी उम्मीद है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे कम परिचित खेल पर, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। एक ऐसा खेल जिसमें मैदान जमीन पर नहीं दीवार पर होता है। यह सिर्फ दीवार पर चढ़ने का खेल नहीं, यह शरीर और दिमाग के बीच दौड़ती हुई एक रेस है। यह आमतौर पर एक कृत्रिम दीवार पर खेला जाता है जिस पर अलग अलग आकार के पकड़ने वाले हिस्से लगे होते हैं। खिलाड़ी उन्हीं पकड़ने वाले हिस्सों को हाथों और पैरों से इस्तेमाल करते हुए ऊपर बढ़ता है। लेकिन यहाँ सिर्फ ऊपर पहुँच जाना ही काफी नहीं होता। किस रूट से जाना है, कहाँ हाथ रखना है, कहाँ पैर रखना है, किस

0: समय शरीर का वजन बदलना है और कितनी तेजी से ऊपर जाना है, इन सभी फैसलों का खेल है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इसके तीन प्रमुख विधाएं हैं। सबसे पहले आती है स्पीड क्लाइंबिंग, जिसमें लक्ष्य होता है सबसे तेज माउंट पर पहुंचना। फिर आती है बोल्डरिंग, जिसमें दीवार बहुत ऊंची नहीं होती लेकिन रास्ते में ऐसे कठिन पड़ाव होते हैं जिन्हें समझना और सही तरीके से पूरा करना होता है। और आखिरी में आती है लीड क्लाइंबिंग, जिसमें खिलाड़ी काफी ऊंची दीवार पर निर्धारित रास्ते पर जितना ऊपर तक जा सकता है उतना बेहतर प्रदर्शन माना जाता है। भारत के लिए आईची नगोया में स्पोर्ट क्लाइंबिंग की कहानी बाकी दोनों खेलों से थोड़ी अलग है। भारत में यह खेल अभी बैडमिंटन या स्क्वॉश जितना स्थापित नहीं है, लेकिन इसकी कहानी तेजी से बदल रही है। इस बार भारत की स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैलेंज स्पीड क्लाइंबिंग में है। भारत की ओर से दीपू मलेश पुरुष स्पीड में और जोगापूर्ति महिला स्पीड में चुनौती पेश करेंगे। जोगापूर्ति के लिए यह खास मौका होगा। 2026 एशियन चैंपियनशिप्स में उन्होंने वुमेन्स स्पीड में 13वां स्थान हासिल किया था और इससे पहले 2024 यूथ एशियन चैंपियनशिप्स में अंडर 18 स्पीड में रजत पदक जीता था। उन्होंने उस प्रतियोगिता में 8.89 सेकंड का नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। दीपू मलेश ने भी 2026 एशियन चैंपियनशिप्स में मेंस स्पीड में 23वां स्थान हासिल किया। यानी आईची नगोया उनके लिए भी एशिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट मंच पर अपनी क्षमता दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। इसलिए आईची नगोया में दीपू मलेश और जोगापूर्ति के लिए हर परफॉर्मेंस भारतीय क्लाइंबिंग के अगले अध्याय की नींव बन सकती है और यही इन तीनों खेलों को एक साथ जोड़ता है। बैडमिंटन में भारत के पास इतिहास है, स्क्वॉश में भारत के पास हालिया सफलता और गत विजेता होने का दर्जा है, लेकिन क्लाइंबिंग में भारत के सामने भविष्य बनाने का अवसर। तीन खेल, तीन अलग चुनौतियां। बैडमिंटन कोर्ट पर शटल की रफ्तार होगी तो स्क्वॉश के कोर्ट पर रणनीति, धैर्य और प्रतिक्रिया की परीक्षा, और क्लाइंबिंग वॉल पर हर सेकंड, हर कदम और हर पकड़ मायने रखेगा। लेकिन इन तीनों के बीच एक चीज समान है, भारत की उम्मीद। आईची नगोया में भारत सिर्फ अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने नहीं जा रहा, भारत अपने इतिहास को आगे बढ़ाने जा रहा है। तो जब 19 सितंबर को आईची नगोया में एशियन गेम्स का आगाज होगा, नजर सिर्फ पदकों पर नहीं होगी, नजर होगी उन खिलाड़ियों पर जिन्होंने वर्षों की मेहनत से यहाँ तक का सफर तय किया, नजर होगी उन युवा चेहरों पर जो भारतीय खेलों की अगली कहानी लिखने आए हैं, और नजर होगी उस तिरंगे पर जो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर स्क्वॉश कोर्ट और क्लाइंबिंग वॉल तक अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि पदक सिर्फ पोडियम पर नहीं बनते, वह बनते हैं वर्षों की मेहनत, असफलताओं के बाद वापसी से और उस विश्वास से कि अगली बार हम थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं। और इस बार भारत की नजर भी उसी अगली ऊंचाई पर है। यह है भारत की तैयारी, यह है हमारे खिलाड़ियों की कहानी, और यही है चीयर फॉर इंडिया।
1: जी हाँ, तो अब हम बात करेंगे तीरंदाजी यानी कि आर्ची की, और ओलंपियन धीरज आर्ची वर्ल्ड कप फाइनल 2026 में भारत की एकमात्र चुनौती है। प्यूबा, शंघाई, अताले और मैड्रिड में हुए आर्ची वर्ल्ड कप के चारों स्टेजों के व्यक्तिगत चैंपियन और सीरीज स्टैंडिंग के सबसे ऊंची रैंकिंग वाले तीरंदाजों ने फाइनल के लिए अपनी जगह बनाई है। पुरुष और महिला वर्ग में किसी भी भारतीय रिकर्व तीरंदाज ने फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। इसमें से चार बार के ओलंपियन दीपिका कुमारी भी शामिल है। भारत की महिला कंपाउंड तीरंदाज भी इंटरनेशनल सीरीज की आखिरी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही है। इसी के चलते हमने खास बातचीत की। हमारे साथ इस समय मौजूद है संजीव कुमार, जो कि फॉर्मर हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य अवार्डी हमारे साथ मौजूद हैं। जानना चाहेंगे भारतीय टीम के प्रदर्शन के बारे में कि जैसा कि सीजन के आखिरी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आर्ची वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर 32 शीर्ष तीरंदाज हिस्सा लेंगे और पुरुष एवं महिला वर्ग की व्यक्तिगत रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाओं में खिताब के मुकाबले रहेंगे, और भारत की तरफ से सिर्फ एकमात्र दावेदारी पेश की धीरज ने, तो क्या कहेंगे?
2: पहले तो मैं बता दूं कि जो ये वर्ल्ड कप फाइनल जो होने जा रहे हैं मेक्सिको में, यहाँ पे एक ही आर्चर इंडिया से क्वालिफाई किया है, वो है धीरज बोम्बर्स धीराज। धीरज का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। अगर आप पेरिस ओलंपिक को ध्यान दें, पेरिस ओलंपिक में 2024 में उसका चौथा पोजीशन था, वो लगातार वहाँ पे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद अभी जब उसने जो वर्ल्ड कप अंटालिया वहाँ पे शंघाई में भी अच्छा किया, लेकिन अंटालिया में उसने फाइनली गोल्ड मेडल जीता, जिसके बदौलत उसका टॉप रैंकिंग होने के एथलीट के नाम से वर्ल्ड रैंकिंग बना और टॉप 8 में सेलेक्ट होके वो वर्ल्ड कप फाइनल में मेक्सिको खेलने जा रहा है। उसका जो शूटिंग फॉर्म है बहुत ही अच्छा है, दिन पे दिन बढ़ता है, इम्प्रूव करता जा रहा है, और उस पे हम पूरी उम्मीद लगा सकते हैं। इसमें पदक ही नहीं बल्कि ओलंपिक जो आने वाले 28 ओलंपिक के एशियन गेम्स के दोनों में ही उम्मीद है उससे, पदक इंडिविजुअल के लिए भी, टीम के लिए भी। टीम के लिए बहुत स्ट्रांग फोर्स है, वो स्टार्ट करता है टीम को, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और खासतौर से उसकी जो शूटिंग टेक्निक है अगर हम वर्ल्ड के टॉप आर्चर्स देखेंगे तो उनके बराबर

की है, बहुत ही सॉलिड उसका बो हैंड है, बहुत ही अच्छा ड्रॉ लेंथ है, ड्रॉ बहुत अच्छा करता है, साथ ही साथ उसका जो टाइमिंग है वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए ओवरऑल अगर देखा जाए शूटिंग फॉर्म का, वो टॉप वर्ल्ड के आर्चर्स में उसकी शूटिंग फॉर्म है, और वो उसी वजह से लगातार पिछले 4 सालों में उसकी प्रदर्शन देखे तो बहुत ही अच्छी प्रदर्शन कर रहा है, और उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के लिए इस बार जो वर्ल्ड कप फाइनल होने जा रहे हैं वहां पे वो पदक की पूरी पूरी संभावना है।

0: बिल्कुल आप देखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि धीरज से कि वो अच्छा करेगा और आने वाले एशियन खेल में 2028 के ओलंपिक में मिक्स टीम में दोनों में ही बहुत प्रबल दावेदार है। हम लोग चांस है कि दोनों में ही मेडल आने का चांस है और धीरज का फॉर्म दिन पे दिन इम्प्रूव कर रहा है, वो मेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, तो हमें नहीं लगता कि धीरज को किसी बारे में मतलब कमी तो नहीं दिखती हमें। और आज का दिन बताएगा, जैसे ऐसे रिजल्ट आएंगे आपको उम्मीद है कि भारत का तिरंगा फिर लहराएगा।
1: आइए बात करते हैं टेनिस की। न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में यूएस ओपन 2026 अब अपने आखिरी और सबसे रोमांच पड़ाव पर पहुंच चुका है। पुरुष एकल के दोनों सेमीफाइनल ने फाइनल की तस्वीर साफ कर दी है और इस बार न्यूयॉर्क में एक नया पुरुष चैंपियन देखने को मिलेगा। पहले सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने रूस के कारेन खचनोव को सीधे सेटों से 6-3, 7-6, 7-6 से हराया। हालांकि स्कोरलाइन सीधी जीत बताती है, मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं था। पहले सेट में ज्वेरेव ने एक महत्वपूर्ण सर्विस ब्रेक हासिल कर 6-3 की बढ़त बनाई। दूसरे सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ और ज्वेरेव ने टाई ब्रेक 9-7 से जीता। तीसरे सेट में खचनोव ने शानदार वापसी की कोशिश की और टाई ब्रेक में 5-2 की बढ़त बनाई, लेकिन ज्वेरेव ने लगातार 5 अंक जीतकर 8-6 से टाई ब्रेक और मैच दोनों अपने नाम कर लिया। जीत के बाद ज्वेरेव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: Straight set win, but anything but straightforward in a way. He played incredibly well, fought incredibly well. Second and third set, I think it's more than obvious that they could have gone both ways, and I just played a few points better here and there, and I'm happy with the win. I feel like when I made the final here in 2020, I didn't play well, but I didn't play well the entire tournament. that never changed, funny enough. And I made it to the final, and I was 2 points away from winning. But I think the improvement has been quite dramatic for me, and it's a great thing because I really started off determined, and I was like, well, this is pointless because I'm not going to do anything here, and here I am sitting and preparing for Sunday final. So.
1: इस जीत के साथ 29 वर्षीय ज्वेरेव लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंच गए हैं और यूएस ओपन में दूसरी बार फाइनल खेलेंगे। इससे पहले 2020 में वे यह फाइनल तक पहुंच गए थे जहां डोमिनिक थियाम से हार गए थे। वे इस साल के फ्रेंच ओपन चैंपियन भी हैं और अब उनके सामने अपने करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का मौका होगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे सेमीफाइनल की, जहां अमेरिका के बेन शेल्टन ने हमवतन फ्रांसिस टियाफो को 4 सेटों के शानदार मुकाबले में 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 से हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल के फाइनल में जगह बनाई। मुकाबले की शुरुआत टियाफो ने बेहतर अंदाज में की और पहला सेट 6-4 से अपने नाम किया, लेकिन इसके बाद शेल्टन ने अपनी तेज सर्विस, आक्रामक बेसलाइन गेम और मजबूत डिफेंस के दम पर लगातार 3 सेट जीत लिए। शेल्टन ने मुकाबले में 20 एस लगाए जबकि टियाफो के नाम सिर्फ 3 एस रहे। लगभग 3 घंटे चले इस ऑल अमेरिकन मुकाबले में शेल्टन ने दबाव के क्षणों में बेहतर प्रदर्शन किया और 23 साल की उम्र में अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंच गए। जी, मैच के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: I mean, first on foe, he's like a big brother to me. To be honest, every time that we get to take this court together, Arthur Ashe, and play each other is super special. But this is where we want to be at the tail end of this tournament. This is both of our favorite tournament in the world, our favorite court in the world, and to be able to light it up in front of you guys is the best feeling that there is.
1: अब पुरुष एकल का फाइनल होगा अलेक्जेंडर बनाव बेन शेल्टन का और वहीं महिला एकल का फाइनल होगा अरेना सबलंका और एलेना रेपकीना के बीच।
3: अब बात करते हैं हॉकी की। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम लगातार चौथी और कुल छठी बार एशिया की सरताज बनने के महज एक कदम दूर है। भारतीय टीम ने कल बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया और कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल की मदद से मलेशिया को 3-1 से पराजित कर लगातार चौथी और कुल 8वीं बार जूनियर एशिया कप के फाइनल के अंदर प्रवेश कर लिया है और अब फाइनल मुकाबला कल होगा दक्षिण कोरिया के साथ। वहीं महिला वर्ग की बात करें तो बेहद ही शानदार मुकाबला अब से कुछ देर पहले जूनियर

0: हॉकी एशिया कप के फाइनल के अंदर भारतीय टीम ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-1 से साउथ कोरिया को करारी शिकस्त दी है। सुप्रिया की हैट्रिक के साथ मधु और सुखबीर कौर ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन दिखाया और जूनियर महिला एशिया कप के सेमीफाइनल के अंदर भारत ने साउथ कोरिया को 5-1 से पराजित किया। और इसी के चलते हमने खास बातचीत की। इस समय मौजूद हैं गुरविंदर सिंह सांगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कोच हैं। सर, जानना चाहेंगे भारतीय टीम का प्रदर्शन के बारे में।
1: नमस्कार जी। देखिए, भारतीय टीम का प्रदर्शन जो जूनियर एशिया कप चल रहा है मोकी में चाइना में, उसमें काफी अच्छा रहा है, क्योंकि बॉयज में भी हम फाइनल में पहुंच चुके हैं मलेशिया को हराकर, और गर्ल्स में भी हमारी टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही सराहनीय रहा है। और मुझे आशा है कि हम पॉसिबल है कि दोनों टाइटल्स के लिए हम जा रहे हैं और अच्छी दिशा में जा रहे हैं।
0: और जैसे कि मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल के अंदर प्रवेश कर लिया है, तो अब किस तरह की परिस्थिति आप देखते हैं फाइनल के अंदर?
1: देखिए, फाइनल जो होता है ऑलवेज डिफरेंट गेम होती है, क्योंकि चाहे हमने पूल में किसी टीम के साथ खेला हो, पहले खेला या नहीं खेला, लेकिन फाइनल ऑलवेज डिफरेंट होता है। और कोरिया की टीम भी, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने पाकिस्तान की टीम को 4-1 हरा कर वन साइडेड गेम करके उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया, तो ऑल दो हमारी एज जरूर रहेगी फाइनल में, लेकिन हमें किसी भी तरह से हम कोरिया की टीम को लाइकली नहीं ले सकते।
0: बिल्कुल। और महिला टीम की बात करें, तो अगर पिछले प्रदर्शन की बात करें, कंपैरेटिवली इस साल भारतीय महिला टीम ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है, तो क्या कहेंगे आप?
1: महिला टीम ने भी बिल्कुल शानदार प्रदर्शन, और सीनियर वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया महिला टीम, और हमें आशा है कि अभी जो अच्छे ट्रैक्टर चल रही हैं हमारी महिलाएं आगे स्टार्ट हो रही हैं, और जूनियर एशिया कप में भी लड़कियां अच्छी फॉर्म में चल रही हैं, तो डेफिनेटली अच्छा प्रदर्शन करने की और गोल्ड मेडल जीतने की आशा।
0: और जिस तरीके से महिला टीम की अगर हम बात करें, तो जो खिलाड़ी हैं लगातार फॉर्म के अंदर नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं कुछ गलतियों का खामियाजा भुगतना ना पड़े, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, हमें कोई भी, मैंने जैसे आपको बोला कि कोई भी हर गेम नए दिन नई गेम होती है, तो हमें उसके हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा।
0: हॉकी के बाद हम बात करेंगे एथलेटिक्स की, और एथलेटिक्स के अंदर पिछली बार की चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी अनु रानी को रेस्ट दिया गया है इस के अंदर, और साथ ही साथ एथलीट शाहनवाज खान और धविका नित्या को भी बाहर रखा गया है। और एशियाई खेलों के अंदर दो लोगों की एंट्री हुई है, ज्योतिका यराजी और सर्वेश कुरेश की।
2: जी, इसके बाद अभी अभी एक और स्क्वाश में अपडेट आ रही है, अनाथ सिंह की जीत से शुरुआत। क्यू टर्मिनल्स कतर क्लासिक में, जो PSA स्क्वाश टूर का प्लेटिनम इवेंट होता है, वहां भारतीय स्टार ने नंबर 16 विश्व नंबर 16 फरीदा मोहम्मद इजिप्ट की फरीदा मोहम्मद को 3-1 से हराया है। इस जीत के साथ अनाहत राउंड ऑफ 16 में पहुँच गई हैं।
0: बिल्कुल। और इसके साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, मुझे मंजीत कौर और प्रतीक आनंद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, दिल्ली

0: घोषणा पत्र में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है?
1: देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव पर ब्रिक्स देशों ने चिंता जताई। ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने दुनिया में सैन्य खर्च में लगातार हो तेज बढ़ोतरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा नेताओं ने कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान बहुपक्षीय सहयोग के जरिए होना चाहिए, जिसमें सभी देशों के अलग अलग विचारों और हितों का जो है सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा सतत विकास, भूख और गरीबी खत्म करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया। वहीं पश्चिम एशिया में के तनाव पर भी ब्रिक्स देशों ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई रूप आपराधिक अनुचित है। देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों के भी कड़े शब्द निंदा की, जिसमें लगभग 20 लोगों की जान चली गई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। जी दीपेंद्र।
0: जी धन्यवाद दीपेंद्र। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने समूह की संस्थागत नीति गति सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया समूह की अपनी कार्यप्रणाली से शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। प्रधानमंत्री आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बीच कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और यूरेशियन आर्थिक संघ के अध्यक्ष कासिम जोमार्त तोकायेफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्यकुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं जो भूमि और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. BRICS nations have expressed concern about ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order in the New Delhi Declaration adopted on the first day of the BRICS Summit 2026, the leaders advocated for a multilateral approach that respects diverse national viewpoints and positions on crucial global issues. These issues include sustainable development, eradication of hunger and poverty, and contributing to the global response to climate change. In his closing remarks, the Prime Minister noted that the New Delhi Declaration adopted today provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
3: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन

0: रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: BRICS members expressed deep concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. They encouraged increasing efforts through dialogue and diplomacy towards a long-term understanding that will contribute to lasting peace, security and stability in the region. BRICS leaders called for a sustained Gaza ceasefire and unhindered humanitarian aid. They stressed that lasting peace requires a just solution to the Israeli-Palestinian conflict and reaffirmed support for Palestine's rights and greater representation in international institutions. The leaders condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year in the strongest terms. BRICS members reaffirmed their commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. Earlier, the BRICS Summit 2026 kicked off at Bharat Mandapam in New Delhi this afternoon. Prime Minister Narendra Modi, in his opening remarks, proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. The Prime Minister said the mechanism would enable follow-up of all initiatives and outcomes through the Troika. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers' emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
0: क्या हम seafarers' emergency support network बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: Prime Minister Modi said the time has come to translate the unity and consensus among BRICS countries into concrete outcomes on the global stage. Mr. Modi said resilience, innovation, cooperation and sustainability have been India's foremost priorities as chair. Guided by these priorities, India has laid special emphasis on connecting BRICS cooperation directly with the common people. The Prime Minister noted that the Global South stands in the front row of global crises but in the back row of decision-making. On the issue of reform in the United Nations Security Council, the Prime Minister emphasized that it can no longer be postponed. Prime Minister Narendra Modi today held a series of bilateral meetings on the sidelines of the BRICS summit. He met his Ethiopian counterpart, Dr. Abiy Ahmed Ali, Malaysian counterpart, Anwar Ibrahim, and Vietnamese counterpart, Le Minh Hung. The leaders reviewed cooperation in trade, defense and security, people-to-people ties, and also covered regional and global issues. Mr. Modi also held talks with Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Both sides reiterated the importance of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल।
3: इस अंक में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में आयोजित संवाददाता सम्मेलन और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्वरांजलि। 9 सितंबर बुधवार को राष्ट्रीय मीडिया सेंटर सभागार में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री अश्वनी वैष्णव, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने संवाददाताओं को बताया,
4: जो 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की क्वाड्रुपलिंग यानी 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। सभी प्रोजेक्ट्स को 4 लाइनिंग करने का है। करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं। करीब 5000 किलोमीटर ऐसे हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं और काम अभी चल रहा है या चालू हुआ है, और करीब 4000 किलोमीटर ऐसे हैं जिसके अभी डीपीआर बन रहे हैं और डीपीआर बन के आगे आने वाले समय में उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया जाएगा। पहला आपके सामने प्रोजेक्ट है।

0: is a project from the Mumbai Howrah Mumbai Kolkata high density network. This route may starting from Mumbai to Kalyan already 4 line hai. जैसे जैसे आप जाओगे टुवर्ड जलगांव भुसावल नागपुर यहाँ तक प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन होके इसमें काम चालू हो गया है. आगे नागपुर से गोंदिया दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट विच इज स्टिल पेंडिंग फॉर अप्रूवल और उसका भी कैबिनेट नोट बन के डीपीआर बन के सब आगे बढ़ चुकी है चीजें. होपफुली विद इन फ्यू वीक्स दिस विल ऑल्सो गेट अप्रूव. आगे गोंदिया से अकलतारा चांपा यहाँ तक 3 लाइन हो चुकी है, 4th लाइन बन रही है. आगे चांपा से खरसिया, खरसिया से झारसुगुड़ा ये ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुका है, कंप्लीट हो गया है. ये जो अप्रूवल है झारसुगुड़ा से लेके ऑल द वे टू खड़गपुर तक जहाँ पे ऑलरेडी 3 लाइन से वहाँ पे 4th लाइन बनाने का काम इसमें प्रोजेक्ट में. मुंबई से लेके कोलकाता तक कंप्लीट 4 लाइनिंग सेक्शन बाय सेक्शन, खड़गपुर से लेके ओडिशा में झारसुगुड़ा तक का ये पूरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे 4th लाइन बन. ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती. इस प्रोजेक्ट से भी करीब 43 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हर साल बचेगी. सो दिस इज हाईली एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट. अगर इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बचानी है तो एनवायरमेंट में वी हैव टू प्लांट 1,73,00,000 ट्रीज, देन ओनली इक्वलेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी सेव्ड. लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की सिग्निफिकेंट बचेगी 967 करोड़ और 125,00,000 ह्यूमन डेज का इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. मुंबई टू कल्याण इज ऑलरेडी 4 लाइन, कल्याण टू करजत हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव, करजत टू पुणे इज दैट वेरी कॉम्प्लेक्स घाट सेक्शन वेयर द जियोलॉजी इज वेरी टिपिकल, इट हैज टू बी वेरी केयरफुली स्टडीड एंड द प्रोजेक्ट हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन अ वे दैट इट जेल्स वेरी वेल विद द एनवायरमेंट एंड द जियोलॉजी ऑफ द प्लेस. साथ ही साथ मुंबई से पुणे की बुलेट ट्रेन भी प्रोजेक्ट ऑलरेडी अनाउंस्ड है, उसका डीपीआर और ये 3rd और 4th लाइन का डीपीआर इन सबको प्रॉपरली एक इंटीग्रेटेड वे में देखा जाए सो दैट वी कैन हैव अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स. आगे पुणे से वाड़ी इसका डीपीआर बन रहा है अभी, वाड़ी से गुंटकल ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, गुंटकल से रेणीगुंटा का डीपीआर बन रहा है और जो अप्रूव हुआ है वो है रेणीगुंटा से अराकोनम. रेणीगुंटा एज यू नो इज द प्लेस वेयर तिरुपति बालाजी टेम्पल इज वेरी क्लोजली सिचुएटेड. अराकोनम टू चेन्नई इज ऑलरेडी 4 लाइन, ऑलरेडी क्वाड्रुपल्ड. प्रैक्टिकली फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई वी आर कवरिंग द एंटायर कॉरिडोर टू मेक इट 4 लाइन, मेक इट क्वाड्रिलेटरल, मेक इट क्वाड्रुपलिंग सो दैट वी हैव द एंटायर नेटवर्क हैविंग एक्सट्रीमली गुड कैपेसिटी फॉर नेक्स्ट मेनी डेकेड्स एंड वी कैन रन मेनी मोर ट्रेन्स बिटवीन दीज इंपॉर्टेंट सिटीज फ्रॉम रेणीगुंटा टू अराकोनम. सो दिस प्रोजेक्ट इज नाउ अप्रूव्ड. Now I'll come to one very important project which is for the Hyderabad city. Hyderabad as a major city is located between two major high density corridors. Project from Secunderabad to Kajipet. Secunderabad to Kajipet, it basically connects one major corridor which is towards Vijayawada and another corridor which is towards Mumbai. Already from Wadi to Secunderabad, work is going on. It has been approved earlier. And now from Hyderabad to Secunderabad to Kazipet, the two major corridors where the connection points are Kazipet and Wadi, in between there is Secunderabad. These two corridors get connected by a quadrupled, by a four-lining corridor, four-line railway. So this makes a huge traffic interchange can happen between these two corridors and many trains which have to go from east to west or from south to east or from south to west, they can all use this corridor for their connectivity. This entire thing that we are doing is going to lay the foundation for next 40-50 years. The benefit will keep coming from these projects. All the generations are going to get benefit of these projects. So overall, in Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's historic third term, lot of new initiatives have been taken which are going to lay the foundation for generations to come, the younger generation of today and the generations which are going to come after that. They will all benefit by these projects. 67 railway projects worth about 2,94,000 crore, 38 highway projects worth about 3,82,000 crore, 13 metro projects worth about 1,65,000 crore, electronics manufacturing, semiconductor, mobile phone manufacturing, airports, shipping, ropeways, smart city, housing, industrial cities, water supply, coal gasification. Project after project has been taken up, which is going to keep benefiting the country over many years to come.
1: 10 सितंबर गुरुवार को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा

भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष स्वरांजलि श्रृंखला के अंतर्गत उस्ताद कमाल साबरी को सारंगी वादन प्रस्तुति हेतु आमंत्रित किया गया। प्रस्तुत है इस अवसर पर सारंगी वादन प्रस्तुति की एक

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य प्रथमदिवसे सर्वसम्मत्या नवदेहली घोषणापत्रम् अंगीकृतम्। घोषणापत्रस्य अंगीकारः सदस्य राष्ट्राणां समन्वितानां संकल्पानां कृते स्पष्ट मार्गदर्शकः इति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना मलेशिया, वियतनाम, इथियोपिया प्रधानमन्त्रिभिः तथा अबुधाबी युवराजेन सह द्विपक्षीय वार्ता सञ्चालिताः। अद्य सायं चीन राष्ट्रपतिना शी जिनफिंग वर्येण सह संभाषणं विधीयते। षड्वर्षीय स्थगनं समापयता चीन देशेन अस्य मासस्य 21 दिनांकात् ग्वांगझोउ नवदेहली मध्ये नियमित यात्रिविमानसेवाः पुनः प्रारप्स्यन्ते। अपि च महिला हॉकी क्रीडायां चीनस्य मुकीनगरे आयोजितायां कनिष्ठ एशिया चषक स्पर्धायां दक्षिण कोरिया देशं 5-1 इति अंकैः पराभूय भारतं अन्तिम चरणं प्राविशत्।

0: अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदेहल्याम् अष्टादश ब्रिक्स शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इथियोपिया मलेशिया वियतनाम इत्येतेषां देशानां प्रधानमंत्रिभिः अथ अबुधाबिनः युवराजेन सह द्विपक्षीय गोष्ठीनां श्रृंखलां प्रारब्धवान्। कूटनीतिक वार्तानां अस्याम् आवृत्तौ प्रधानमंत्रिणा सर्वप्रथमं इथियोपिया देशस्य प्रधानमंत्रिणा डॉक्टर आबी अहमद अली सन्निधेन सह उच्चस्तरीय संभाषणं विहितम्। विदेश मंत्रालयेन विज्ञप्तौ संसूचितं यत् उभौ नेतारौ द्वयोः देशयोः विशेष रणनैतिक संधिं नूतनां उन्नतिं नेतुं संकल्पं गृहीतवन्तौ। गोष्ठ्यां मुख्यतया आर्थिक सहयोगस्य रक्षा सुरक्षा संबंधानां तथा क्षमता संवर्धनस्य क्षेत्रेषु प्रगतेः समीक्षणं कृतम्। एषा महती सम्पूर्तिः गतवर्षस्य दिसंबर मासे असिस अबाबा नगरे प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक प्रवासस्य परिणामस्वरूपेण सञ्जाता। भारतस्य अध्यक्षतायां नवदेहल्यां समायोक्ष्यमाणस्य अष्टादश ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य अवसर अन्तराले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मलेशिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा अनवर इब्राहिम इत्यमुना सह उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तां सञ्चालितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां द्वयोः देशयोः नेतारौ व्यापार निवेश रक्षा सुरक्षा तथा जनसंपर्कः इत्येतेषु बहुविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य प्रगतेः समीक्षणम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ अस्मिन् वर्षे प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मलेशिया प्रवासस्य संकल्पानां निष्पत्तेः अपि सूचनां गृहीतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना आसियान भारत सम्बन्धानां सुदृढीकरणे तथा क्षेत्रीय सहयोगे मलेशिया देशस्य निरन्तर समर्थनस्य भूरिशः प्रशंसा कृता। अत्रावधेयं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वियतनाम देशस्य प्रधानमन्त्रिणा ले मिन हुंग इत्यनेन सह उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। अस्यां गोष्ठ्यां ब्रिक्स सम्मेलने वियतनामस्य सहभागिदेशत्वेन सहभागिता सविशेषं स्वागतीकृता। विदेश मंत्रालयेन संसूचितं यत् अस्मिन् वर्षे वियतनाम राष्ट्रपतेः तोलम वर्यस्य भारत प्रवास वेलायां उच्चस्तरे समुन्नीतायाः संवर्धित व्यापक रणनैतिक संधेः प्रगतेः समीक्षणम् अस्मिन् उपवेशने विहितम्। अनेन सहैव प्रधानमन्त्रिणा अबुधाबिनः युवराजेन शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जयद अल नहियान इत्यनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धाः समीक्षिताः। उभौ पक्षौ राजनैतिक सांस्कृतिक वाणिज्यिक ऊर्जा क्षेत्रेषु तथा जनात् जनसंपर्के आधारितस्य भारत यूएई व्यापक रणनैतिक सहयोगस्य पुनरुच्चारणं चक्रतुः। अद्य सायमन्तराले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना सी चिनफिंग इत्यमुना सहापि द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। नवदेहल्याः ऐतिहासिक भारतमण्डपे आयोज्यमानस्य अष्टादश ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य प्रथमदिवसे एव सदस्यदेशैः सर्वसम्मत्या नवदेहली घोषणापत्रम् अङ्गीकृतम्। सत्रस्यास्य समापने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्य घोषणापत्रस्य स्वीकाराय प्रस्तावम् उपस्थापितवान्, यं सर्वे नेतारः एकस्वरेण सर्वसम्मत्या च अङ्गीकृतवन्तः। स्वकीय समापन उद्बोधने प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना संसूचितं यत् अद्य अङ्गीकृतं नवदेहली घोषणापत्रं ब्रिक्स सदस्यदेशानां सन्धिसङ्कल्पानां कृते एकां स्पष्टां कूटनीतिकदिशिम् अङ्कयति। तेन विशेषतः प्रतिपादितं यत् एतेषां सर्वसम्मत संकल्पानां प्रत्यक्ष मूर्त परिणामेषु परिवर्तनम् इदानीं सर्वेषां सदस्य राष्ट्राणाम् उत्तरदायित्वं वर्तते।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सबलं प्रोक्तं यत् अद्यतनेन विचार विनिमयेन एतत् स्पष्टं भवति यत् परिवर्तनम्

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, आज शनिवार है, तो आपको सुनने को मिलेगा आप ही की पसंद।

0: पर लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज 12 सितंबर है और आज के दिन मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस। बहन भाइयों, इस दिवस से सदस्य देशों को दक्षिण दक्षिण सहयोग के महत्व और लाभों को पुनः स्थापित करने का अवसर मिलता है।
1: बिल्कुल शशि भाई, दक्षिण दक्षिण सहयोग दक्षिण के लोगों और देशों के बीच एकजुटता की अभिव्यक्ति है, जो उनकी राष्ट्रीय भलाई, उनकी राष्ट्रीय और सामूहिक आत्मनिर्भरता और सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देता है।
0: और ये दिन दक्षिण में क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास का जश्न मनाता है।
1: बिल्कुल, ये दिन विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग पर काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है।
0: दक्षिण दक्षिण सहयोग ऐतिहासिक रूप से नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों द्वारा विकासशील देशों के बीच संसाधनों, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के आदान प्रदान का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे ग्लोबल साउथ के देशों के रूप में भी जाना जाता है।
1: बिल्कुल शशि भाई, ग्लोबल साउथ वैश्विक विकास में तेजी से महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
0: तो बहन भाइयों, ये तो आपने जाना दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस के बारे में। और बहन भाइयों, हम सब अपने जीवन में सुख चाहते हैं और सुख के साधनों को अपने घर में जुटाते हैं, बहुत सारे उपकरणों का उपयोग भी करते हैं। अब इन उपकरणों को चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमें बिजली की आवश्यकता होती है। जब ये सारे उपकरण एक साथ चलते हैं तो महीने में जो बिजली का बिल आता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सुख है वो दुख में बदल जाता है। तो हमें बिजली का बिल ना देना पड़े, इसके लिए सरकार बहुत ही अच्छी योजना चला रही है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने पर सरकार 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए लगभग 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है।
1: बिल्कुल शशि भाई, पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है।
0: तो हमारे जो भी बहन भाई अपनी घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा करके बिजली का बिल शून्य करना चाहते हैं, तो वो pmsuryaghar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और जब आपकी पात्रता सत्यापित हो जाती है तो फिर सरकार द्वारा पंजीकृत विक्रेताओं द्वारा आपके घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित कर दिए जाते हैं, और इसके बाद सब्सिडी 30 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। तो बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं गांव पनियार से विनोद बोल रहा हूँ जी।
0: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: राम सिंह की सुना दीजिए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: बच्चों के नाम जी, साहिल, रोहित, कविता, ममता, राम राम जी।
0: राम राम। हेलो ग्राम संसार।
3: राम राम सर।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: हवलदार जयप्रकाश, ग्राम पाचौता बुलंदशहर से बोल रहे हैं साहब।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: राम सिंह को सुनवा दीजिए सर, नाम नोट कर लो
0: जी। कराएं।
3: करण खुशी नंदनी राज्य का प्रतिज्ञा। राम राम सर।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार, शशि जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: इशार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ।
0: सैनी जी, कार्यक्रम में स्वागत है, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: राम सिंह को सुनना चाहूंगा, बनवारी लाल यादव, शमशेर जी द्वारका से, विजय लखेरा महेंद्रगढ़ से, राहुल सैनी इशार से। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार सर जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड यूपी से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर जी।
0: विश्वकर्मा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज सर राम सिंह जी को सुनना चाहेंगे सर।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
6: नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: सत्यदेव सागर, ग्राम सरवन्ना, थाना चतारी, जनपद बुलंदशहर से बोल रहा हूँ जी।
0: सागर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: राम सिंह जी की आवाज में सुनवा देना कोई भजन रागनी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: तो एक नाम लेना चाहूंगा।
0: हाँ बोल दीजिए।
6: पत्नी संतोष देवी, बेटा शिवदत्त सागर, सुधीर सागर, उनके साथ।

0: सर।
1: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
0: शशि भैया नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
0: गांव चौधरी वास से राजू अग्रवाल।
1: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
0: राम सिंह को सुनना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा, शनिवार को नीलम जी ने और आपने सद्भाव के बारे में बताया, रागनी बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुनाई।
1: कार्यक्रम पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
2: मैं सोनू गांव ढोल जिला हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
1: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज राम सिंह को।
1: जरूर सुनवाएंगे।
2: देखना मैं मेरे पिताजी अमन बाल माँ से मम्मी फूलवती फोटो वोटो। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
3: सर जी नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: सर दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा बोल रहा हूँ सर जी।
1: मेहरा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: राम सिंह को सुना देना सर।
1: जरूर सुनवाएंगे।
3: बच्चों के नाम है सर जी?
1: हाँ बोल दीजिए।
3: कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार।
1: कौन भाई बोल रहे हैं?
4: इंद्रवीर तेवतिया, राम नत्थुगढ़ी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
1: तेवतिया जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: राम सिंह की गाई हुई बढ़िया जी रागनी सुनवा देना। कुछ नाम लेने चाहूंगा, सुमित तेवतिया, प्रिंस, छोटू, प्रत्यक्ष, निष्कर्ष, हमारी बुआ जी है राजवीरी, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से हैं राजकुमार जी, और गांव खुशालपुर से हैं शेर सिंह मोदी और पंडित रतन लाल।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर राम सिंह से ये उपदेश।

0: हेलो ग्राम संसार,
1: हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं ब्रजपाल बोल रहा हूँ। सर गांव राम सावड़ा जिला सहारनपुर से। जी
0: आज ये किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: बबीता को सुना दियो। जी
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार,
1: हाँ नमस्कार जी, मैं
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: शेर सिंह बोल रहा हूँ, रजपुरा मवाना रोड में अटते हूँ।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: बबीता को सुनवा दो जी,
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: कुछ नाम है जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
1: भाई है मोती सिंह है, दोस्त है परबाल है, गजे सिंह है, किशनपाल बेटा है।
0: हेलो ग्राम संसार,
1: हेलो ग्राम सुसार, नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं बसेश्वर पटार बोल रहा, गांव रंडेड़ी जिला सहारनपुर यूपी से। जी
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: बबीता जी को सुनवा दो आज।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार,
1: राम राम साहब,
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: पुरजिया उत्तर प्रदेश से तिलकड़ा।
0: आज ये किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज बबीता को सुनना चाहेंगे।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार,
1: हेलो ग्राम संसार, राम राम जी। विनोद
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: कुमार प्रजापत, गांव दुदू कला, डिस्ट्रिक्ट सरखी दादरी, हरियाणा से।
0: आज ये किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज बबीता जी की आवाज में सुनवा दो कोई अच्छा सा।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार,
2: नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: बसंत कुमार ठाकुर, ग्राम भिरई, नया पारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से।
0: आज ये किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: बबीता।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार,
1: जी राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: जिला हापुर गढ़गंगा नए बांध से घनश्याम बोल रहा हूँ। सचिव भाई जी,
0: आज ये किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज की कलाकार है बबीता।
0: जरूर सुनवाएंगे
1: दो नाम ले लो
0: जी।
1: मेरी बहन ज्ञानवती आनंद जी, प्रधान जी ज्ञानदास, सबको राम राम।
0: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर बबीता से ये रागनी, किस्सा रहेगा राजा मोर ध्वज का।

हाथ में हाथ पकड़ी अपना दे दिया सरी कसाई। मैं भी पति के संग चलूंगी,

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार, सभी को नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: आज ये किस कलाकार को सुनना चाहोगे? हाँ,
1: जय किशन को, दो मित्र हैं मेरे,
0: नाम बोल दीजिए।
1: पालदा नाका इंदौर से, हसीना भी मंसूरी और अमीना भी मंसूरी और उनका परिवार।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार जी,
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं जगदीश किंडारिया बोलूँ जी, टाणा निरसान जिला भिवानी जी, हरियाणा से।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: जय किशन को सुना देना जी,
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: बच्चों के भी नाम है जी, राजवीर चिंदाड़िया, सतीश चिंदाड़िया, ऋतिक चिंदाड़िया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी।

0: में जी असालत नगर मुरादनगर से हैं नरेंद्र जाटव, कमलेश जाटव, प्रशांत जाटव, निशांत जाटव दरोगा साहब और शिवानी जाटव राबितपुर मानकी से हैं, महेंद्र शारदा रामकिशोर शीला सचिन अनुष्का मानसी शिवम और ये पूरे राबितपुर भाव की फरमाइश होगी। नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
1: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ये जय किशन जी को सुनवाइए जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
2: कुछ नाम है जी?
1: हाँ बोल दीजिए।
2: जयपाल सिंह अध्यक्ष, जगदीश मोटा बागरपुर और मास्टर ब्रह्म सिंह, पवन कुमार, मास्टर फंदन सिंह, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर और आरव भाटी।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर जय किशन से ये रागनी, किस्सा रहेगा महाभारत का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731, और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम।
0: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। 7 बजने को है। आपसे कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रॉइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
2: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर

0: ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। ब्रिक्स देशों ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सभी तरह के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिक्स नेताओं ने पौधारोपण किया। उन्होंने इंडिया इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुँचाना है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों को बेहतर सेवा मिलेगी। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.85 किलोमीटर लंबी ये सड़क स्वदेशी तकनीक के व्यापक प्रयोग को दिखाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहल कचरे से संपदा बनाने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोची में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार, ओ माफ कीजिएगा, प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम किसान वाणी में हम आपके लिए लेकर के आते हैं नई नई जानकारियां जो कृषि जीवन और पशुपालक भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती।

0: आज भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी ही जानकारी जो दूध उत्पादन से संबंधित है। मित्रों, भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन प्रथम स्थान को लगातार बनाए रखने के लिए हमें जो प्रयत्न करने पड़ते हैं, जो प्रयास करने पड़ते हैं, यदि वो वैज्ञानिक सोच के साथ हों तो निश्चित ही यह आसान हो जाता है।
1: बिल्कुल, और आज हम जिस योजना की बात करने वाले हैं वो है पशुपालकों और किसानों को डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी देने वाली एक प्रमुख सरकारी योजना,
0: यानी कि हम बात कर रहे हैं कामधेनु डेयरी योजना के विषय में। मित्रों, जब दुग्ध उत्पादन की बात आती है तो उसमें सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है हमारे पशुपालक भाइयों का। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए चलाई जाने वाली एक प्रमुख सरकारी पशुपालन योजना। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें वित्तीय सहायता की बड़ी आवश्यकता होती है नीरा, तो इसके लिए बैंक से हम लोन ले सकते हैं।
1: वहीं अगर हम बात करते हैं आवश्यक दस्तावेजों की, तो आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र जिसे हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो और साथ में मोबाइल नंबर।
0: और मित्रों, ये भी ध्यान रखिए, जो SC और ST के लाभार्थी हैं, यदि वो स्वरोजगार खोलना चाहते हैं तो उन्हें 33% तक का अनुदान है, और जो अन्य वर्ग हैं उन्हें 25% तक का अनुदान कामधेनु डेयरी योजना पर मिल जाएगा। आवेदक के पास पशुपालन एवं डेयरी का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
1: और अमित, ये तो बात रही कामधेनु डेयरी योजना के बारे में, लेकिन आज के इस कार्यक्रम किसानवाणी में हम अपने सुनने वालों के लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी, दूध उत्पादन की नींव, हरे चारे की अधिकतम उत्पादन की तकनीकियाँ।
0: इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर RS बाना, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से।
2: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि दूध उत्पादन और हरे चारे के बीच क्या सीधा संबंध है? क्या हम ये कह सकते हैं कि बेहतर हरा चारा अधिक और गुणवत्तापूर्ण दूध की बुनियाद रखता है?
3: जी बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं। जैसे मानव पोषण में संतुलित भोजन का और संतुलित पोषण का महत्व है, वैसे ही हमारे पशुधन के लिए भी अच्छा दूध उत्पादन मिले या मांस के लिए पालन कर रहे हैं तो अच्छा उत्पादन मिलता रहे, उसके लिए आवश्यक है हमारे पशुधन का सही और संतुलित पोषण हो, जिसमें हरा चारा, सूखा चारा और जो सांद्र पदार्थ यानी कि जो पशु आहार हम देते हैं उसका समावेश आवश्यक है। और अगर तात्कालिक योजना आयोग अनुमान देखें, जो नीति आयोग हो गया, तो उसके अनुसार देश में लगभग 60% के आसपास सांद्र पदार्थ और हरे चारे की कमी है। चूंकि हमारा फोकस खाद्यान्न उत्पादन की तरफ रहा है तो जो चारा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से सेकेंडरी फसल की तरह किसान इसको लेता है, और जो हरा चारा है उसकी जितनी आवश्यकता है उससे आधा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही सूखा चारा है उसकी भी करीब करीब 20% के आसपास कमी है। तो ये जो कम पोषण हमारे पशुओं को मिलता है वो एक बड़ा कारण है जिससे कि हमारे पशुधन का दूध उत्पादन कम रहता है। अगर हम वैश्विक स्तर पर तुलना करें तो वो यूरोप में करीब 4000 लीटर है, अमेरिका में 7000 लीटर के आसपास है, इजराइल में और भी अधिक है, और हमारे जो पशुधन है उसमें 1000 लीटर के आसपास ही प्रति पशु है। और यदि हम कारणों का पड़ताल करें
2: जी,
3: तो उसमें पाते हैं कि हमारी जो मुख्य धान्य फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, उसके बाद किसान को चारे के लिए बहुत कम जगह रखता है। तो इसलिए हमें एक रणनीति पूर्वक ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए, ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जिससे हमें हर मौसम में हरा चारा मिलता रहे, बिना ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ाए और बिना ज्यादा प्रयासों के और बिना इन्वेस्टमेंट करे, ताकि किसानों की लागत भी नहीं बढ़े और चारे का उत्पादन भी अच्छा हो।
2: जी, तो डॉक्टर साहब आपने जो जानकारी दी हमारे किसान भाई बहनों को और वैश्विक परिदृश्य भी आपने दिखाया कि किस तरह से पूरी दुनिया में प्रति पशु हम कितना उत्पादन कर सकते हैं, तो उसके पास जितनी जमीन होती है तो कोशिश उसकी ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी पैदावार करें जिससे मुनाफा ज्यादा पाएं, लेकिन एक तरफ पशु जो है वो निग्लेक्टेड हो जाता है, तो वो कैसे इस सामंजस्य को बैठा सकता है और किस तरह से अपनी योजना बनाकर कृषि को कर सकता है?
3: इसके लिए एक तो जैसे कि सरकार भी प्रयासरत है और वैज्ञानिक भी आह्वान करते हैं मेड़ पर पेड़, और एक बहुवर्षीय घासें हैं उनका भी समावेश करना होगा आपकी फसल प्रणालियों में और फसल पद्धतियों में। साथ ही साथ हमें फसल चक्र अपनाना होगा, हर बार हर खेत में धान्य फसलें, एक ही तरह की फसलें, या कभी कभी हम

0: फसलें ले लेते हैं,
1: जी
0: हमें चारे वाली फसलें लेनी होगी। जब हम खेती में टिकाऊपन या सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो जो चारे वाली फसलें हैं, विशेषकर रबी में जो चारे वाली फसलें अभी
1: जी
0: आने वाले
1: जी
0: मौसम में लगाएंगे, उनका बड़ा रोल है। जो गंगा सिंधु के मैदानी क्षेत्र है, जिसमें करीब करीब 16 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हर वर्ष धान के बाद गेहूं लेते हैं, एक ही तरह की दोनों किस्में हैं, और उनमें खरपतवार, कीट, रोग, व्याधियां, ये सब हर वर्ष और एक ही गहराई से पोषक तत्वों का अवशोषण करता रहता है। तो जो हमारी जमीनें हैं वो बंजर बनने की तरफ अग्रसर हो रही है। तो इसमें हमें हरे चारे वाली जो फसलें हैं उनका फसल चक्रों में समावेश करना जरूरी है। रबी के मौसम में रिझका है, बरसीम है, जई है, ऐसी
1: जी
0: फसलों का अगर समावेश करते हैं तो मृदा की भौतिक दशा में तो सुधार होता ही है, हमारे जो किसान हैं उनको हरा चारा भी मिलता है।
1: बिल्कुल। तो जैसे बारिश का मौसम है, तो
0: जी
1: क्या आप समझते हैं कि ये उपयुक्त समय है, और इस समय कौन कौन सी हरे चारे को लेकर वो किस तरह से इसमें किसान भाई हमारे
0: जी
1: आगे बढ़ सकते
0: अभी
1: हैं?
0: इस समय तो जो हरे चारे वाली फसलें हैं उसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मकचरी है, लोबिया है, ग्वार है, इत्यादि फसलें लेते हैं।
1: जी
0: जैसे ही सितंबर के अंत में जाएंगे या अक्टूबर शुरू होगा, उसके बाद बिजाई का समय हो जाता है रबी की चारा वाली
1: जी
0: फसलों का। और बिजाई के लिए जरूरी है सही बीज का चुनाव, ऐसी किस्मों का चुनाव जो आपके क्षेत्र के लिए संस्तुत हो और अधिक उत्पादन दें, गुणवत्तापूर्ण चारा भी दें जिसमें ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व हो।
1: जी
0: तो सही समय आ गया है अभी चारे वाली फसलों का बीज, अच्छी किस्मों का बीज आप खरीद लें। और बीज खरीदने में ये जरूर ध्यान रखें, किस्म तो अच्छी हुई और वो विश्वसनीय स्रोत से खरीदें। ICAR का संस्थान है, केंद्रीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान हमारा
1: जी
0: झांसी में, वहां से, या ICAR के संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय बीज निगम या राज्यों के बीज निगमों से आप बीज खरीद
1: जी
0: सकते हैं। बाजार से भी अगर आप उन्नत किस्मों का बीज खरीदते हैं तो उसका पक्का बिल जरूर लें और उसका टैग देख कर फिर ही खरीदें, ताकि आप कई बार खराब बीज और जैसी कुछ अनहोनी घटनाएं हो
1: जी
0: जाती है
1: जी
0: उनसे बचा जा सके। और इस तरह के खराब बीज की और इस तरह की शिकायतें हैं वो चारे वाली किस्मों में कई बार देखने को मिली है, तो इनसे ध्यान रखें, विश्वसनीय स्रोत से ही चारा
1: बिल्कुल। तो
0: खरीदें।
1: डॉक्टर बाना, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान बहन भाइयों को दिया। तो आपने बिजाई की बात की, और यहाँ पर सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन की भी बात कर लेते हैं कि वो कितनी मात्रा में या किस तरीके से किसान को लेना चाहिए।
0: जी चारे वाली फसलों में सिंचाई तो आवश्यक है रबी के
1: जी
0: मौसम में, तो खरीफ में बिना सिंचाई के भी बारानी क्षेत्रों में भी, और जो सूखा सहन करने वाली फसलें हैं वो भी मिल जाती है। पर आपकी अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से, यदि आपके सही सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो बरसीम की आप फसल ले सकते हैं। जो कम सिंचाई के सीमित साधन हैं उन क्षेत्रों में आप रिज का ले सकते हैं, लूसर्न जिसको बोलते हैं। तो रिज के की बहुवर्षीय किस्मों का चयन करें तो आपको लगातार 3 साल तक हरा चारा आपको मिलता रहेगा। और सिंचाई प्रबंधन की जहां तक बात है, पहले तो बिजाई करते ही एक बहुत हल्की सिंचाई देनी है।
1: जी
0: उसके बाद, क्योंकि शुरू में थोड़े दिन तापमान अधिक रहता है, तो निरंतर सिंचाई करनी है। जो हल्की मिट्टियां हैं वहां पे 3-4 दिन से, और जहां भारी मिट्टियां हैं, अच्छा पानी ठहर सकता है,
1: जी
0: वहां पे 5-6 दिन के अंतराल में शुरू में 2-3 सिंचाई करनी है, ताकि आपकी जो फसल है वो अच्छी हो जाए। और उसके बाद जैसे ही ठंड का समय आ जाता है तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, तो आप जो सिंचाई का अंतराल है वो लगभग 1 सप्ताह जो हल्की मिट्टियां हैं, और जो भारी
1: जी
0: मिट्टियां हैं वहां पर 10 से 12 दिन या कभी कभी 2 सप्ताह का अंतराल से आप सिंचाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि
1: जी
0: कई बार ये हमने देखा है चारे वाली फसलों में, उनको लगता है कि जितनी बार सिंचाई देंगे वो उतना ही ज्यादा
1: जी
0: बढ़वार होगी, परंतु ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, जड़ सड़न और तना गलन, ये रोग हो जाते हैं। तो सिंचाई में ये जरूर ध्यान रखना है कि जब खेत सूख जाए और अच्छे से पानी की आवश्यकता
1: जी
0: हो,
1: जी
0: यानी कि पौधे दोपहर के समय हल्की सी मुरझन आना शुरू हो, तभी सिंचाई दें, आवश्यकता से अधिक सिंचाई नहीं देनी है।
1: और यहाँ पे डॉक्टर साहब आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। किसान अक्सर चारे को बहुत देर से काटते हैं, और हरे चारे की कटाई की सही अवस्था क्या होती है ताकि उसको उसके लिए उत्पादन और पोषण दोनों बेहतर तरीके से मिल
0: जी
1: सकें?
0: चारा फसलों में कटाई प्रबंधन तो बहुत ही आवश्यक है, और वैज्ञानिक तरीके से कटाई प्रबंधन का तात्पर्य ये है कि ऐसे समय कटाई करना ताकि उत्पादन भी अच्छा मिले और गुणवत्ता भी अच्छी रहे। यदि कई बार जल्दी कटाई कर देते हैं तो क्या होता है कि रेशा तो कम रहता है परंतु आपको उत्पादन बहुत कम मिलता है। और बहुत देरी से कटाई
1: जी
0: करने से जो पोषक तत्व होते हैं वो कम होते जाते हैं, और वो फसल ज़्यादा मेच्योर होने से उसमें रेशे की मात्रा बढ़
1: जी
0: जाती है। तो

0: पशु उसको उतना चाव से भी नहीं खा पाते और पोषक तत्वों की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये जैसे रिज का है, बरसीम है, या आपका ये खरीफ की भी चारे वाली फसलें हैं,
1: जी
0: ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब की पहली कटाई 50-55 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए, और अलग अलग फसल के अनुसार जो दूसरी और तीसरी कटाई, जो बहुवर्षीय खरीफ की हम बात करें तो जो बहुवर्षीय चारा फसलें हैं, तो लगभग 1 महीने के अंतराल पर इन पे जो दूसरी और तीसरी कटाई करें, और कटाई करते समय ये ध्यान रखें कि 7 से 8 सेंटीमीटर
1: जी
0: ऊंचाई से कटाई करें। और जो धान्य वर्गीय चारे वाली खरीफ की फसलों की पहले मैं बात करूंगा, इसमें 15 से 20 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की दर से यूरिया से दे लेते हैं, तो पुनः वृद्धि अच्छी होती है। तो ये थोड़ा सा कटाई की ऊंचाई का जरूर ध्यान रखें, और तुरंत पानी दे दें यदि मानसून में देरी आती है तो। रबी के मौसम में भी यही आपको ध्यान रखना है, हल्की सिंचाई करनी है, शुरुआती अवस्था में 2-3 सिंचाई बारंबार करनी है, उसके बाद आपको सिंचाई थोड़ा कम कर देनी है ताकि ठंड के मौसम में वैसे भी पानी भाप
1: जी
0: बनकर
1: जी
0: ज्यादा नहीं उड़ता, तो ये इनका ध्यान रखना है। और कटाई करने के बाद रबी की फसलों में भी सिंचाई देनी है, और
1: जी
0: कटाई की ऊंचाई इसलिए महत्वपूर्ण है कि पुनः वृद्धि है वो ज्यादा अच्छी हो। तो बिल्कुल सटा के जमीन से कटाई कर लेता है किसान ताकि उसको लगता है कि ज्यादा उत्पादन मिल रहा है, परंतु वो अगली कटाई में उत्पादन में देरी हो जाती है, तो उसको 7 से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई से ही कटाई करें तो उत्पादन अच्छा मिलेगा, चारे की गुणवत्ता अच्छी रहेगी, और किसी प्रकार के जो रोग होते हैं उनका प्रकोप भी कम होता है।
1: जी और डॉक्टर बाना, चारा फसलों में खरपतवार और कीट भी एक बड़ी समस्या आती है,
0: जी
1: तो इसके नियंत्रण और कीट प्रबंधन के लिए किसान किन सुरक्षित और प्रभावी उपायों को अपना सकता है?
0: चारा फसलों में अमूमन एक तो सबसे पहले किसान सोचता है कि कोई भी खरपतवार उगते हैं तो उनको लगता है कि हाँ हरा पदार्थ ही मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता खरपतवार का, और वो ध्यान नहीं दे पाते हैं कई बार,
1: जी
0: और उसको नेग्लेक्ट करते हैं, और उससे उत्पादन में नुकसान होता है, चारे की गुणवत्ता में नुकसान होता है। और चारा वाली फसलों में क्योंकि पशुओं को हम खिलाते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि कोई भी रोगों का प्रकोप
1: जी
0: हो, कीटों का प्रकोप हो, खरपतवारों का प्रकोप हो, दवाई डालते ही पशुओं को खिलाने के लिए नहीं देना है, नहीं तो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है।
1: जी
0: तो जो रसायनों का सुरक्षित उपयोग करें, जहाँ तक खरपतवार प्रबंधन की बात है, जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यानी कि बिजाई के तुरंत बाद अंकुरण से पहले ही यदि आप खरपतवार नाशी जैसे पेंडीमिथालिन है उसका उपयोग करें तो खरपतवारों का जमाव ही नहीं होता, और जो फसल है वो शुरू से ही खरपतवार मुक्त रहती है। तो जो अगले मौसम के बिजाई की तैयारी कर रहे हैं तो आप पेंडीमिथालिन रिज का और बरसीम में डाल सकते हैं, और उसकी आप जो खरपतवार मुक्त फसल को रख सकते हैं। तो इस तरह से बाद में आपको खरपतवार नाशी है उनका उपयोग नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से कीटों से फसल को बचाने के लिए भी आपको कीटनाशियों से यदि उपचारित करना है तो बीज को उपचारित करके ही बिजाई करें, ताकि बहुत कम मात्रा में रसायन का उपयोग करते हुए आप अच्छी और कीटों से मुक्त फसल है वो रख सकते हैं। और दूसरा, सिंचाई की बारंबारता को कम रखने से भी कीटों का प्रकोप कम होता है। नाइट्रोजन की खुराक संतुलित मात्रा में ही दें, अधिक मात्रा में पानी हो या नाइट्रोजन हो या उर्वरक हो उनका
1: जी
0: उपयोग हानिकारक हो जाता है, तो वो कीटों को आकर्षित करता है।
1: जी हरे चारे के भंडारण के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार किसान को इसकी जरूरत होती है, तो उसमें उसका वो मैनेजमेंट या प्रबंधन किस तरीके से करे?
0: जैसे कि आप किसान की भाषा में सुना होगा कि चारे का अचार,
1: जी
0: साइलेज बना के
1: जी
0: उसका उपयोग करते हैं, और या हे बनाकर सुखा कर भी जो घास होती है उसको खिला के उच्च पोषक तत्वों से भरपूर आप चारा खिला सकते हैं। एक तो ये तरीका हे बनाकर कर सकते हैं, छायादार स्थान पर जो चारा है उसको आप सुखा लें और उसके बाद खिलाएं। बहुत धूप में तो पोषक तत्व का नुकसान हो जाता है, चारे को इकट्ठा करके काम में ले सकते हैं, पर उसमें यही जरूर ध्यान रखना है यदि साइलेज बनाते हैं तो जो पुष्पावस्था होती है यानी कि जो फ्लावरिंग की स्टेज होती है फसल की,
1: जी जी
0: उसी समय उसकी फसल को कटाई करें। ज्यादा देरी से कटाई करने से खराब गुणवत्ता का साइलेज आपको
1: हो सकता
0: मिलता
1: है
0: है।
1: डॉक्टर बाना, हरे चारे का भंडारण भी हो गया, अब बात आती है कि उस हरे चारे को कैसे पशु को देना है। तो अगर हम एक संतुलित और पौष्टिक आहार की बात करें, तो हरे चारे के साथ हम और क्या-क्या चीजें पशु को दे सकते हैं कि वो संतुलित आहार बन जाए और पौष्टिकता तो बढ़े ही, साथ में जो दूध की गुणवत्ता है और दूध की जो उत्पादकता है वो भी किसान को ज्यादा मिले?
0: अच्छा, दूध उत्पादन के लिए हरा चारा, सूखा चारा, सांद्र पदार्थ, इनका मिश्रण तो जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पशु का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। ऐसा नहीं है कि हरा चारा अच्छा होता है तो हम सिर्फ हरा चारा ही खिलाते रहें और पशु का पाचन तंत्र हम खराब कर दें। तो एक सही अनुपात में लगभग 60 से 70%

0: चारा और 15-20% से लेकर 30% तक हरा चारा। तो सूखा और हरा चारा का ऐसा अनुपात 2/3 के आसपास सूखा चारा और लगभग 1/3 के आसपास हरा चारा। और उसके बाद जो सांद्र पदार्थ हैं वो भी संस्तुत मात्रा में, जिसमें मिनरल मिक्सचर है या जो भी दाना आप खिलाते हैं, पशु आहार आप खरीद के खिलाते हैं, वो इनका एक सामंजस्य आवश्यक है ताकि पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे, पाचन तंत्र भी ठीक रहे और उत्पादन भी अच्छा मिले। और स्वस्थ पशु ही अच्छे दूध उत्पादन की आधारशिला है। हम आज दूध उत्पादन में एक नंबर पर हैं, परंतु हमें और आगे जाना है और जो किसानों की खेती है उसको लाभप्रद बनाने में पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और जो विकसित भारत का हमारा टारगेट
1: जी
0: है किसानों की आय को बढ़ाने का, किसानों की आय को दुगुना करने का, उसमें पशुपालन बड़ा योगदान दे सकता है। तो उसमें यदि आप सही तरीके से पशुओं का पोषण सही करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित तौर से जो दूध उत्पादन है वो फायदे का सौदा साबित हो सकता है।
1: बिल्कुल, इससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। डॉक्टर बाना, आपने हरे चारे के उत्पादन से लेकर उसकी गुणवत्ता, कटाई, भंडारण और पशु के आहार में उसके सही उपयोग तक बहुत उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: तो अभी आप सुन रहे थे दूध उत्पादन की नींव, हरे चारे की अधिकतम उत्पादन की तकनीकियों पर यह जानकारी।
3: और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर RS बाना, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से।
2: तो अमित, जानकारी के बाद अब समय है मनोरंजन का, तो चलिए अब सुनवाते हैं ये रागिनी।

0: तो मित्रों, ये आप सुन रहे थे रागनी। और रागनी के बाद आइए, कृषि जीवन या पशुपालन जीवन में हम जानते हैं कि मौसम का कितना महत्व है, क्योंकि मौसम के पूर्वानुमान से कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई बहनों को अपनी फसल में कार्य करने का एक अन्य अवसर प्राप्त हो जाता है। यदि हम बात करें आज के मौसम की, तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए कम दबाव के क्षेत्र के कारण दिल्ली NCR और उत्तर भारत के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है। आसमान में आंशिक से लेकर घने बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है।
1: वहीं अगर हम बात करते हैं तापमान की, तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।
0: तो नीरा, मौसम के बाद हमारे किसान भाइयों के लिए आवश्यक हो जाती है वैज्ञानिकों की कृषि सलाह।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कृषि सलाह के अनुरूप किए गए कार्य से हमारे किसान भाई अधिकतम लाभ ले सकते हैं और अपने लागत मूल्य को कम कर सकते हैं
1: जी।
0: तो वही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के द्वारा जो हमारे किसान भाइयों को सलाह दी गई है, उसकी जानकारी दे देते हैं कि वर्तमान में यदि हल्की से मध्यम वर्षा या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान हो, तो खड़ी फसलों में, चाहे वो दालें हों या मक्का हो, और सब्जियों की नर्सरी में किसी भी प्रकार का कीटनाशक या रासायनिक छिड़काव बिल्कुल ना करें, और ये भी ध्यान रखें कि खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंध हो।
1: और वहीं कीटों की संख्या पर निगरानी और नियंत्रण रखने के लिए किसान अपने खेतों में रात के समय लाइट ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं।
0: भाई, हमारे किसान भाइयों की धान की फसल इस समय खेतों में लहरा रही है, तो जो धान के किसान हैं उनके लिए विशेष सलाह हमारे वैज्ञानिकों की है कि इस समय धान की फसल में जो बालियां निकलने की शुरुआती अवस्था है, ऐसे में तना छेदक है या फेरोमोन ट्रैप है, भूरा पादप फुदका जैसी बीमारियां लगने की संभावना होती हैं, तो वही फसल की नियमित निगरानी करें, और यदि तना छेदक कीट का प्रकोप आर्थिक देहरी पर दिखाई दे, तो उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए आप वैज्ञानिक सलाह का ही प्रयोग करें।
1: बात करें सब्जियों और अन्य फसलों की, तो अगेती मटर की बुआई के लिए खेतों की तैयारी करना शुरू कर दें, इसकी सलाह दी जाती है। और साथ ही साथ गाजर की बुआई मेड़ों पर या उठी हुई क्यारियों पर की जा सकती है।
0: नीरा, कृषि सलाह हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे, कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है। कार्यक्रम किसान वाणी जिस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है,

0: निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को उसका लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल, और ये कार्यक्रम खास तौर पर आपके लिए हम इसीलिए लेकर आते हैं ताकि जानकारी पूर्ण रूप से आप तक पहुंचे, और साथ ही साथ आपके सुझाव भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं feedback@gmail.com पर।
0: मित्रों, आज के लिए केवल इतना ही। दीजिएगा अनुमति कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। 7:35 हुए हैं और अब सुनते हैं गजल।

0: अभी आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स। शाम के 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू। सम्मेलन के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के कारण दिल्ली में कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में शेख सराय में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी गई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों के संघ के 48वें वार्षिक सम्मेलन में कहा, महिलाओं का स्वास्थ्य भारत की मानव पूंजी और भविष्य में निवेश है। और दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं कल सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्व

0: सर्वसम्मति से एडअप किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नाविक वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, फिर भी कठिन समय में उन्हें समय पर सहायता नहीं मिल पाती है।
0: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
0: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। शिखर सम्मेलन के पहले दिन अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सभी तरह के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई और आतंकियों की सीमा पार आवाजाही, वित्त पोषण तथा सुरक्षित पनाह पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने राजधानी के सौंदर्यीकरण और सजावट के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। परिषद ने प्रमुख गोल चक्करों, होटलों और सार्वजनिक स्थलों को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया है। सजावटी रोशनी से NDMC क्षेत्र के प्रमुख स्थान जगमगा रहे हैं, जबकि सजे हुए उद्यान और हरियाली राजधानी की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। इन प्रयासों से नई दिल्ली को स्वच्छ, हरा भरा और आकर्षक रूप दिया गया है, ताकि ब्रिक्स सम्मेलन में विदेशी मेहमानों के सामने राजधानी की बेहतर छवि प्रस्तुत की जा सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हों, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और कल अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के मद्देनजर दिल्ली में कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। ब्रिक्स सम्मेलन के कारण आज रात 9 बजे तक 22 स्थानों पर यातायात में बदलाव और 35 से अधिक मार्गों पर नियंत्रित आवागमन रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड सहित आसपास के अन्य प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों से यात्रा के लिए पहले अतिरिक्त समय लेकर चलने और सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही लोगों से परिवर्तित मार्गों और यातायात संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन और आवश्यक सेवा वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दिया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं बारिश, वाहनों के खराब होने और गुरुपर्व के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भी कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित है। मोतीबाग से एम्स के बीच दोनों कैरिजवे, सराय काले खान स्थित बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु, वंदे मातरम मार्ग और मुख्य रोहतक रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है। भारत अफगानिस्तान मैच कल शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक होगा। दर्शकों की आवाजाही के कारण बहादुर शाह जफर मार्ग, DDU मार्ग और

0: कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और उनका सहयोग करने को कहा गया है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में संभावित रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए कल सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगी। इससे परीक्षा देने वाले छात्रों और आम लोगों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी। दिल्ली मेट्रो ने यह भी बताया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो नवीनतम जानकारी के लिए दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखें। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की बेटी जहरा पेजेशकियन ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय और ब्रिक्स बाजार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देखा। इस संग्रहालय में भारत के प्रधानमंत्रियों और देश पर उनके प्रभाव की झलक मिलती है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज नई दिल्ली में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। देश भर में 23 केंद्रों पर आयोजित इस समारोह में श्री मेघवाल ने नए योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने देश में किए जा रहे कानूनी सुधारों और शासन व्यवस्था में इनके महत्व का उल्लेख किया।
1: इसमें हमने 1725 ऐसे पुराने कानून जिसकी अब आवश्यकता नहीं उनको हमने समाप्त किया। 40,000 से अधिक जो कंप्लायंस बर्डन है उनको कम किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस देने का काम किया। इसी रिफॉर्म जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2026 के माध्यम से 79 सेंट्रल एक्ट्स की 784 प्रोविजंस में बदलाव किया गया। 717 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, छोटी प्रोसीजरल गलती के लिए अननेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन नहीं बल्कि प्रोपोर्शनेट रेगुलेशन और वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ावा देना ये हमारी अप्रोच का हिस्सा है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई आज वित्त समिति की बैठक में शेख सराय में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को इसका निर्माण कार्य 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य दिया है। लगभग 6,300 वर्ग मीटर भूखंड पर बनने वाली इस प्रयोगशाला का कुल निर्मित क्षेत्र 18,300 वर्ग मीटर होगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस परियोजना के लिए 151,81,00,000 रुपए बजट को भी स्वीकृति दी गई है। नई प्रयोगशाला से दक्षिण पूर्व और मध्य दिल्ली के जिलों को विशेष लाभ मिलेगा। यह रोहिणी स्थित मौजूदा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भी अतिरिक्त वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से गृह विभाग और दिल्ली पुलिस को नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। वहीं दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नई क्षेत्रीय प्रयोगशाला से मामलों से जुड़े साक्ष्यों की और फोरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम अधिक तेज और सुगम होगा, जिससे आपराधिक मामलों के समय पर निपटारे में मदद मिलेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सस्ते दाम पर वॉशिंग मशीन के पुर्जे देने के नाम पर गुजरात के एक व्यक्ति से 1,50,000 रुपए ठगे थे। वहीं दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5,100 क्वार्टर अवैध शराब और अपराध में इस्तेमाल होने वाले एक पिकअप तथा स्कूटी भी बरामद की है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक अन्य अवैध तस्करी मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों के संघ AOGD के 48वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य भारत की मानव पूंजी और भविष्य में निवेश है। श्री संधू ने मातृ स्वास्थ्य देखभाल, समय पर जांच, कैंसर की रोकथाम और जीवन के हर चरण में समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए चिकित्सा क्षेत्र से AI, डिजिटल स्वास्थ्य और अनुसंधान का उपयोग बढ़ाने का आह्वान भी किया। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज जनता दरबार में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं, जरूरतों और सुझावों पर संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ विचार कर समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि जन प्रतिनिधि का

नेतृत्व जनता की समस्याएं सुनना और उनके समाधान के लिए तत्परता से कदम उठाना है। इसके अलावा श्री सिंह ने आज बाजीतपुर ठाकरान स्थित दादा मालदेव मंदिर परिसर में ग्रामीणों से बातचीत की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन के लिए रवाना हुए, जहां वो कल से शुरू हो रहे 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होंगे। 18 सितंबर तक चलने वाले सम्मेलन का मुख्य विषय बदलती विश्व व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों और सिख समुदाय को लोगों की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गुरबाणी हमें सेवा, सिमरन, समानता और सर्वदा भला का मार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं पीढ़ियों से समाज को प्रेम, करुणा और भाईचारे से जोड़ती आई हैं। राजधानी दिल्ली में आज कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। विभाग ने बताया है कि कल राजधानी में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू। सम्मेलन के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के कारण दिल्ली में कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में शेख सराय में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी गई और दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं कल सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है मुशायरा।
1: सभी सामईन को मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, किसी भी जबान की शायरी में एक सिंफ तंज व मिजाह की भी होती है। उर्दू अदब में तंज व मिजाह को एक ख़ास अहमियत हासिल है। लफ्जी एतबार से तंज के मानी इशारे किनाए में इस तरह बात कहने के हैं कि बात भी कह दी जाए और बुरी भी ना लगे। इसमें मिजाह की चाशनी से लताफत पैदा की जाती है। तंज व मिजाह की शायरी दरअसल समाजी इस्लाह, इंसानी रवैयों की अक्कासी और ज़हनी तफरीह का एक इंतहाई अहम और ख़ूबसूरत ज़रिया है। तंज व मिजाह की शायरी बैक वक्त कई पहलू रखती है। इसमें एक तरफ तो ज़िंदगी की तलखियों को कहकहे में उड़ाने की सकत होती है और दूसरी तरफ माशरे की नाहमवारियों पर चोट करने का फ़न छुपा होता है। आइए सामईन सुनते हैं ये मिजाहिया मुशायरा। निजामत फरमा रहे हैं जनाब अरशद नदीम।
2: आज के इस पुरबहार मुशायरे में हिंदुस्तान के नामवर, मोतबर और मुफ्तखर शुराय कराम तशरीफ़ रखते हैं। इनमें जनाब अहमद अलवी साहब, जनाब अदील अहमद आदिल साहब, डॉक्टर आसिम पीरजादा और ये हकीर फ़कीर सरापा तकसीर अरशद नदीम आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करेंगे। सबसे पहले मैं जनाब आसिम पीरजादा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह अपने कलाम में बलागत निज़ाम से महसूस और मुस्तफ़ीद फरमाएँ।
3: हजरात ग्रामी, चंद कतात से अपनी बात शुरू करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए।
2: इरशाद
4: इरशाद अता करें।
3: अर्ज़ करता हूँ कि जो तलख जायक़े थे सभी कंद हो गए।
2: वाह।
3: जो तलख जायक़े थे सभी कंद हो गए, पैदा जो खैर से कई फर्जंद हो गए।
2: वाह क्या बात।
3: पैदा जो खैर से कई फर्जंद हो गए, रस्ते भी सब फिरार के फिर बंद हो गए, कुछ ऐसे मसले भी खड़े चंद हो गए। कुछ ऐसे मसले भी खड़े चंद हो गए, घर पर कभी जो बैठ गए हम नमाज में, घर पर

0: कभी
1: जो
0: जो
1: बैठ
0: बैठ
1: गए
0: गए
1: हम
0: हम नमाज
1: नमाज
0: में, बच्चे उछल पड़े थे जिबीने नियाज
1: में।
0: में।
1: अरे क्या बात है, क्या बात है,
0: बच्चे
1: वाह वाह
0: उछल
1: वाह वाह
0: पड़े थे जिबीने
1: वाह वाह वाह
0: नियाज
1: वाह,
0: में,
1: क्या कहने हैं,
0: घर
1: और
0: पर
1: बढ़िया,
0: कभी जो बैठ गए हम नमाज में, बच्चे उछल पड़े थे
1: वाह
0: जिबीने
1: वाह वाह
0: नियाज
1: वाह
0: में। और 6 मिसरे और मुलायजा
1: जी, अता
0: फरमाइए।
1: फरमाए
0: अर्ज करता हूँ कि दावतों ने रोज की, अलवी सर,
1: जी,
0: दावतों ने रोज की
1: रोज
0: ऐसा किया मैदा खराब।
1: वाह,
0: दावतों ने रोज
1: रोज
0: की
1: ऐसा
0: ऐसा
1: किया
0: किया
1: मैदा
0: मैदा
1: खराब।
0: खराब, हाल से बेहाल हूँ इस हाल के हाथों जनाब,
1: वाह,
0: हाल से
1: बेहाल
0: बेहाल
1: हाल हूँ,
0: हूँ इस हाल के हाथों जनाब, उठ रहे हैं पेट में तूफान मेरे बेहिसाब,
1: वाह,
0: उठ रहे हैं
1: पेट
0: पेट
1: में
0: में तूफान मेरे बेहिसाब, सूरते रहमत जो थी नेमत बनी है एक अजाब,
1: क्या बात है,
0: जो
1: थी
0: सूरते रहमत जो थी नेमत
1: बनी
0: बनी
1: वो
0: है एक
1: बे,
0: अजाब,
1: वाह
0: अपने मैदे में मियाँ राशन का मैं कोटा लिए,
1: वाह,
0: अपने
1: अपने
0: मैदे
1: मैदे
0: में
1: में
0: मियाँ
1: मियाँ
0: राशन
1: राशन
0: का
1: का
0: मैं
1: मैं
0: कोटा
1: कोटा लिए,
0: लिए, सूए सहरा जा रहा हूँ हाथ
1: हाथ
0: में
1: में लोटा
0: लोटा लिए,
1: लिए, वाह वाह वाह वाह
0: सूए
1: वाह,
0: सहरा जा
1: और क्या
0: रहा
1: कहने हैं,
0: हूँ
1: क्या कहने हैं,
0: हाथ
1: बहुत
0: में
1: वाह वाह
0: लोटा
1: वाह
0: लिए,
1: वाह वाह,
0: अपने मैदे में मियाँ राशन का मैं कोटा लिए,
1: बहुत
0: वाह
1: वाह वाह,
0: वाह,
1: शायरी, वाह वाह वाह, बेहतरीन,
0: सूए सहरा जा रहा हूँ हाथ
1: हाथ में
0: में
1: लोटा
0: लोटा
1: लिए,
0: लिए। और 6 मिसरे और मुलायजा फरमा लीजिए।
1: निशान,
0: था कौन जो बनकर वहाँ गुलफाम ना आया,
1: वाह क्या
0: था
1: बात है,
0: कौन जो बनकर
1: वहां
0: वहां
1: गुलफाम
0: गुलफाम ना
1: ना आया,
0: आया, कूचे में तेरे इश्क को आराम ना
1: ना आया,
0: आया,
1: क्या बात है, क्या
0: कूचे
1: बात
0: में तेरे
1: है,
0: इश्क
1: इसमें
0: को
1: आराम ना
0: आराम ना
1: आया,
0: आया, वो आज भी छत पर जो सरे शाम ना आया,
1: वो
0: वो आज
1: आज भी
0: भी
1: छत
0: छत
1: पर जो
0: पर
1: जो
0: जो
1: सरे
0: सरे
1: शाम
0: शाम
1: ना
0: ना
1: आया,
0: आया, दीदार का अरमान कोई काम ना
1: ना आया,
0: आया,
1: क्या बात है, क्या बात
0: दीदार
1: है,
0: का अरमान
1: कोई काम
0: कोई
1: ना
0: काम
1: आया,
0: ना आया, आशिक न कहीं खींच ले सब टांग पकड़ कर,
1: वाह वाह, कहीं
0: आशिक न कहीं खींच
1: खींच
0: ले
1: ले
0: सब टांग
1: पकड़
0: पकड़
1: कर,
0: कर, इस वास्ते माशूक लबे बाम ना
1: अरे वाह वाह
0: आया,
1: वाह वाह वाह, वो क्या
0: इस
1: कहने हैं,
0: वास्ते आशिक न
1: कहीं
0: कहीं खींच
1: खींच
0: ले
1: ले
0: सब टांग पकड़
1: पकड़ कर,
0: कर, इस वास्ते माशूक लबे बाम ना
1: अरे वाह वाह वाह वाह वाह, वो
0: आया,
1: क्या
0: इस
1: कहने हैं,
0: वास्ते
1: वो क्या क्या तरकीबें
0: माशूक
1: आजमाई हैं, वाह वाह वाह वाह
0: लबे
1: वाह
0: बाम ना आया,
1: वाह वाह वाह
0: आशिक
1: वाह, क्या
0: था
1: बात है,
0: कौन जो बनकर वहां
1: वहां गुलफाम
0: गुलफाम ना
1: ना आया,
0: आया, कूचे में तेरे इश्क को आराम ना
1: ना आया,
0: आया,
1: क्या बात है, क्या
0: कूचे
1: बात
0: में तेरे
1: है,
0: इश्क
1: इसमें
0: को
1: आराम ना
0: आराम ना
1: आया,
0: आया, वो आज भी छत पर जो सरे शाम ना आया,
1: वो
0: वो
1: आज
0: आज
1: भी
0: भी
1: छत
0: छत
1: पर जो
0: पर
1: जो
0: जो
1: सरे
0: सरे
1: शाम
0: शाम
1: ना
0: ना
1: आया,
0: आया,
1: क्या बात
0: दीदार
1: है,
0: का अरमान
1: कोई काम ना
0: कोई काम
1: आया,
0: ना आया, आशिक न कहीं खींच ले सब टांग पकड़ कर,
1: वाह, कहीं
0: आशिक न कहीं खींच
1: खींच ले
0: ले
1: वो
0: सब टांग पकड़
1: पकड़ कर,
0: कर, इस वास्ते माशूक लबे बाम ना
1: अरे वाह वाह वाह वाह वाह, वो
0: आया,
1: क्या
0: इस
1: कहने हैं,
0: वास्ते। और 4 मिसरे और मुलायजा
1: निशान
0: फरमाइए
1: निशान,
0: कि मैं यूं लुत्फ लेता हूँ गिरदाब में,
1: मैं यूं लुत्फ लेता
0: मैं
1: हूँ
0: यूं
1: गिरदाब में,
0: लुत्फ लेता हूँ
1: गिरदाब
0: गिरदाब में,
1: में,
0: मुकद्दर में है मेरे गिरदाब बस,
1: वाह,
0: मुकद्दर में है
1: मेरे
0: मेरे
1: गिरदाब
0: गिरदाब
1: बस,
0: बस, मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं,
1: वाह,
0: सलामत रहे मेरे अहबाब
1: अरे
0: बस,
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात,
0: मुझे दुश्मनों की
1: जरूरत
0: जरूरत
1: नहीं,
0: नहीं, सलामत
1: सलामत रहे
0: रहे
1: मेरे
0: मेरे
1: अहबाब
0: अहबाब
1: बस,
0: बस, मैं यूं लुत्फ लेता हूँ गिरदाब में, मुकद्दर में है मेरे गिरदाब बस,
1: वाह,
0: मुकद्दर में है
1: मेरे
0: मेरे
1: गिरदाब
0: गिरदाब बस,
1: बस,
0: मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं,
1: वाह,
0: सलामत रहे मेरे अहबाब
1: अरे
0: बस,
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहें,
0: मुझे दुश्मनों की
1: जरूरत
0: जरूरत
1: नहीं,
0: नहीं, सलामत
1: सलामत रहे
0: रहे
1: मेरे
0: मेरे
1: अहबाब
0: अहबाब
1: बस,
0: बस। और
1: वाह
0: 4 मिसरे मुलायदा फरमाइएगा कि शायरी की शामते आमाल है,
1: वाह, शायरी की
0: शायरी
1: शामत
0: की
1: आमाल,
0: शामते
1: शामत,
0: आमाल है, फन में कच्चा फन का माहिर हो गया,
1: वाह वाह
0: फन में
1: वाह,
0: कच्चा
1: फन का
0: फन
1: माहिर हो
0: का
1: गया,
0: माहिर हो गया, बढ़ गई सब्जा तराशी इस कदर,
1: वाह वाह,
0: बढ़ गई
1: सब्जा
0: सब्जा
1: तराशी इस
0: तराशी
1: कदर,
0: इस कदर, एक घसियारा भी शायर हो
1: वाह वाह
0: गया,
1: वाह वाह वाह, क्या
0: बढ़
1: बात है,
0: गई
1: क्या बात है, सब्जा
0: सब्जा
1: तराशी का
0: तराशी
1: जवाब नहीं, वाह वाह वाह
0: इस
1: वाह,
0: कदर,
1: हाँ वाह
0: बढ़
1: वाह वाह,
0: गई
1: एक घसियारा भी
0: एक
1: शायर,
0: घसियारा भी शायर हो
1: वाह क्या
0: गया।
1: कहने, क्या कहने,
0: एक गजल के चंद शेर मुलाहजा फरमाइए। अर्ज करता हूँ कि देखिए कि अंदाजे करीमाना, अंदाजे करीमाना जरा और जरा और,
1: वाह,
0: अंदाजे
1: करीमाना, जरा
0: करीमाना
1: और जरा और,
0: जरा
1: जरा और
0: और जरा और, ऐ साकिए मैं खाना
1: जरा और,
0: जरा
1: जरा और,
0: और
1: क्या बात है,
0: जरा
1: क्या बात
0: और,
1: है, वाह।
0: अंदाजे करीमाना।

0: खुश नहीं हमसे हमारी पत्नी।
1: वाह क्या
2: कहते। और एक गजल
0: मतलब समाप्त
3: जी इरशाद
0: कि दिलों से बुग्ज और नफरत डिलीट करते रहो।
1: अच्छा
0: क्या दिलों से बुग्ज और नफरत डिलीट करते रहो, अमल ये रात दिन यारों रिपीट करते।
1: क्या बात
3: क्या बात
1: क्या बात
3: क्या बात
1: क्या
3: बात।
0: दिलों से बुग्ज और नफरत डिलीट करते रहो, अमल ये रात दिन यारों रिपीट करते रहो, और जहाँ से एक दिन मिट जाएगी ये नफरत भी।
1: अच्छा
3: जहाँ से एक दिन मिट
1: जाएगी ये नफरत भी,
0: एक दिन मिट जाएगी ये नफरत भी, खुलूस दिल से सभी को ट्रीट करते रहो।
3: क्या बात क्या बात।
0: जहाँ से एक दिन मिट जाएगी ये नफरत भी, खुलूस दिल से सभी को ट्रीट करते रहो, और खटास दिल में रखो आज के जमाने में।
1: अच्छा खटास
0: खटास दिल में रखो
3: आज के जमाने में,
0: सभी से गुफ्तगु लेकिन स्वीट करते रहो।
1: क्या बात क्या बात खटास स्वीट
0: दिल में रखो।
1: वाह वाह वाह क्या दलाल पैदा किया भाई। वाह वाह वाह
0: सभी से गुफ्तगु लेकिन
1: बहुत अच्छा है भाई। वाह वाह
0: स्वीट करते रहो। और शेर देखें कि वजूद रखना है कायम अगर वकार के साथ।
1: अच्छा वजूद रखना है
0: कायम
1: अगर वकार के साथ,
0: वकार के साथ अदम की दोस्तों कन्फर्म सीट करते रहो।
3: क्या बात
0: कन्फर्म
3: वाह वाह
0: सीट करते रहो। और मक्ता पेश है कि नए जहां में विनर चाहते हो बनना तुम।
1: अच्छा
0: नए जहां में विनर चाहते हो बनना तुम, खुद अपने आप को आदिल डिफीट करते रहो। नए जहां में विनर चाहते हो बनना तुम, खुद अपने आप को आदिल डिफीट करते रहो, दिलों में बुग्ज और नफरत डिलीट करते रहो, अमल ये रात दिन यारों रिपीट करते रहो।
3: हजरात ये थे जनाब अदील अहमद आदिल। अब ये खादिम अरशद नदीम अपने कलाम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर है। मुलाहिदा फरमाएं। अब सब अपने ज़माने को याद कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। अर्ज करता हूँ कि हम भी बड़े हसीन बड़े खुश जमाल थे।
1: क्या बात है बेशक बेशक।
3: अपना भी एक दौर था जब तक शबाब था।
1: वाह
3: हम भी बड़े हसीन बड़े खुश जमाल थे। अपना भी एक दौर था जब तक शबाब था। अब उड़ गए खलील मियां फाख्ता के साथ वो दिन हवा हुए के पसीना गुलाब।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वो दिन हवा हुए के पसीना गुलाब था। क्या कहने हैं।
3: अब अदब के डॉक्टर भी तेज़े लिखते हैं गलत।
1: अच्छा अब अदब के डॉक्टर
3: भी तेज़े लिखते हैं गलत। कैसे कैसे हादसे होने लगे उर्दू के साथ।
1: वाह
3: एक अल्लामा से जब पूछा यदे बैजा है क्या, आलिमाना शान से कहने लगे अंडे का हाथ।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
3: आलिमाना शान से कहने लगे अंडे का हाथ।
1: वाह वाह।
3: एक और इस सिलसिले का अर्ज करता हूँ कि एक नए धनवान के घर पर जो पहुंचा दोस्त हो।
1: अच्छा
3: मुस्कुराए और बोले वेलकम यू माय डियर।
1: अच्छा
3: मैंने पूछा वेलकम यू का है क्या मतलब जनाब, तर्जुमा करते हुए कहने लगे तो डूमर। एक गजल के कुछ शेर हाजिर खिदमत करता हूँ कि एक दुश्मन ने कहा था उनका दीवाना मुझे। एक दुश्मन ने कहा था उनका दीवाना मुझे, ढूंढता फिरता है तब से शहर का थाना मुझे। एक दुश्मन ने कहा था उनका दीवाना मुझे, ढूंढता फिरता है तब से शहर का थाना मुझे। इस कदर जूते पड़े हैं एक हंसी को छेड़ कर।
1: क्या बात है।
3: इस कदर जूते पड़े हैं एक हंसी को छेड़ कर, मेरी माँ ने भी बड़ी मुश्किल से पहचाना मुझे। जिगर के मिसरे में मिसरा लगाया है कि रोज करते हैं पिटाई शेख नासे मोतसिब। रोज करते हैं पिटाई शेख नासे मोतसिब, जान कर मिन जुमलाए खासाने में खाना मुझे। और ये शेर खास तौर से मुलाहिदा फरमाएं कि एक काफी की दाद चाहूंगा। वह अर्ज करता हूँ कि एक जरा से बाल ही मैंने बढ़ाए थे फकत।
1: अच्छा एक जरा से
3: बाल ही मैंने बढ़ाए थे फकत, जाने क्यों कहने लगे हैं लोग फरजाना मुझे।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
3: बहुत शुक्रिया। चंद शेर एक दूसरी गजल से कि एक बार उनको छेड़ के जोशे शबाब में।
1: अच्छा
3: एक बार उनको छेड़ के जोशे शबाब में, मैं फंस गया हूँ जिंदगी भर के अजाब में।
1: फंस गया
3: एक दोस्त पिट रहा था हसीना को छेड़ कर।
1: अच्छा
3: मैं भी शरीक हो गया कार्य सवाब में।
1: वाह
3: मिसरा लगाया कि बच्चों ने बाप कहने से इनकार कर दिया।
1: वाह
3: बच्चों ने बाप कहने से इनकार कर दिया, बेगम ये क्या मिला दिया तुमने खिताब में।
1: वाह वाह
3: बच्चों ने बाप कहने से इनकार कर दिया।
1: वाह
3: बच्चों ने बाप कहने से इनकार कर दिया, बेगम ये क्या मिला दिया तुमने खिताब में।
1: वाह वाह
3: एक नज्म दिल्ली की गर्मी, दिल्ली में कैसी गर्मी पड़ती है, उसके क्या क्या असरात पड़ते हैं वो मुलायदा फरमाए। अर्ज करता हूँ कि राजधानी में पड़ी है ऐसी बला की गर्मी,
1: क्या बात,
3: जैसे दोजख की उतर आई हो सारी गर्मी। और उसमें सनते भी देखिएगा, राजधानी में पड़ी ऐसी बला की गर्मी, जैसे दोजख की उतर आई हो सारी गर्मी, ऐसी गर्मी ने भी देखी नहीं होगी गर्मी, शहर वालों को वो गर्मी ने दिखाई गर्मी। जाने कि जून में इस साल का जून आया था, जून आया था कि सूरज को जुनून आया था। राजधानी में पड़ी ऐसी बला की गर्मी, जैसे दोजख की उतर आई हो सारी गर्मी, ऐसी गर्मी ने भी देखी नहीं होगी गर्मी, शहर वालों को वो गर्मी ने दिखाई गर्मी। जाने कि जून में इस साल का जून आया था, जून आया था कि सूरज को जुनून आया था। इतनी शिद्दत के पसीने को पसीना आया, अरब इतनी शिद्दत के पसीने को पसीना आया, इस कदर प्यास के पानी ने भी पानी मांगा। वो घुटन थी कि हर एक सांस कजा था गोया, हफ्स इतना के चले लू तो लगे बाद सबा, फूल का हुस्न भी हीटर की तरह लगता था, इश्क की आग से हुक्का भी भड़क सकता था। इतनी शिद्दत के पसीने को पसीना आया, इस कदर प्यास के पानी ने भी पानी मांगा। वो घुटन थी कि हर एक सांस कजा था गोया, हफ्स इतना के चले लू तो लगे बाद सबा, फूल का हुस्न भी हीटर की तरह लगता था, इश्क की आग से हुक्का भी भड़क सकता था। बंद मुलायदा फरमाया कि लोग अपने ही पसीने में घुले जाते थे,
1: भाई क्या कहने,
3: बदहवासी में पहाड़ों पे ढुले जाते थे, हुस्न वालों के सभी राज खुले जाते थे, जितने मेकअप ज़्यादा चेहरे से धुले जाते थे, हसरत इश्क भी यूं दिल से पशेमा निकली, जिसको लड़की में समझता था वो अम्मा निकली। लोग अपने ही पसीने में घुले जाते थे,
1: भाई क्या कहने,
3: बदहवासी में पहाड़ों पे ढुले जाते थे, हुस्न वालों के सभी राज खुले जाते थे, जितने मेकअप ज़्यादा चेहरे से धुले जाते थे, हसरत इश्क भी यूं दिल से पशेमा निकली, जिसको लड़की में समझता था वो अम्मा निकली। हफ्से पैहम से हुई जिसमें पैदा खारिश, ऐसी खारिश थी कि अल्लाह की तौबा खारिश, शेख मस्जिद में खुजाता नजर आया खारिश, बरहमन चीख उठा ओम सुहा खारिश, हाथ को छोड़ के पूजा में खड़ा था कोई, और एक ही हाथ से मसरूफ दुआ था कोई। बाप बेटे से न बेटी से ही शर्माता था, बाशरा शख्स भी बेदीन नजर आता था, जब कोई हाथ मिलाने के लिए आता था, हाथ मिलते ही कहीं और चला जाता था। एंकर टीवी का खारिश को मिटाता निकला, कैस तस्वीर के पर्दे से खुजाता निकला।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या तो।
3: मैं इस समखराशी के बाद मैं मोहतरम अहमद अलवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से आपको और मुझे तमाम महफूज और मुस्तफीज फरमाएं।
2: देखें गजल का मतलब ये गैर मुरद्दफ है
3: जी,
2: अभी ते की बात हुई थी इसलिए मैं ते से शुरू कर रहा हूँ।
3: पेशाब
2: इमला गलत जो ते से लिखा मैंने एहतियात,
3: वाह
2: इमला गलत जो मैंने लिखा
3: तेसे
2: एहतियात, नाकिद ने मुझको लिख दिया शाहे जदीदियात।
1: वाह वाह
3: क्या बात, क्या बात,
1: नाकिद ने मुझको लिख दिया,
2: नाकिद ने मुझको लिख दिया
1: शाहे
2: जदीदियात।
1: वाह
3: वाह।
2: और शेर देखें कि जिंदा ही मार डाला तुझे नाशिरों ने क्या,
1: अच्छा
3: जिंदा ही मार डाला तुझे नाशिरों ने क्या,
2: जिंदा ही मार डाला तुझे नाशिरों ने क्या, जो जिंदगी में छाप दी है तेरी कुल्लियात। जो जिंदगी में छाप दी है तेरी कुल्लियात। और शेर देखें खास तौर से अरशद भाई के, बोला है गैज फैज में कोई गजल कहो, बोला है गैज फैज में कोई गजल कहो, जिसमें मिले ना जोश थे शायर को काफियात।
3: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।

0: जिसमें मिले न जोश से,
1: मेहनत की गई है,
2: वाह वाह वाह,
0: जिसमें मिले न जोश से शायर को काफियात, फिर वो जमीला बानो पे आशिक नहीं हुआ,
2: फिर वो जमीला बानो पे आशिक नहीं हुआ,
0: फिर वो जमीला बानो पे आशिक नहीं हुआ, जिसने जमील खान की देखी जमालिया,
1: अच्छा ये भी अच्छा है, जिसने जमील खान की देखी,
0: जिसने जमील खान की देखी जमालियात, और बेरोजगार हो गए हैं जूती चोर सब।
2: अच्छा,
0: और देखिए शेर के लच्चर हैं गजलें फिल्मों की तुकबंदियों से भी,
2: क्या कहने
0: हैं, लच्चर हैं गजलें फिल्मों की तुकबंदियों से भी, अनका मुशायरों से हैं मेयारी शेरियात, अनका मुशायरों से हैं
1: मेयारी शेरियात,
0: मेयारी शेरियात, और ताने जिगर की और तरन्नुम खुमार का, ताने जिगर की और तरन्नुम खुमार का, गालिब का तखय्युल है न मोमिन की लफ्जियात,
1: क्या बात,
2: क्या बात, क्या कहे,
0: गालिब का तखय्युल है न मोमिन की लफ्जियात, उर्दू के बोलने से बिखरती हैं खुशबुयां,
2: क्या कहने,
1: उर्दू के बोलने से,
0: उर्दू के बोलने से बिखरती हैं खुशबुएं, उर्दू के हर्फ हर्फ में है जज्ब इत्रियात,
2: क्या कहने,
0: उर्दू के हर्फ हर्फ में, उर्दू के हर्फ हर्फ में है जज्ब इत्रियात, और शेर देखें कि मल्टी निकाह पर मेरे तनकीद किस लिए,
2: मल्टी निकाह पर मेरे तनकीद, क्या इस्तेला वजह की है, मल्टी निकाह,
0: मल्टी निकाह पर मेरे तनकीद किस लिए, किस वास्ते कुरेते हो मेरी जातियात,
2: क्या काफिया है,
0: किस वास्ते कुरेते हो मेरी जातियात, और आखिरी शेर है कि बेगम का शायरी पे मेरी तबसरा है ये,
2: अच्छा बेगम का शायरी पे मेरी तबसरा है ये,
0: बेगम का शायरी पे मेरी तबसरा है ये, कितआत नज़्मे गज़लें तज़ामीन वायात, बेगम का शायरी पे मेरी तबसरा है ये, कितआत नज़्मे गज़लें तज़ामीन वायात, और देख लें एक गजल और,
1: जी
0: आज हम अपनी दवाई का असर देखेंगे,
2: अच्छा आज हम अपनी दवाई का असर देखेंगे,
0: आज हम अपनी दवाई का असर देखेंगे, कितनी पतली हुई वो मोटी कमर देखेंगे,
2: वाह वाह वाह
1: वाह वाह वाह,
0: कितनी पतली हुई
2: वो मोटी कमर,
0: मोटी कमर देखेंगे, और शेर देखें कि 60 शायर हैं मगर बज्म में दो हैं सामी,
2: जी क्या बात है, क्या अच्छा,
0: 60 शायर हैं मगर बज्म में दो हैं सामी, आज की रात बचेंगे तो सह देंगे,
2: वाह वाह वाह क्या अच्छा मिसरा दिया,
0: आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे, और छोड़ देंगे सभी लड़के तेरा पीछा करना,
2: अच्छा क्या अच्छा मिसरा,
3: छोड़ देंगे सभी लड़के,
0: छोड़ देंगे सभी लड़के तेरा पीछा करना, तुझको मेकअप बिना कॉलेज में अगर देखेंगे,
1: क्या बात
2: है, क्या अच्छा है,
0: तुझको मेकअप बिना कॉलेज में अगर देखेंगे, और आखिरी शेर है कि जानता हूँ वो बना लेंगे मुझे घर दामाद,
2: अच्छा
0: जानता हूँ वो बना लेंगे मुझे घर दामाद, मुझसे दामाद अगर मेरे खुसर देखेंगे, मुझसे दामाद अगर मेरे खुसर देखेंगे,
3: क्या कहने,
2: और
0: शाहिर के मिसरे पर
1: कलाम आप पेश कर रहे हैं,
0: शाहिर के मिसरे पर ये शेर कहे हैं मैंने,
1: जी शादाबाद,
0: मतलब देखें कि मेरे बच्चे जो हैं 6-7 किसे पेश करूं, मेरे बच्चे जो हैं 6-7 किसे पेश करूं, ये बुढ़ापे की खुराफात किसे पेश करूं, ये बुढ़ापे की खुराफात
2: किसे पेश करूं,
0: और तेरे अब्बा तो मेरी बात समझ लेते हैं,
2: तेरे अब्बा तो मेरी बात समझ लेते हैं,
0: तेरे अब्बा तो मेरी बात समझ लेते हैं, तेरी अम्मी के ख्यालात किसे पेश करूं, तेरी अम्मी के ख्यालात
3: किसे पेश
0: करूं, और शेर देखें ये खरीदे हुए اشعار نشستوں میں پڑھوں.

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना फिल्म विश्वात्मा से। और दोस्तों ये गीत जो है वो आपको अपने कहीं अतीत की यादों में ज़रूर ले गया होगा, क्योंकि आजकल वैसे भी चल रहा है ट्रेंड 80s का, जो रेट्रो है उसमें जाने का। लोग अपनी फ़ोटोज़ और रील्स बना बना के डाल रहे हैं कि उस समय का लुक जो है वो कैसा हुआ करता था। तो मैंने भी सोचा क्यों ना 90s के जो है सॉन्ग्स वो आपको सुनवा दूँ। तो एक अगला प्यारा सा गीत आपको सुनवा देता हूँ लता मंगेशकर की आवाज़ में, और फिल्म का नाम है सनम बेवफा।

बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म सनम बेवफा से, बेवफा से। और अब सुनते हैं अगला गीत, एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में, फिल्म का नाम है साजन।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालिंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णय

0: कर्मियों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के 30
1: ग्लोबल
0: वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
1: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: I would like to say that the outcome document,
3: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
2: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की।

0: है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
1: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव

0: की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत की कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ

0: बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आर्यना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आर्यना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान, पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालिंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action. Emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds a series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of red notice fugitive Amritpal Singh from Moldova. And in US Open, defending champion Aryna Sabalenka to take on Elena Rybakina in women's singles title clash tonight. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration on the first day of the summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. It highlighted the need to tackle hunger and poverty and strengthen the global response to climate change. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: Here is more from our correspondent.
3: BRICS member countries expressed deep concern over

0: Delhi tomorrow. All three matches are scheduled at the same venue. The Intermeteorological Department has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with extremely heavy rainfall over Gujarat region tomorrow. The Weather Department said Madhya Pradesh, West Madhya Pradesh, Saurashtra and Kutch are expected to face heavy to very heavy rainfall. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action, emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of red notice fugitive Amritpal Singh from Moldova, and in US Open, defending champion Arina Sabalenka to take on Elena Rybakina in women's singles title clash tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद. ब्रिक्स मुल्कों ने ज़्यादा मजबूत कसीर रुखी निज़ाम और इश्तराक बढ़ाने के अपने अहद का इरादा करते हुए नई दिल्ली एलामिया 2026 मंजूर किया है. इसमें मेंबर मुल्कों के माबेन और ज़्यादा इक्तसादी और तरक्याती इश्तराक के लिए कहा गया है. तनाज़ात ख़ासतौर पर मगरबी एशिया के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर ज़ोर दिया गया है. भारत ने कहा है कि नई दिल्ली एलामिया का मंजूर होना भारत की ब्रिक्स सदारत के अहम नतायज में से एक है. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फ़ैसलों और नतीजों के दरमियान फ़र्क को साझेदारी और इज्तमाई इकदाम के ज़रिए दूर किया जाना चाहिए. वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि ब्रिक्स हर एक को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनफिंग ने अपनी दो तरफा बातचीत में ताल्लुकात के कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र पर जोर दिया. जनाब मोदी ने ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म के साथ दो तरफा बातचीत की. सीबीआई रेड कॉर्नर नोटिस के तहत मफरूर मुलजिम अमृतपाल सिंह को मोल्डोवा से भारत ले आई है और यूएस ओपन टेनिस में आज रात ख्वातीन सिंगल्स के फाइनल में पिछली बार की चैंपियन अरियाना सबलेंका और एलिना रिबकीना आमने सामने होंगी. अब खबरें तफसील से. ब्रिक्स मुल्कों ने ज़्यादा मजबूत कसीर रुखी निज़ाम और इश्तराक बढ़ाने के अपने अहद का इरादा करते हुए नई दिल्ली एलामिया 2026 मंजूर किया है. इसमें मेंबर मुल्कों के माबेन और ज़्यादा इक्तसादी और तरक्याती इश्तराक के लिए कहा गया है. इसमें तनाज़ात ख़ासतौर पर मगरबी एशिया के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर दिया गया है. ब्रिक्स मुल्कों ने दुनिया के कई हिस्सों में जारी महाजराई और लड़ाई नज़ बैन-उल-अक़वामी निज़ाम में बिखराव और इख्तलाफात की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है. ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के पहले दिन मंजूर किए गए नई दिल्ली एलामिया में रहनुमाओं ने एक ऐसा कसीर रुखी रवैया अख्तियार किए जाने की हिमायत की जिसमें अहम आलमी उमूर पर मुख्तलिफ मुल्कों के अलग अलग नुक्ते नज़र और मौक़िफ़ का एहतराम किया जाए. इनमें पायदार तरक्की, भुखमरी और गुरबत का खात्मा और आबो हवा की तब्दीली के ताल्लुक से आलमी सतह पर इकदामात के मामले शामिल हैं. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के तबादले ख्याल से ये बात नुमाया हो गई है कि फरसूदा इदारे बदलती हुई दुनिया का निज़ाम नहीं चला सकते, और साथ ही उन्होंने इस बात को उजागर किया कि नुमाइंदगी इकदामात करने और ज़ाबते मुरतब करने में इस्लाहात लाजमी हैं. जनाब मोदी ने कहा कि रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियां तैयार करने और इनसे वाबस्ता ज़ाबते मुरतब करने में ग्लोबल साउथ की मसावियाना शमूलियत होनी चाहिए. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج جو نئی دلی اعلامیہ منظور

0: किया गया है उसमें मेंबर मुल्कों के मुश्तरका अज़्म के लिए वाज़ह सिमत तय की गई है। जनाब मोदी ने कहा कि इन वादों और अहद को हकीकी नतीजों में बदलना अब मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है।
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
0: ब्रिक्स रहनुमाओं ने जम्मू और कश्मीर में पिछले साल 22 अप्रैल के दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के अहद को दोहराया। इससे पहले आज सपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 का आगाज हुआ। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपने खिताब में तसलसल और अमल दरामद से मुतालिक ब्रिक्स तरीक़ेकार तजवीज़ किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर साल ब्रिक्स की सदारत किसी दूसरे मुल्क के हाथ में आने के बावजूद ग्रुप की इदारा जाती रफ्तार बरकरार रहे। वज़ीरे आज़म ने कहा कि इस तरीक़ेकार की बदौलत ट्रायोका के ज़रिए सभी इकदामात पर आगे की कार्रवाई और नतीजों को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। वज़ीरे आज़म ने कहा कि ब्रिक्स मुल्कों को अगले 20 साल के लिए एक नए और बड़े एजेंडे पर काम करना होगा। जनाब मोदी ने मल्लाहों के लिए इमरजेंसी इमदादी नेटवर्क कायम करने की तजवीज़ भी पेश की ताकि मुश्किल की घड़ी में इमदाद में सहूलत की खातिर बहरी हुकाम और मुतअल्लिका मुल्कों के सफारती मिशनों को बाहम मुंसलिक किया जा सके।
1: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: वज़ीरे आज़म मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ब्रिक्स मुल्कों के माबेन इत्तेहाद और इत्तेफाक राय को आलमी मंजरनामे पर ठोस नतीजों की शक्ल दी जाए। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की सदारत में मजबूती, इख्तिरा, तआवुन और पायदार तरक्की भारत की अवलीन तरजीहात रही हैं। इन तरजीहात से रहनुमाई हासिल करते हुए भारत ने ब्रिक्स इश्तराक को सीधे आम आदमी के साथ जोड़ने पर खास जोर दिया है। वज़ीरे आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर बहरान के मामले में तो ग्लोबल साउथ पेश पेश है, लेकिन फैसला साजी के एतबार से सबसे पीछे है। अक़्वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात के मामले पर वज़ीरे आज़म ने जोर देकर कहा कि अब इसे और मुअख्खर नहीं किया जा सकता।
1: यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने यह बात दोहराई है कि भारत और चीन को अपने ताल्लुकात के सिलसिले में एक कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र अपनाना चाहिए और इख्तलाफात को तनाज़े की शक्ल इख्तियार नहीं करनी चाहिए। आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर अपनी दोतरफा बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल अगस्त में तियानजिन की अपनी गुज़श्ता मुलाकात के बाद से भारत चीन बाहमी ताल्लुकात में लगातार पेशरफ्त होने का खैर मकदम किया। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया कि दोनों फरीकों को तीन बाहमी अवामिल से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। इनमें बाहमी एहतराम, बाहमी मफाद और बाहमी एहसास शामिल हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम बाहमी ताल्लुकात के मुसलसल फरोग के लिए ज़रूरी बुनियाद है। इससे पहले दिन में वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर इथोपिया, मलेशिया और वियतनाम के वज़राए आज़म के साथ साथ अबू ज़हबी के वलीहद शहजादे के साथ दो तरफा बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स रुकन ममालिक ने मगरबी एशिया में जारी बढ़ती कशीदगी पर तश्वीश का इजहार किया और ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल बरतने के साथ साथ ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करने पर जोर दिया जिससे सूरत हाल में मजीद कशीदगी पैदा हो। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों के मुताबिक शहरियों और शहरी बुनियादी ढांचे के तहफ़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। ममालिक ने बातचीत और सिफारतकारी के जरिए कोशिशों में इजाफे की हौसला अफजाई की ताकि खत्ते में देरपा अमन

0: सलामती और इस्तेहकाम के सिलसिले में तवील मुद्दती आपसी समझबूझ पैदा हो सके। ब्रिक्स रुकन ममालिक ने बैनुल अक्वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुकम्मल तहफ्फुज़ात के तहत शहरी बुनियादी ढांचे और पुरम न्यूक्लियाई सहूलतों पर जानबूझकर किए गए हमलों पर भी गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने गुज़श्ता बरस 22 अप्रैल को दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की कि जो जम्मू कश्मीर में किया गया था। ब्रिक्स रुकन ममालिक ने सरहद पार दहशतगर्दों की नकलो हरकत, दहशतगर्दी की माली एयानत और उसके लिए महफूज पनाहगाहों समेत हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के अज़्म का भी इआदा किया। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजारत खारजा ने आज कहा है कि भारत की ब्रिक्स की सदारत के दौरान मुख्तलिफ सतहों पर एक साल तवील राबतों के सबब ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में नई दिल्ली ऐलानिया पर इतफाक़ राय हो पाया है। आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में मीडिया से बातचीत करते हुए इक्तिसादी ताल्लुकात शोबे के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली ऐलानियों को इख्तियार किया जाना भारत की सदारत के अहम नतायज में से एक है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की सदर नशीनी लोगों पर मरकूज रही है। जनाब दलेला ने भारत की सदारत के दौरान अपने तआवुन के लिए ब्रिक्स ममालिक का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में मलेशिया के सरमायाकारी तजारत व सनत के वजीर दातुक सेरी जोहारी अब्दुल गनी के साथ दोतरफा मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग के दौरान तरफैन ने भारत मलेशिया इकतसादी शराकतदारी का जायजा लिया और बाहमी तजारत व सरमायाकारी को फ़रोग देने, बाजार तक रसाई को बेहतर बनाने और सप्लाई चेन राबतों को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि भारत बाहमी तौर पर और भारत आसियान तरीक़ेकार के तहत तजारत व इकतसादी तल्लुकात के तमाम तर इम्कान की खातिर मलेशिया के साथ करीबी तौर पर इश्तराक के लिए मुसलसल पुरअज़म है। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज भारत आसियान बुनियादी ढांचे, सरमायाकारी, बैंक, AIIB शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के इम्कान पर तबादला ख्याल किया। वजीर ख़जाना ने नई दिल्ली में AIIB की सदर जू जियाई से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजारत ख़जाना ने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की तरजीहात में मदद फराहम करने, मकामी करेंसी में माली मदद में इजाफे, निजी शोबे की शराकत दारी को बढ़ाने और AIIB की आलमी मौजूदगी के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। मरकजी जाँच ब्यूरो CBI ने रेड कॉर्नर नोटिस पर अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मलडोवा से भारत लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। वजारत खारजा, वजारत दाखिला और पंजाब पुलिस के साथ तालमेल कायम करके CBI इस मतलूबा मफरूर मुलजिम को भारत लाई है। पंजाब पुलिस की चार अहलकारों की एक टीम को मफरूर मुलजिम को वापस लाने के लिए मलडोवा भेजा गया था। तहकीकती एजेंसी ने कहा है कि पंजाब में रजिस्टर्ड संगीन नौयत के कई फौजदारी केसों में उसकी तलाश थी। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने यहूदियों के नए साल रोश हशनाह के मौके पर इसराइल के वज़ीरे आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू, इसराइल के अवाम और दुनिया भर में यहूदी बिरादरी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि यह नया साल हरेक के लिए अमन, तंदुरुस्ती और तरक्की लेकर आएगा। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि गैर मुल्की करेंसी से मुतल्लिक नॉन रेजिडेंट बैंक और दिगर स्कीमों के जरिए आने वाली रकूमात में काफ़ी इजाफा हुआ है। एक प्राइवेट टेलीविज़न चैनल के साथ इंटरव्यू में RBI के गवर्नर ने कहा कि बड़ी रकूमात की आमद से भारत के मैक्रो इकतसादी बुनियादी अवामिल में एतमाद की अक्कासी होती है और मुख्तसर मुद्दत के अंदर गैर मुल्की सरमाए को रागिब करने की सलाहियत का इजहार भी होता है। बैंकारी निज़ाम में इजाफी नकद रकम की दस्तियाबी के बारे में जनाब मल्होत्रा ने कहा कि नकद रकम के बंदोबस्त के लिए रिज़र्व बैंक के पास मुनासिब तरीक़ेकार हैं और वो ज़रूरत के लिहाज से इनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में 10 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। इनमें कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपुरा, बारामूला और सुपोर शामिल हैं। तलाशी की यह कार्रवाई सरहद पार दहशतगर्दी की एक साजिश के सिलसिले में की गई है जिसमें दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के पाकिस्तान से काम करने वाले आका और मकामी कारिंदों के मुबैना नेटवर्क के मुलविस होने की बात कही गई है। तलाशी की कार्रवाई के दौरान इसके से अवस्था काबिले एतराज मवाद जब्त किया गया जिसकी जांच की जा रही है। US ओपन टेनिस में आज रात खवातीन सिंगल्स के

फाइनल में दिफाई चैंपियन अरियाना सवलेंका और एलिना रवकीना का मुकाबला होगा। मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में कल एलेक्जेंडर ज़वेरेव और बेन शिल्टन आमने सामने होंगे। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने ज़्यादा मजबूत कसीर रुखी निज़ाम और इश्तराक बढ़ाने के अपने अहद का इरादा करते हुए नई दिल्ली एलामिया 2026 मंजूर किया है। इसमें मेंबर मुल्कों के माबेन और ज़्यादा इक्तसादी और तरक्याती इश्तराक के लिए कहा गया है। तनाज़ात खासतौर पर मगरबी एशिया के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर दिया गया है। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली एलामिया का मंजूर होना भारत की ब्रिक्स सदारत के अहम नतायज में से एक है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फैसलों और नतीजों के दरमियान फ़र्क को साझेदारी और इज्तिमाई इक़दामात के ज़रिए दूर किया जाना चाहिए। वज़ीरे आज़म ने इस बात को उजागर किया कि ब्रिक्स हरेक को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी दोतरफा बातचीत में ताल्लुकात के कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र पर जोर दिया। जनाब मोदी ने ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए आज़म के साथ दोतरफा बातचीत की। सीबीआई रेड कॉर्नर नोटिस के तहत मफरूर मुलजिम अमृतपाल सिंह को मोलडोवा से भारत ले आई है और यूएस ओपन टेनिस में आज रात ख्वातीन सिंगल्स के फाइनल में पिछली बार की चैंपियन अरियाना सवलेंका और एलिना रेवेंका आमने सामने होंगी। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति को अगर किसी एक शब्द में समझना हो तो संभवतः वो शब्द होगा जीवन। हम किन परंपराओं को सजोते हैं, किन नदियों के किनारे अपनी स्मृतियां छोड़ते हैं, किन पर्वों में सामूहिक उल्लास के रंग भरते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या गाते हैं, किस भाषा और बोली में अपनी पीड़ा दर्ज करते हैं, इन सब में हमारी संस्कृति सांस लेती है। और इसीलिए भाषा भी केवल संवाद का माध्यम नहीं है। भाषा में हमारी स्मृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जीवन दृष्टि है। जरा सोचिए, हमारी दादी नानी की कही कोई पुरानी बात, गांव की कोई लोक कथा, किसी त्योहार का गीत, किसी रिश्ते को पुकारने का अपना अलग ढंग, क्या ये महज शब्द है? नहीं, इन शब्दों में एक पूरी जीवन पद्धति होती है। एक समाज, उसकी स्मृतियां, उसकी परंपराएं और उसकी संवेदनाएं। दरअसल भाषा और बोलियां संस्कृति की सबसे जीवंत आवाज हैं। हम जैसा जीते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमारे देश की खूबसूरती ही इसकी विविधता है। यहाँ भाषा बदलती है तो उसके साथ लोक बदलता है, लय बदलती है, संबोधन बदल जाते हैं, लेकिन भावनाओं की धड़कन वही रहती है। हिंदी की अपनी खूबसूरती भी इसी में है कि उसने इस विविधता से संवाद किया। अलग अलग भारतीय भाषाओं, बोलियों और लोक परंपराओं से शब्द और भाव ग्रहण किए, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं से भी। इसीलिए हिंदी कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि कई दिशाओं से आती हुई सांस्कृतिक हवाओं के लिए एक खुली खिड़की है। और जब कोई भी भाषा संस्कृति को अपने भीतर समेटती है तो वो सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं रहती, वो हमें अपने होने का अर्थ भी बताती है। भाषा से संस्कृति की ओर और संस्कृति से प्रकृति की ओर, अब एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता केवल पैरों से नहीं स्मृतियों और संवेदनाओं से भी तय होता है। नर्मदा, जिसे भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक माना जाता है, जिसके तटों पर सभ्यताएं, लोक विश्वास और अनगिनत कथाएं आकार लेती रही हैं। विश्व नदी दिवस के

0: उपलक्ष्य में सुनिए प्रख्यात चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ के स्वरों में उनकी नर्मदा परिक्रमा के वृत्तांत का एक अंश, तीरे तीरे नर्मदा।
1: हम लोग नर्मदा पदयात्रा कर रहे थे और अमरकंटक जा रहे थे। छिनगांव का कुआं गांव के बाहर एक घाटी में था। मेरे साथी बड़े सवेरे वहां जाकर नहाए। मैं गया जरूर पर नहाया नहीं, ठंड के कारण हिम्मत ही न हुई। मन को समझाया, नहाऊंगा तो नर्मदा में, कुओं तालाबों पर नहीं। कह हंसा मोती चुगे, कह भूखे रही जाए। छिनगांव से बरछा, कच्ची धूल भरी सड़क से उतरने लगे तो नीचे दूर मैदान में से बहती हुई धूप नहाई नर्मदा दिखाई दी। अब प्रायः अमरकंटक तक नर्मदा मैदान में से ही बहती है। पंचमनाथ पुजारी जब 48 बरस का था तभी पत्नी का देहांत हो गया था। अभी 70 का है और पूरी तरह से स्वस्थ है। कहता है, मैं बाहर भी हूं और भीतर भी हूं। अगर हम लोग भी बीच बीच में भीतर चले जाया करें और देखते रहें कि कहीं हमारी आत्मा को फफूंद तो नहीं लग गई तो कितना अच्छा हो। दूसरे दिन भी लगातार पानी बरसता रहा। हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन किसानों को कई दिनों से इस वर्षा की प्रतीक्षा थी। उनकी फसल सूख रही थी, उसे नया जीवन मिला। वैसे किसानों को इससे कहीं अधिक पानी की जरूरत थी। बादलों को आकाश से नीचे उतारने की विद्या केवल वनों को आती है और हम अपने अधिकांश वन काट चुके हैं। अब बादलों को आकाश की अटारी से नीचे धरती पर भला कौन उतारे। रात लुकामपुर में रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर में ओस गिरनी शुरू हो गई थी। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से ओस की बुंदनियां, सवेरे घना कोहरा। कोहरे के छटने का काफी इंतजार किया लेकिन छटा नहीं तो कोहरे और ओस की फुहार में ही चल दिए। चलते चलते आसपास के सौंदर्य को मन में उतारता जाता, सोचता क्या इस सौंदर्य की गूंज अपनी कृतियों में पैदा कर सकूंगा। लेकिन इसकी चिंता अभी क्यों करूं, अभी तो इसका भरपूर आनंद लूं, अपने हृदय में उतार लूं और पकने के लिए वहीं छोड़ दूं। समय आने पर वह स्वयं बाहर आएगा, इसमें समय लगता है। अगर मैं कलाकार हूं तो मुझ में धैर्य होना चाहिए। दोपहर को खाना नहीं बनाते, लेकिन रामघाट के प्रपातों को देखकर लगा कि आज खाना यही बने। देर तक मैं उन प्रपातों के पास मड़राता रहा। शाम तक दूधी संगम पहुंच गए, लेकिन एक ग्रामीण ने कहा कि आप दूधी पार करके हर्रा जाइए, वहां कहीं न कहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी। आधी रात को आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्र था, चंदन का घाट और पूनों का चांद। अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे कई पूर्णिमाएं देखने का अवसर मिला है और हर बार मैंने नई नई उपमाओं से चांद और चांदनी का वर्णन किया है। सवेरे आगे बढ़े, बसंतपुर और कंचनपुर होते हुए ठाड़ पातर पहुंचे। इस बार की यात्रा में एक सुखद परिवर्तन देखने मिला। अधिकांश गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खुल गई हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जहां भी शाला मिली हम वहां जरूर गए और शिक्षक से अनुमति लेकर मैं बच्चों को नर्मदा के बारे में बताता। अगर बच्चे जरा बड़े होते तो अपनी पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा में से उनके गांव से संबंधित अंश पढ़कर सुनाता। नर्मदा तट के कई गांवों में मैंने बच्चों के समक्ष रचना पाठ किया। उसी निष्ठा से, जिस निष्ठा से नवंबर 2001 में भोपाल के भारत भवन में साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के समक्ष किया था। ठाड़ पाथर की पाठशाला को देखते ही मेरी बांछें खिल गईं। प्यारे बच्चों, हर बच्चे को सबसे अधिक प्यार अपनी माँ से होता है। माँ के बिना वह रह नहीं सकता। इससे हुआ यह कि जो भी चीज हमें बहुत प्यारी होती है उसे हम माँ कहने लगे। जैसे हमारा देश, हम उसे भारत माता कहते हैं। इसी प्रकार यह जो नर्मदा बह रही है ना,

0: हमें इतनी प्यारी लगती है कि हम उसे भी माँ कहते हैं, नर्मदा मैया। बच्चों, तुम कितने भाग्यवान हो कि नर्मदा की गोद में पल भर रहे हो। पता नहीं बड़े होकर तुम इसी गांव में रहोगे या और कहीं जाओगे। जहां भी जाओ अपनी इस नदी को कभी मत भूलना। तुम जहां भी जाओगे इस नदी का एक अंश तुम्हारे साथ जाएगा।
1: ये थे चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी जबलपुर। देश के मध्य में नदी की धारा से अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां संस्कृति केवल उत्सव नहीं समुदाय की सामूहिक स्मृति और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते की अभिव्यक्ति है। मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसने वाला गारो समुदाय सूर्य देवता को समर्पित जिस उल्लासपूर्ण नृत्य उत्सव के साथ अपनी सामुदायिक जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है वो है वांगला। और इसी वांगला के लोकरंग को समेटे है हमारी अगली प्रस्तुति, ये लघु रूपक आशीर्वाद मिसी सालजोंग का।
2: हरे भरे पहाड़, बादलों से घिरा आसमान और इसके बीच गूंजती ढोल की सामूहिक थाप, ये है मेघालय का गारो समुदाय का वांगला। एक ऐसा लोक उत्सव जिसमें संगीत है, नृत्य है और प्रकृति के प्रति आभार की भावना भी।
3: भारत के पूर्वोत्तर की जनजातीय परंपराओं में गारो समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान है। गारो समुदाय मुख्य रूप से मेघालय में निवास करता है। हालांकि असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी इनकी बसावटें हैं।
2: वांगला फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव है। ये मूलतः गारो समुदाय के सूर्य देवता मिसी शालजो के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि के उत्सव का अवसर है।
3: और इसकी सबसे खास पहचान है ढोल की सामूहिक थाप। शायद इसी वजह से वांगला को कहा जाता है 100 ढोलों का उत्सव।
2: इस जीवन परंपरा की खूबसूरत झलक इस साल दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट फेस्टिवल यानी नेस्ट फेस्ट 2026 में भी देखने को मिली।
3: लेकिन आखिर वांगला नृत्य की खासियत क्या है, इसकी प्रस्तुति में कौन सी लय और भाव छुपे हैं?
4: मेरा नाम अनालिशा है, मैं मेघालय से हूँ, गारो ट्राइब से। तो ये हमारा वांगला डांस जो है वो एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू करा था। जो ट्राइब है मेघालय की उसका एक गॉड है जो कि हम बोलते हैं मिसी सालजोंग, जो कि सन के गॉड है। तो हम उनको हमारी अच्छी हार्वेस्ट को प्रेज करने के लिए या फिर वर्शिप करने के लिए हम ये वांगला डांस परफॉर्म करते हैं। 100 ड्रम्स वांगला ये एक फेस्टिवल है, इस पे हम वांगला परफॉर्म करते हैं। हमारा जो ड्रम्स होता है हम खुद ड्रम्स बजा के हम डांस करते हैं। जो लड़के लोग होते हैं वो ड्रम्स, हमारे ड्रम जो होते हैं उसको दामा बोलते हैं, लंबे ड्रम होते हैं, वो लड़के लोग डांस के टाइम पे उसको कैरी करते हैं और वो बजाते हैं उस टाइम पे, तो वही हमारा इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक हो जाता है।
2: पारंपरिक दामा ढोल की थाप पर जब कलाकार एक साथ कदम मिलाते हैं तो जैसे पूरी प्रस्तुति में एक लय सी दौड़ जाती है।
3: ढोल की यही धुन वांगला को गति देती है, 100 ढोलों के उत्सव की पहचान भी देती है।
2: वांगला की खूबसूरती सिर्फ इसके लय और कदमों में नहीं, इसके रंगों में भी दिखाई देती है। पारंपरिक वेशभूषा के रंग बिरंगे परिधान और आभूषण इस नृत्य को एक अलग विजुअल पहचान देते हैं।
3: आइए सुनते हैं अनालिशा को।
4: जब हम ये डांस परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली हम लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं। ट्रेडिशनल अटायर जैसे कि हम लोग सर पे बांधने का कपड़ा पहनते हैं, रैप अराउंड स्कर्ट होता है। मैं अगर गारो में बोलना चाहूँ तो एक दोमे होता है, दोमे जो होता है वो हम सर पे लगाते हैं, वो मुर्गी के पंख होते हैं। और एक खोतप होता है वो हम सर पे बांधते हैं, कपड़ा जैसा होता है। फिर हम इयररिंग्स भी पहनते हैं, उसको हम नाथापसी बोलते हैं। और

0: और नेकलेस भी पहनते हैं, लंबे लंबे नेकलेस, उसको हम रुकतुक बोलते हैं या फिर रुकमाचु। और हम जो बेल्ट पहनते हैं उसको हम सेंखी बोलते हैं, और जो हम हाथ में जो चूड़ियाँ पहनते हैं उसको हम चकसान बोलते हैं। हाँ, और जो हम नीचे जो रैप अराउंड स्कर्ट पहनते हैं उसको हम नकमंदा बोलते हैं।
1: इस पूरी प्रस्तुति का नेतृत्व करने वाला एक खास कलाकार भी होता है जिसे कहा जाता है मदग्रिक। आइए सुनते हैं रियोशन से।
2: तो जो मदग्रिक का जो ड्रेस है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वॉरियर होता है जो अपने कम्युनिटी को लीड करेगा। तो उसका जो कपड़ा होता है उसका पंडरा होता है, जो वो गामचा की तरह उसको पहना जाता है उसको पंडरा कहते हैं, और इसको रुकमाचू कहते हैं, जो हम गले में पहनते हैं उसको रुकमाचू कहते हैं। और उसके बाद हम डोमे भी पहनते हैं। डोमे बेसिकली जो बर्ड है, वाइल्ड बर्ड्स से उनको बनाया जाता है।
3: तो ये है गारो समुदाय का वांगला, जहाँ ढोल की हर थाप में उत्सव की खुशी है, हर कदम में सामूहिकता की लय है, और हर रंग में अपनी संस्कृति पर गर्व।
1: समय बदला, जीवन शैली बदली, लेकिन वांगला की थाप आज भी गूंज रही है, अपनी परंपरा, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को साथ लेकर। संस्कृति भारती के लिए मैं हूँ प्रांजल।
3: और मैं नेत्रा।
4: आशीर्वाद मिसी सालजोंग का गारो समुदाय के वांगला नृत्य उत्सव पर केंद्रित लघु रूपक अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। लोक से शास्त्र, परंपरा से पर्व, और अब गणपति बप्पा की भक्ति और उत्सव धर्मता के रंग। भारत के अलग अलग हिस्सों में पर्वों की अपनी अपनी छवियां हैं, अपनी ध्वनियां हैं, अपनी परंपराएं हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव तो जैसे सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा ही है। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति गणपति बप्पा।

पुणे का गणेशोत्सव आज जिस तरह से पूरे जोश और उत्साह से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत के पीछे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बड़ा योगदान है। सन 1893 में लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। उस समय गणपति की पूजा ज्यादातर घरों में ही होती थी। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव के बहाने लोगों को एक साथ लाया। गणेशोत्सव को उन्होंने अनंत चतुर्दशी तक मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पूजा के साथ भजन, कीर्तन, भाषण और तरह तरह के कार्यक्रम भी होने लगे। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था, इसलिए इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में जागरूकता और देश के लिए कुछ करने की भावना भी पैदा होने लगी। शुरुआत में सन 1893 में पुणे में 3 और मुंबई में 2 जगह सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया गया था। धीरे धीरे यह उत्सव पुणे से निकलकर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों तक और अब तो सारे देश में ही नहीं विदेश में भी पहुंच गया है। पुणे के गणेशोत्सव की एक खास पहचान

0: शान है। यहाँ के प्रतिष्ठा प्राप्त पांच गणेश, जिसे मराठी में मानाच से पांच गणपति कहते हैं, इनमें श्री कस्बा गणपति को पुणे का ग्राम दैवत माना जाता है।
1: नमस्ते, मैं नीलेश वकील कार्याध्यक्ष, मैं बात कर रहा हूँ पुणे के प्रथम नामांकित मंडल से, श्री कस्बा गणपति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल से। 1893 में यानी 1893 में ये गणेशोत्सव मंडल की हमारे स्थापना हुई और तब से ये उत्सव चलते आ रहा है। पहला मान विसर्जन का यानी पहला नंबर हमको दिया जाता है। गणेशोत्सव क्या है तो कलावंत, विचारवंत, बुद्धिवंत, इन लोगों का उत्सव यानी गणेशोत्सव, यानी सब लोग आके ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। गणेशोत्सव की और एक खासियत है कि सामाजिक काम यानी सोशल वर्क। इसी तरह से हम लास्ट 25 साल से ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं।
0: इसके बाद तांबड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसीबाग और केसरीवाड़ा के गणपति आते हैं।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित तिलक, मैं अध्यक्ष हूँ केसरी गणेश उत्सव का। अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं केसरीवाड़ा में, कोई लेक्चर्स हो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रखे जाते हैं, कॉम्पिटिशन रखी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है। ऐसे पूरे 10 दिन कार्यक्रम केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से किया जाता है। अगर कोई प्रेजेंट इशू हो तो उसके ऊपर भी लेक्चर्स ये केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से हमेशा कंडक्ट किया जाता है।
0: गणपति की स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के विसर्जन तक पूरा शहर जैसे उत्सव में डूबा रहता है। कहीं ढोल ताशों की गूंज सुनाई देती है तो कहीं सुंदर सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देते हैं।

0: श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति के बारे में हेमंत रास ने बताते हैं।
1: जय गणेश। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणेशोत्सव 135 साल यहाँ पुणे में विराजमान हो रहे हैं। अभी श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का परमानेंट मंदिर हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ रहती है। उत्सव में 10 दिन में 2 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस साल हमने वृंदावन का प्रेम मंदिर यहाँ मंडप में बनाया है, जो दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दान पेटी में जो भाविक अपना योगदान देते हैं, उससे हम मानव सेवा का महामंदिर बनाते हैं।
0: भाऊ रंगारी गणेशोत्सव के अध्यक्ष संजीव जावड़े,
2: ये जो उत्सव जो चालू हुआ वो 1892 में भाऊ रंगारी इन्होंने चालू किया उनके साथीदारों के साथ, और उन्होंने एक मूर्ति बनाई जो राक्षस को वध करती है, और ये मूर्ति इको फ्रेंडली है। और 1892 से आज तक हमारे ट्रस्ट ने किसी के पास चंदा लिया नहीं है। हम गुलाल नहीं यूज करते, और तीसरी बात यानी हमारे जो उसमें म्यूजिक या गीत जो रहते वो भक्ति गीत रहते, और वो भी मॉडरेट लेवल नॉइस पे।
0: पुणे का गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेने वाला, हमारी संस्कृति से जोड़ने वाला एक खास उत्सव बन गया है।
3: गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति आपने सुनी आकाशवाणी पुणे के सौजन्य से। उत्सव हमें जोड़ते हैं और शिक्षा हमें सशक्त बनाती है। साक्षरता केवल अक्षरों को पहचान लेने का नाम नहीं, ये अपने अधिकारों को समझने, अपने निर्णय स्वयं लेने और दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता भी है। शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अब एक ऐसी कहानी जिसने साक्षरता की उपलब्धि को एक भौगोलिक पहचान से जोड़ दिया, मिजोरम की उस यात्रा की कहानी जिसने उसे साक्षरता के शिखर तक पहुंचाया। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साक्षरता का मिजो शिखर।
4: साक्षरता का अर्थ केवल वर्णमाला पहचानना या हस्ताक्षर करना नहीं है। वास्तविक साक्षरता वो है जो नागरिक को अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और समाज के प्रति उसके योगदान का एहसास भी कराए। हाँ, शुरुआत जरूर अक्षरों की।

0: पहचान से होती है।
1: सितंबर का ये समय देश भर में पठन पाठन और गुरु परंपरा के सामाजिक महत्व पर मंथन का अवसर देता है। ये समय हमें ये देखने का अवसर भी देता है कि नीतियाँ कागजों से उतरकर धरातल पर कितना प्रभाव छोड़ रही हैं।
0: इसी उजाले की मिसाल बनकर उभरा है भारत के पूर्वोत्तर का सुंदर

0: नकारात्मक साक्षरता हासिल करके देश में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है।
1: पर जानते हैं, दुर्गम पहाड़ियों और बीहड़ रास्तों के बीच बसी आबादी में इतना बड़ा बदलाव केवल कागजी दावों से नहीं होता। जब जमीन पर जाकर एक एक घर का सर्वे किया गया तो देखा गया कि आखिरी पड़ाव पर लगभग 3000 ऐसे लोग बचे थे जो अक्षरों की दुनिया से दूर थे।
0: और यहाँ मिजोरम की सांस्कृतिक चेतना का एक सुंदर रूप देखने को मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं तलांगना। जैसे ही सर्वे के आंकड़े सामने आए तो बिना किसी आर्थिक लाभ की परवाह किए लोकल वॉलंटियर्स और युवा खुद आगे आ गए।
1: इन युवाओं ने गांव-गांव जाकर अपने से बड़ों को पढ़ाना शुरू किया और एक अनोखा कम्युनिटी बॉन्ड बना, यानी तलांगना। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल को समझने के लिए आइए सुनते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल परिसर के प्राध्यापक डॉक्टर वनलाल रोहता को।
2: मिजोरम में जीवन को करीब से देखने और समझने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मिजो समुदाय का पढ़ना पुस्तकों और शिक्षा के साथ ऐतिहासिक रूप से एक गहरा और विशिष्ट संबंध रहा है। जब ईसाई मिशनरी मिजोरम आए तो उन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग करते हुए मिजो भाषा के लिखित रूप को विकसित और प्रचलित किया। मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने की संस्कृति केवल उच्च शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं थी। परिवारों में मनोरंजन और रुचि के लिए पढ़ने की भी एक मजबूत परंपरा रही है। सोशल मीडिया के दौर से पहले माता पिता द्वारा बच्चे को सोने से पहले कहानियां सुनना या सुनाना काफी आम बात थी। मेरा मानना है कि मिजोरम की उच्च साक्षरता दर की जड़ें समुदाय की मजबूत सहभागिता की संस्कृति में निहित है। मिजो दर्शन में निहित त्रावमेना अर्थात बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और उनकी सहायता करना, उल्लास अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए आजीवन सीखने की अवधारणा, या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसी सामुदायिक भावनाओं को महत्व दिया गया है। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए 95% साक्षरता को मानक माना गया है। उल्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मुझे इसमें स्वयं सेवी शिक्षकों की भूमिका लगती है। मिजोरम में इन स्वयंसेवी शिक्षकों में विद्यार्थी, शिक्षक, संसाधन व्यक्ति और क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर के समन्वयक शामिल रहे हैं। उन्होंने विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, वायम पुस्तकालय और आवश्यक पढ़ने पर शिक्षार्थियों के घरों तक जाकर भी सीखने सिखाने की गतिविधियां संचालित की।
3: कम्युनिटी हॉल्स, वायम लाइब्रेरीज एंड वेयर नेसेसरी इवन इन लर्नर्स होम्स एज वेल टू देयर ओन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट।
1: मिजोरम के पहाड़ों पर जब सुबह सुबह धुंध छटती है तो किसी घर के बरामदे में बैठा बुजुर्ग या स्कूल की ओर बढ़ती कोई छोटी बच्ची, दोनों के हाथों में एक चीज समान मिलती है, एक खुली हुई किताब। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
0: और मैं हूँ प्रांजल।
4: अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति साक्षरता का मिजो शिखर, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। विश्व के या देश के अलग अलग हिस्सों को हम समझना चाहें, उन्हें जानना चाहें, तो करनी पड़ती है यात्राएं। और इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। और पर्यटन की यही मानवीय भूमिका हमें एक दूसरे महत्वपूर्ण दिवस की ओर ले जाती है, विश्व शांति दिवस। हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में इस दिवस की घोषणा की थी और 2001 में इसे अहिंसा और युद्ध विराम के दिवस के रूप में निर्धारित किया। 2026 में विश्व शांति दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीडे, यानी शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए, हर जगह, हर दिन। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण

0: करण का, जिन्होंने अपने विचार, कर्म, कला और जीवन से भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री नारायण गुरु, स्वाधीनता और राष्ट्र चेतना के पुरोधा दादा भाई नौरोजी और अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर एनी बेसेंट, महान दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और संगीत की दुनिया की दो महान स्वर साधिकाएं एम एस सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर, जिनके सुरों ने भारतीय संगीत को देश और दुनिया तक का विस्तार दिया। इन सभी महान विभूतियों के कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक आनंद वैद्य का शास्त्रीय गायन। अजमेर राजस्थान के निवासी आनंद वैद्य जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अजमेर की श्रीमती श्यामल नवरे जी और सांगली के पंडित A.R. पटवर्धन जी से प्राप्त की। तत्पश्चात किराना घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित अजय पोहनकर जी के मार्गदर्शन में आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल गायकी की शिक्षा ग्रहण की। पिछले 30 से अधिक वर्षों से देश के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे आनंद वैद्य सुरमणि और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के युवा शास्त्रीय गायक पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। आनंद वैद्य जी अपने कार्यक्रम की शुरुआत राग गोरख कल्याण से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल के बोल हैं धन धन भाग जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं जा जा रे जा पथिकवा जो तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अकबर हुसैन और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजेंद्र बनर्जी।

अभी आपने सुना राग गोरख कल्याण। आनंद वैद्य अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग जोग। विलंबित ख्याल के बोल हैं पेहरवा को बिरमायो, जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं साजन मोरे घर आए, जो तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आपने सुना आनंद वैद्य का गाया राग जोग। इसके साथ ही आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था।

0: The BRICS Symphony, One Rhythm, Many Cultures, bringing together musicians from BRICS members and partner countries in a unique collaborative musical performance. And in US Open tennis, defending champion Arina Sabalenka will take on Elena Rybakina in the women's singles final tonight. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हुए हैं और अब वक्त है हमारे कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। जी हाँ साथियों, तो देर ना करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, शब्द वही अच्छे जो दिल तक जाएं और शब्द वही सच्चे जो दिल से आएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे शब्दों के ऊपर, जो शब्द हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, हमारी यादों का हिस्सा होते हैं और हमारे रिश्तों का हिस्सा होते हैं। आपके संदेशों के साथ साथ हम इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, जरा सोचिए, ये शब्द कितने बड़े होते हैं। कभी एक छोटा सा धन्यवाद भी किसी का पूरा दिन बना देता है, और कभी मुझे तुम पर भरोसा है, ये किसी इंसान को मुश्किल समय में कितनी ताकत देता है। और कभी सिर्फ एक गलत शब्द जो हम कभी-कभी बोल भी देते हैं, सालों पुराने जो हमारे रिश्ते होते हैं उसमें दरार डाल देता है। कभी हम खुशी में कुछ बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, और कभी हम इतने दुखी होते हैं कि जब हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए तब भी हम बोल ही जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कभी, कि कभी खुशी में ही कुछ बोल गए या बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं तो कुछ बोल गए। तो ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो हमें ज़रूर बताइएगा अपने संदेशों के द्वारा। और लीजिए, लेते हैं अपना सबसे पहला संदेश जो हमारे पास आया है। राजेंद्र जटोलिया, उषा, कृष्णा, पूजा, कोमल और आरव जटोलिया का, दिल्ली नागलोई से। जो अगला संदेश हमारे पास आया है वो आया है गांव टोरोवाल, जिला नवांशहर, पंजाब से, गगन थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका एंड वाणी थांदी का। और अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो आया है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी का।

दोस्तों, शब्द दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस हो जाते हैं। शब्दों की कोई खुशबू नहीं होती साथियों, फिर भी कुछ शब्द हमेशा महकते रहते हैं और दूसरों को खुशियां देते रहते हैं। शब्दों का कोई रंग नहीं होता, फिर भी कुछ शब्द जिंदगी को रंगों से भर देते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिना बोले हम समझ जाते हैं और सामने वाला हमें समझा जाता है। दोस्तों, लेते हैं अगला संदेश जो आया है हमारे पास नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब का, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे जी का, भाटापार छत्तीसगढ़ से और सोहन जोशी जी का। अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो आया है जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर जी का। अगला संदेश जो आया है हमारे पास वो आया है चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी का। देखिए दोस्तों, ये हमें लिखते हैं, शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं, यह रूह का एहसास है, मौन के सन्नाटे में भी गूंजता विश्वास है। एक शब्द मरहम बने भरे जख्म हजार, एक शब्द तीर बने लगा दे दिल पर वार। सोच समझ कर बोलिए ये अनमोल रतन, शब्द ही जोड़े मन को शब्द ही तोड़े मन। क्या बात कहिए, बिल्कुल सही बात है सतीश जी। अगर हम कुछ बात बोलते हैं और उसे पहले सोचते नहीं हैं कि सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा, और हम ऐसा कुछ

बोल जाते हैं जो सामने वाले को कड़वा लग जाता है। तो उससे दिक्कत हमें ही है, क्योंकि हमारा उससे क्या नाता है, दोस्ती का है, प्यार का है, किसी भी चीज़ का नाता है, तो वो हो सकता है कि टूट जाए। तो लीजिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

साथियों, शब्द एक इंसान के विचार होते हैं, शब्द भावनाएं होती हैं और शब्द हमारे अनुभव होते हैं। और सबसे ज़्यादा बढ़कर शब्द इंसान के व्यक्तित्व की पहचान होते हैं। दोस्तों, हम किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से कुछ देर के लिए पहचान सकते हैं, उसकी शक्ल से पहचान सकते हैं, लेकिन किसी इंसान की अगर असली सोच को जानना है तो उसके लिए उसके शब्द सुनने पड़ते हैं। एक इंसान किस तरह बोलता है, किससे बोलता है, क्या बोलता है और कब चुप हो जाता है, ये सब ना उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता देती है। कहा जाता है साथियों, बात करने का तरीका इंसान की परवरिश का आईना होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। और देर ना करते हुए लेते हैं अपने संदेश, जिसका आप सभी को इंतज़ार रहता है। तो हमारा जो अगला संदेश हमारे पास आया है, वो आया है आदरणीय, ये लिखते हैं, आदरणीय प्रसारक महोदय जी, आपको हमारी ओर से प्यार भरा आदाब नमस्कार। हमारी तरफ से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ये संदेश जो आया है हमारे पास, ताज मोहब्बत मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहान, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से। जो अगला संदेश हमारे पास आया है, वो आया है हमारे पास थाना रोड बक्सर से, जीवत गुप्ता, आशीष, सतीश, आयुष, आयुषी और सानवी गुप्ता जी का। अगला संदेश हमारे पास आया है संभल से, छोटे अंसारी, आलम अंसारी और असद अंसारी साहब का। अगला संदेश आया है हमारे पास, ये आया है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से, रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता जी का। तो इसी संदेश के साथ आप सुनते हैं आप सभी का मनपसंद ये गीत।

दोस्तों, शब्द सिर्फ वही नहीं होते जो हम बोलते हैं। साथियों, कभी-कभी हमारी आंखें भी शब्द बन जाती हैं। माँ की आंखों में बच्चे के लिए जो प्यार होता है,

उसके लिए कोई भी शब्द जरूरी नहीं। पिता का चुपचाप बेटे के कंधे पर हाथ रखना और बोलना सब ठीक हो जाएगा, वो भी एक शब्द है। किसी पुराने दोस्त का बिना कुछ कहे पास बैठ जाना, वो भी एक संवाद ही होता है साथियों। और किसी अपने का दूर चले जाने के बाद उसकी खामोशी भी एक शब्द बन जाती है दोस्तों। इसीलिए शायद किसी ने बहुत खूबसूरत से कहा है कि हर बात शब्दों से कही जाए ये ज़रूरी नहीं, कुछ बातें खामोशी भी कह देती है। जी हाँ। और दोस्तों अब बात करते हैं अपने संदेशों की। हमारे पास जो संदेश आया है वो आया है श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू जी का। अगला संदेश आया है हमारे पास ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम जी का। ये लिखते हैं, शब्द छोटा है पर ताकत बहुत बड़ी है। जी हाँ, एक शब्द, एक अच्छा शब्द किसी उदास मन को खुश कर सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। इसीलिए जब भी किसी को बोलें सोच समझ कर प्यार से बोलें, जिससे सामने वाले व्यक्ति आपके बातों को इनकार ना कर सके। ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों, कि अगर हमें अपनी बात भी किसी से मनवानी है ना, तो प्यार, एक प्यार जो होता है ना, वो अपने शब्दों में डाल लीजिए। देखिए फिर आपका काम करने से कोई भी मना नहीं करेगा। अगला संदेश आया है हमारे पास चिरमिरी कुरासिया कालरी से, इंद्रबान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालंद्री लहरे जी का। अगला जो संदेश आया है हमारे पास यह है छोटे अंसारी आलम अंसारी साहब का। ये लिखते हैं, कम बोलो अच्छा बोलो। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास अच्छा बोलने के लिए कुछ नहीं है ना, तो दोस्तों कुछ बोलो ही मत, कि उससे अच्छा है कि हम बुरा बोलें, इससे अच्छा है कि हम चुप्पी साध लें। लीजिए अब आपकी पसंद का ही ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, एक बच्चा जब पहली बार माँ कहता है ना, तो उस एक शब्द में पूरी दुनिया समा जाती है। जब कोई कहता है पापा मैं घर आ गया, तो उस वाक्य में घर की पूरी गर्माहट महसूस होती है। दोस्तों, चल रहने दे यार, कभी कभी हजारों शब्दों से ज्यादा अपना लगता है। और प्यार में सिर्फ तीन शब्द, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी के लिए पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आवाज बन सकती है। लेकिन रिश्तों में शब्दों की ताकत समझना भी जरूरी है। दोस्तों, गुस्से में हम कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें वापस लेना नामुमकिन हो जाता है। मगर याद रखिए, बोला हुआ शब्द और छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों, पहले एक पल रुक जाना चाहिए, सोचना चाहिए, क्या ये शब्द जरूरी है, क्या ये सच है, क्या इन्हें कहने से सामने वाले को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दोस्तों, अगर इतना ही हम सब सोच लें, तो शायद ही हमारी किसी से बातचीत बंद हो या किसी से लड़ाई हो। हमेशा सब कोई खुश रहे। और चलते हैं अपने अगले संदेश की तरफ, जो हमारे पास आया है संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव जी का। अगला जो संदेश आया है, वो आया है हमारे पास सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी जी का, शांति नगर सोनीपत से। ये लिखते हैं, लोग अक्सर सुंदर चेहरे भूल जाते हैं, पर सुंदर बोले कभी नहीं भूलते। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, तो कब तक याद रखेंगे सामने वाले को? 1 महीना, 2 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन साथियों, अगर हमारा जो शब्द हैं, बोल हैं, वो सुंदर हैं, तो हमें जिंदगी भर

लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों, जो अगला संदेश आया है वो आया है हमारे पास रतलाम मध्य प्रदेश से, प्रवीण प्रियदर्शना का। ये लिखते हैं, ये अपनी फिल्म बता रहे हैं साथियों। अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी का।

इस जो हमारे पास आया है वो आया है हमारे पास श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू जी का। लीजिए सुनते हैं एक और आप सभी का मनपसंद गीत।

0: दोस्तों बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आगे आप कोई भी किसी से भी बोलते हैं कुछ भी, तो बस पहले सोचिए और फिर बोलिए। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। शिल्पा गोस्वामी को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।
1: मैं ना भुलाना।

इसके बाद हम हाजिर होंगे 12:10 पर ललित जी के साथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर अब हमारी प्रसारण संपन्न होते हैं। 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। ये निर्णय परीक्षा देने वाले छात्रों और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने तथा समय पर पहुंचने के लिए लिया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे। बीकेसी स्थित भारत डायमंड बोर्ड्स में आयोजित GJEPC पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लाल बागचा राजा के दर्शन करेंगे। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर जेवरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वाणी का AIRLive न्यूज़ 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 12:10 और 10 सेकंड। साथियों, ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम आज बहुत ही ख़ास होने वाला है। जी हाँ, सुरों का सफ़रनामा। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आज आपके साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट RJ ललित कुमार। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जो वाकई बहुत ही बेहतरीन गीतों के गीतकार रहे हैं, और सुरों का सफ़रनामा गीतकार रविंदर रावल। जी हाँ दोस्तों, वाकई लगभग 50 मिनट का ये प्रोग्राम होने वाला है, और आकाशवाणी कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा में विशेष प्रस्तुति है गीतकार रविंदर रावल की, और प्रस्तुति प्रस्तुत करता है यानी कि मैं, आपका दोस्त, आपको होस्ट RJ ललित कुमार। साथियों नमस्कार, सुरों की इस खूबसूरत दुनिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गीत केवल शब्दों का मेल नहीं होता, गीत केवल शब्दों का मेल नहीं होता, गीत वह एहसास होता है जो कभी चेहरे पर मुस्कान ले जाता है, ले आता है तो कभी आंखों में नमी, और कभी पुरानी यादों के दरवाजे खोल देता है। जी हाँ दोस्तों, फिल्मी गीतों की दुनिया में कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही हमें फिल्म, कलाकार और वह पूरा दौर याद आ जाता है। आज के सुरों का सफ़रनामा में हम ऐसे ही एक गीतकार की बात करेंगे जिन्होंने सरल शब्दों में रिश्तों, प्रेम, उत्सव और जीवन की भावनाओं को गीतों में पिरोया। नाम है जिनका रविंदर रावल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही चर्चित तो नहीं लगता है मुझे, और ख़ास तौर से हमारे साथियों को भी नहीं पता होगा, लेकिन हाँ, आज हम ऐसे ही गीतकार को लेकर आए हैं। उनके लिखे गीतों में कभी प्रेम की मासूमियत दिखाई देती है, तो कभी शादी विवाह के रौनक, और कभी परिवार की मिठास, और कभी जिंदगी की भावुकता, और यही तो एक अच्छे गीतकार की खूबी होती है। वह हमारे दिल की बात ऐसे शब्दों में कह देता है जिन्हें हम खुद कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो आइए आज का यह सफ़र शुरू करते हैं रविंदर रावल के खूबसूरत गीतों के साथ। या दोस्तों, आज एक बड़ा ही प्यारा गीत से शुरुआत कर रहे हैं, और ये गीत है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही चर्चित है, बेहतरीन है, अनमोल है। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही खूबसूरत रचना है, और जब आप सुनेंगे तो कहेंगे वाह क्या बात है। कभी तो छलिया लगता है, पत्थर के फूल फिल्म से ये शानदार रचना है, लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में सुंदर रचना है, और 1991 प्रदर्शित फिल्म है पत्थर के फूल। लव सॉन्ग है, तो कभी तो छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है। रविंदर रावल का गीतकार रविंदर रावल हैं, और संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण। तो आइए सुनते हैं आज के सुरों का सफ़रनामा की पहली और बहुत ही खूबसूरत रचना।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही चर्चित, बेहद लाजवाब खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, आज के सुरों का सफरनामा का पहला खूबसूरत गीत। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें प्रेम और खूबसूरत तारीफ दिखाई देती है। रविंद्र रावेल के गीतों की खासियत रही है कि उनके शब्द बहुत ही सहज और आम बोलचाल के करीब लगते हैं, इसलिए उनका गीत सुनते हुए श्रोताओं को लगता है कि यह तो हमारे ही दिल की बात है। तो सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, है फिल्म बेजुबान का, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत गीत है। तो आइए सुनते हैं ये बेहतरीन बेहतरीन खूबसूरत रचना।

बहुत ही सुंदर, मार्मिक और बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफ़रनामा। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। नाम तो सुना होगा, है ना? जी हाँ दोस्तों, तो साथियों एक बड़ा ही प्यारा, जो इनके बारे में हम कुछ जानकारी बता देते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत जब लफ्ज़ों में ढल जाती है तो हर बात एक गीत बन जाती है, जिसे सुनकर दिल मुस्कुरा उठता है। वही धुन उम्र भर याद रह जाती है ना? जी हाँ दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। रविंद्र रावल रावल ने लेखन में केवल रोमांस का ही नहीं था, रोमांस ही नहीं था, बल्कि जिंदगी के रंग भी खूब दिखाई देते थे। गांव, गलियां, फूल और कलियां, ये शब्द अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाते थे। ऐसे गीत हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब फिल्मी गीतों में कहानी और वातावरण को भी बहुत खूबसूरती से शामिल किया जाता था। कहते हैं कि फूलों की खुशबू हो, गलियों की बात हो, गीतों में ऐसी पूरी कायनात हो। कुछ गीत गुजरते नहीं वक्त के साथ, तो वो बन जाते हैं दिल की सौगात। या दोस्तों, बड़े ही प्यारे गीतकार रहे हैं। आइए एक और गीत सुनवाते हैं। बहुत ही प्यारा गीत आ रहा है और ये गीत है बहुत ही खूबसूरत। जी हाँ, सुन दिलरुबा। शुक्रिया, मेहरबानी। आइए सुनते हैं ये बेहतरीन रचना।

बहुत ही प्यारा, बहुत ही धमाकेदार, खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे साथियों। बाकी आज तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एसपी बाला सुब्रमण्यम, अनुराधा पौडवाल और न जाने कितने सिंगर हैं जो आवाज़ दिया, ख़ास तौर से एसपी बाला सुब्रमण्यम की बात कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, रविंद्र रावल लेखनी की पहचान। श्रोताओं, रविंद्र रावल का नाम हिंदी फिल्म संगीत के उस दौर से जुड़ा है जिसमें गीतकार, संगीतकार और गायक मिलकर गीत को एक पूरी कहानी का रूप देते थे। रविंद्र रावल का विशेष जुड़ाव संगीतकार राम लक्ष्मण के साथ भी रहा। उनके कई लोकप्रिय गीत लक्ष्मण के संगीत में सामने आए। उनके गीतों में प्रेम है तो अपनापन भी है, मस्ती है तो भावुकता भी है, शादी की खुशियां हैं तो परिवार के रिश्तों की मिठास भी है। यही भी विविधता उनके गीतों को खास बनाती है ना? तो चलते हैं एक और गीत की ओर। जी हाँ दोस्तों, गाना है बहुत ही प्यारा, सजना तेरे बिना क्या जीना, पत्थर के फूल फिल्म से बहुत ही शानदार रचना है और लता मंगेशकर एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में बहुत ही शानदार खूबसूरत रचना है। रविंद्र रावल का गीत और संगीत राम लक्ष्मण का।

वाकई दोस्तों बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, थोड़ा सा सीरियस नोट पर था और मार्मिक था, मार्मिक गीत था, वाकई बहुत ही प्यारा गीत था सच में। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, तुमसे देखते ही जो प्यार हुआ, फिल्म पत्थर के फूल। साथियों एक ही फिल्म के अगले गीत के साथ आगे बढ़ते हैं। किसी को पहली नज़र में पसंद कर लेना और फिर उस एहसास को गीत में महसूस करना, यही तो सिनेमा की खूबसूरती है। कहते हैं कि पहली नज़र का पहला एहसास था, दिल में जैसे कोई मिठास, कोई मीठा राज था, न जाने कब दिल ने दिल को छू लिया और प्यार का खूबसूरत आगाज था। साथियों अब हम बात कर रहे हैं आपके, हम आपके हैं कौन का सुनहरा अध्याय। श्रोताओं अब हम पहुंचते हैं रविंद्र रावल के सफर के उस पड़ाव पर जिसे हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा। फिल्म थी हम आपके हैं कौन। जी हाँ, हम आपके हैं कौन। इस फिल्म के कई गीत रविंद्र रावल ने लिखे और गीत आज भी शादी ब्याह तथा पारिवारिक समारोह में सुने जाते हैं, है ना। वाह वाह राम जी, जी हाँ, बहुत ही फेमस, बहुत ही खूबसूरत गीत है। और दीदी तेरा देवर दीवाना, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, बाबुल जो तुमने सिखाया आज हमारे दिल में, जैसे इतने सुंदर गीतों ने पारिवारिक भावनाओं को बेहद लोकप्रिय रूप दिया। वाह वाह राम जी बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत था। और श्रोताओं शादी की खुशी और यह गीत ना बजे ऐसा शायद ही कोई समारोह हो, है ना। गीत में, विवाह में, खुशी में, परिवार की हंसी में और रिश्तों की मिठास में। और तो और शहनाई बजे तो दिल मुस्कुराता है, हर रिश्ता जैसे और करीब आता है। शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं, दो परिवारों का भी साथ मिलता है ना। तो आइए एक और खूबसूरत गीत हम सुनवा रहे हैं।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत यशुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में शानदार रचना हम तो प्यार करेंगे। जी हाँ, और ये फिल्म का नाम है और गीत रविंदर रावेल के हैं और संगीत बाबुल बोस का है। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना। उससे पहले हम कुछ जज्बात या उनकी जो कहानी है बता देते हैं। रविंदर रावल और पारिवारिक गीत। दोस्तों, रविंद्र रावल की लेखनी का एक खूबसूरत पक्ष यह भी है कि उन्होंने पारिवारिक भावनाओं को बहुत ही सरल शब्दों में गीतों का रूप दिया है। उनके गीतों में बड़े बड़े कठिन शब्द नहीं मिलते, लेकिन साधारण शब्दों के पीछे भाव बहुत ही गहरा होता है। यही कारण है कि उनके कई गीत सीधे श्रोताओं की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जैसे कि दिख ताना दिख ताना, और भी बहुत सारे गाने हैं। तमाम गाने हैं रविंद्र रावेल के लिखे हुए। और कहते हैं कि अब थोड़ा माहौल हल्का कर लेते हैं और खुशियों और मस्ती से भरपूर गीत के साथ हम चलते हैं, है ना। हंसी होठों पर सजती रहे खुशियाँ, खुशियों की महफिल जमती रहे, गीत बजे और दिल झूमता रहे, जिंदगी यूं ही खूबसूरत चलती रहे। साथियों, एक गीतकार की खुशी या खूबी, एक अच्छा गीतकार वही होता है जो परिस्थितियाँ परिस्थिति और परिस माफ़ कीजिएगा परिस्थिति को समझें। अगर दृश्य प्रेम का है तो

शब्द प्रेम बन जाए। अगर दृश्य विवाह का है तो शब्द उत्सव बन जाए, और अगर दृश्य विदाई के हो तो बस वही शब्द आंखों में नमी ले आए। रविंद्र रावेल के गीतों में एक ऐसी विविधता है, विविधता देखने को मिलती है। उनकी गीत सूची न जाने कितने ही गाने दिए हैं, 1970 के दशक में से लेकर 1980 के दशक से लेकर 90 तक के दशक से आगे तक की फिल्मों के गीत दर्ज मिलते हैं, है ना। बड़े ही प्यारे खूबसूरत गीत रचनाएं हैं। और समय तो ज़्यादा होता नहीं है हमारे पास, क्योंकि 50 मिनट का ही प्रोग्राम होता है, और बस हम गीत सुनवा सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देंगे। फिलहाल हम एक गीत सुनवा रहे हैं आपको, आइए सुनते हैं। बड़ा ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत है, और ये गीत वाकई अपने आप में बहुत ही प्यारा है और बहुत ही लाजवाब है। तो ये फिल्म है हम आपके हैं कौन, लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज में शानदार रचना। गीत रविंद्र रावेल के हैं और संगीत राम लक्ष्मण का। आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बड़ा ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन रचना, क्या बात है। साथियों, समय तो इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें, कम से कम बस अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन 50 मिनट के अंदर अंदर समेटना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो साथियों, आज हमने गीतकार अरविंद रावल के गीतों के बहाने हिंदी फिल्म संगीत के कई खूबसूरत रंगों को महसूस किया है। उनकी लेखनी ने हमें प्रेम दिया, मस्ती दी, परिवार की खुशियाँ दी और रिश्तों की अहमियत भी समझाई। और गीतकार की सबसे बड़ी सफलता शायद यही होती है कि उसका लिखा गीत केवल

इल्म तक सीमित नहीं रहे बल्कि लोगों की जिंदगी पर उतर आए। और शादी के मंडप से लेकर परिवार की महफिल तक, प्रेम की बातचीत से लेकर यादों की तन्हाई तक, उनके गीत कहीं ना कहीं हमारे साथ चलते रहे। साथियों, बस अंतिम गीत आ रहा है, उससे पहले दोस्तों आज के सुरों का सफरनामा से आज मुझे फिर से दीजिए

कुछ गीत दिल में उतर जाते हैं तो कुछ आंखों में सपने भर जाते हैं, और कुछ सुर बन जाते हैं तो कुछ जिंदगी का हिस्सा, और कुछ उम्र भर याद आते हैं। रविंद्र रावल की लेखनी को सलाम और उनके गीतों को सलाम, और क्या कहें, उनके गीतों को सलाम और उन तमाम संगीतकारों को, गायकों को, कलाकारों को सलाम जिन्होंने इन इन सुंदर शब्दों को सुर देकर हमारे दिलों को पहुंचाया। और मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को अब आपसे विदा लेने की ज़रूरत है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे सुरों का सफ़रनामा की एक और नई कहानी, एक नई आवाज़ और कुछ अनमोल गीतों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल। सुनते हैं छोड़े जा रहे हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा

0: संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता के प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, अनेक संस्कृतियां एक लय की भी विशेष प्रस्तुति रही, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने अनूठी सामूहिक संगीत प्रस्तुति में एक साथ भाग लिया। विभिन्न देशों के विविध संगीत परंपराओं से सजी इस सिंफनी में साझा कलात्मक अभिव्यक्ति रही, जिसमें ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और एकजुटता की भावना प्रतिबिंबित हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण भी किया। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे। बीकेसी स्थित भारत डायमंड बोर्ड्स में आयोजित GJEPC पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लाल बागचा राजा के दर्शन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर की लखपति दीदियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन महिलाओं ने लखपति बनकर सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नई दिल्ली में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। ये दीक्षांत समारोह देश भर में 23 केंद्रों पर आयोजित किया गया था। समारोह में श्री मेघवाल ने नए योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The BRICS nation adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of

आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। या दोस्तों, आज शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही प्यारे खूबसूरत रचना के साथ, तो हो जाइए तैयार मेरे साथ। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत गीत आ रहा है और नदी किनारे सांझ सकारे, बड़ा ही सुंदर और बेहद खूबसूरत रचना से हम शुरुआत कर रहे हैं। और उनकी डिटेल्स जो हम बता देते हैं, आखिरकार कौन सी फिल्म का है कौन सी फिल्म का नहीं है। और सही मायने में देखा जाए, गीत सुनहरे, यानी कि सुनहरे का मतलब गोल्ड, गोल्ड का मतलब ओल्ड इज गोल्ड, है ना। ओल्ड गोल्ड जो सॉन्ग्स होते हैं वाकई एक बिल्कुल सच्ची रचनाएं होती हैं, बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बिल्कुल सोने की तरह खड़ा होता है ऐसा खूबसूरत नगमा, है ना। जी हाँ, नदी किनारे सांझ सकारे एक फिल्म है, प्रभु का घर, जो 1945 फिल्म प्रदर्शित है और गीत पीटी इंदिरा के हैं और संगीत से सजाया है खेमचंद प्रकाश ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम सुर के सफरनामा की पहली और बहुत ही शानदार बेहतरीन रचना।

जी हाँ, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, इसी प्रकार की ही जो बातें होती हैं, इसी प्रकार की भी जो आवाज़ें होती हैं, इसी प्रकार के ये गीत होते हैं। जी हाँ, बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे से गीत होते हैं, गीत सुनहरे में। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही कम गीत ऐसे होते हैं जो लेंदी होते हैं, तो तभी तो जो छोटे छोटे गीत होते हैं पता ही नहीं चलता कब आया और कब चला गया, है ना। तो साथियों, बड़ा ही खूबसूरत गीत था। और

बढ़ते हैं एक और खूबसूरत खूबसूरत गीत की ओर। ये है वो चले झटक के, बड़ा ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, वो चले झटक के। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही चर्चित और बेहद खूबसूरत रचना है ये। तो आइए सुनवाते हैं ये शानदार बेहतरीन गीत, और ये गीत है फिल्म हमराही से। जी हाँ, वो चले झटक के, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में शानदार रचना। हमराही फिल्म 1945 प्रदर्शित फिल्म रही है और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने इस शानदार गीत को। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है मोहम्मद रफी साहब की, बात ही अलग है। इतनी बेहतरीन खूबसूरत रचना, वो चले मस्ती भरा सुंदर, थोड़ी शिकायत और थोड़ा प्यार, थोड़ी मोहब्बत भी थी, है ना। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत आ रहा है आपके पास, ये सुंदर लाजवाब रचना है, दिले नादान जमाने में। जी हाँ, दिले नादान जमाने में एक अलग यूनिक खूबसूरत गीत है, और इस गीत के जो बोल हैं हम बता देते हैं। और ये गीत है दिले नादान जमाने ने, जमाने में। मस्त कलंदर एक फिल्म है, बड़ी ही प्यारी फिल्म है मस्त कलंदर। मस्त कलंदर फिल्म 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है, आशा भोसले और तलत महमूद की आवाज़ में, बहुत ही प्यारी रचना है, संगीत से सजाए हंसराज बहल ने। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार रचना।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सीरियस यानी कि बहुत ही गमगीन दर्द भरा खूबसूरत गीत है आपस में, जो एक डिस्टेंस मेंटेन होता है ना। हाँ, इसीलिए कुछ उनकी शिकायत तो कुछ दूसरे ओर की शिकायत, लेकिन जब दूरियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा, कभी ज़िंदगी में कभी कोई इंसान छूट जाता है या दूर चला जाता है किसी कारणवश, तो उनको बुलाने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि जब अलग हो जाते हैं तो ज़िंदगी नीरस हो जाती है हर इंसान की। तो कोशिश करें वो प्यार मोहब्बत आत्मीयता हमेशा बनी रहे एक दूसरे के बीच। यदि कोई इंसान आपको उकसाने का प्रयास करता भी है, लेकिन उनको इग्नोर करें। बस प्यार ही तो है इस दुनिया में। यदि प्यार नहीं होता

जिंदगी नीरस और सबसे ख़राब हो जाती है ना। हमेशा प्यार से रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल हमारी ही तरह। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7। आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार, और कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। तो आइए सुनते हैं एक और सुंदर और बहुत ही खूबसूरत रचना है, बड़ा ही प्यारा गीत है, वो बसंती पवन पायल। जिस देश में गंगा बहती है, लता मंगेशकर की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में शानदार रचना है। गीत शैलेंद्र के हैं और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने। तो वही सुनते हैं 1960 प्रदर्शित फिल्म शानदार जिस देश में गंगा बहती है। आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

संगीत भी मार्मिक हैं, सुंदर हैं, लेकिन डिफरेंसेस जो पैदा हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं और वापस गीत जो दर्द में डूबा हुआ है, वाकई बहुत ही सुंदर लेकिन मार्मिक है। एक दूसरे के प्रति जो लगाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है ना? कम नहीं होना चाहिए बल्कि ज़्यादा होना चाहिए, प्यार, मोहब्बत, आत्मीयता। न जाने गीत कैसे होते हैं, समझ नहीं आता है हमें। सच में एक से एक सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत रचनाएं होती हैं और समझ में नहीं आता आखिरकार कौन सा गीत हम प्ले करें, कौन सा नहीं करें। सच में इतना खजाना भरा पड़ा है गीत संगीत के खजाने में, सच में क्या कहें हम। जैसे हम बोलते भी हैं गीत संगीत का खजाना भरा है, बस ज़रूरत है उन गीतों को ढूंढने की, है ना? तो आइए एक और सुंदर रचना सुनवा रहे हैं और ये सुंदर खूबसूरत गीत है। ये गीत एक तो सूरत प्यारी, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत गीत है और इसकी जो डिटेल्स हैं हम बता देते हैं। और ये गीत है वल्लाह क्या बात है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में शानदार रचना है। 1982 प्रदर्शित फिल्म रही है और संगीत से सजाए हैं रोशन ने। आइए सुनते हैं एक तो सूरत प्यारी।

जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। जी हाँ दोस्तों, एक और गीत सुनवा रहे हैं, बड़ा ही प्यारा गीत है, आज की रात। जी हाँ, डरने की आवश्यकता नहीं है। और आज की रात फिल्म का नाम है टावर हाउस। गीत आज की रात बड़ा ही प्यारा मस्त गीत है, लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज़ में। 1962 प्रदर्शित फिल्म है ये। गीत दीश प्रोडक्शन के हैं और संगीत से सजाया है रवि ने। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा गीत।

जी हाँ, आज की रात बड़ा ही सुंदर, सूदिंग और बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर, और ये गीत भी बहुत ही सुंदर है, तो सुनवाते हैं ये प्यारा सा एक और खूबसूरत नगमा। उसके बाद हम अपनी पसंद का एक बड़ा ही प्यारा गीत सुनवाएंगे, और जो हमारे श्रोता साथी हैं उन्होंने कहा

है कि भाई अपनी पसंद का कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिएगा, लेकिन हाँ जाते जाते हम सुनवाएंगे। और अभी तो काफ़ी समय है, 15 मिनट बाकी हैं, अभी बहुत सारे गीत हमें प्ले करने हैं और ज़्यादा नहीं, और उसके बाद तो समाचार होंगे, समाचार के बाद कार्यक्रम होगा गीत बहार। जी हाँ, गीत बहार नॉन स्टॉप कार्यक्रम होता है, उसमें एक सिर्फ एक गीत की हम डिटेल्स बताते हैं और उसके बाद लगातार बैक टू बैक गीत प्रसारित किए जाते हैं, और बस यही है। तो फिलहाल हम सुनवा रहे हैं एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है, मैंने एक ख्वाब सा देखा है। सुनते हैं ये शानदार रचना और मिलते ही नज़र टाइटल सॉन्ग है ये। अच्छा, ये वाला नहीं है, दूसरा है, माफ़ कीजिएगा। और ये गीत, हाँ चलिए हम पहले यही चला देते हैं। और मिलते ही नज़र उस्तादों के उस्ताद फिल्म से शानदार रचना है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी, साथ में मन्ना डे की आवाज़ में शानदार रचना है। 1963 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत संगीत से सजाया है रवि ने। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही कव्वाली रूपी शानदार बेहतरीन खूबसूरत रचना अभी आप सुन रहे थे, और मिलते ही नज़र उनसे हो गए हम दीवाने, उस्तादों के उस्ताद फिल्म से ये शानदार रचना थी। आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ में शानदार रचना। 1963 प्रदर्शित फिल्म रही, संगीत से सजाया था रवि ने। साथियों, एक बड़ा ही प्यारा गीत है जो मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत ही खूबसूरत है, क्या कहें हम। साथियों, एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है, फिल्म बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, और इस गीत को सच में कई बार मैं गा चुका हूँ, लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है हमेशा की तरह आज भी। जी हाँ, प्यार जो होता है, इंसान जो प्यार करता है, वाकई अच्छा लगता है। जब प्यार अगर नहीं है तो कुछ भी तो नहीं है इस जीवन में, है ना। जी हाँ, एक प्यारी सी रचना है और ये रचना बड़ी खूबसूरत है। तो आइए सुनते हैं आज के गीत सुनहरे की अंतिम बेहद खूबसूरत रचना। फिर मिलोगे कभी, इस बार का वादा कर लो। जी हाँ, दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी रह भी, चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। आइए सुनते हैं, बहुत ही

प्यारी खूबसूरत रचना फिर मिलोगे कभी, ये रात फिर ना आएगी। ये फिल्म बड़ी प्यारी फिल्म है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुंदर रचना। 1965 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत SH बिहारी के हैं और गीत और संगीत संगीत से सजाया है OP नैयर साहब ने। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की अंतिम रचना।

0: के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम में समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया

0: में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और टाला नहीं जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी तस्वीर भेंट की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाला चीनी मिट्टी का ये स्मृति चिन्ह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 12 अक्टूबर 2019 को तमिलनाडु के मामल्लपुरम में हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की साझेदारी को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष जू चियाची से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत की अवसंरचना और परिवहन संपर्क संबंधी प्राथमिकताओं को समर्थन देने, स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण को बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और AIIB की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला और सोपोर समेत 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तान स्थित संचालकों और उनके कथित स्थानीय समर्थकों के नेटवर्क से जुड़े सीमा पार आतंकी योजनाओं के मामले में चलाए गए। तलाशी के दौरान मामले से संबंधित और भी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। देश में रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for a commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट

0: जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम अभी चल रहा था। जी हाँ, गीत बहार इंस्टेंट। जी हाँ साथियों, नॉन स्टॉप म्यूजिक। साथियों वाकई आप सभी साथियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने शानदार गीतों को सजाया और बहुत ही प्यारा लगा है हमें भी, और वाकई बहुत ही अच्छा लगा है। और गीत वाकई एक से एक सुंदर बेहतरीन थे। आपने सभी साथियों ने तारीफ भी की है और उसके लिए आपका सभी साथियों का धन्यवाद। और बस गीत बहार कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपने दोस्त अपने होस्ट ललित कुमार को। साथियों 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है।

0: बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण भी किया। इनमें फिलीपींस की प्रथम महिला लुइस अरनेता मार्कोस, ईरान के राष्ट्रपति की पुत्री जहरा पेजिशियन और ईरान के राष्ट्रपति के दामाद हसन मजीदी डिजाल शामिल रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिटरी और दूसरी योजनाओं से आने वाले निवेश बहुत मजबूत रहा है। एक साक्षात्कार में श्री मल्होत्रा ने कहा कि ये मजबूत निवेश भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है और कम समय में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की क्षमता को भी सिद्ध करता है। बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी पर श्री मल्होत्रा ने बताया कि रिजर्व बैंक के पास नकदी को संभालने के लिए कई उपकरण हैं और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करेंगे। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.85 किलोमीटर लंबी यह सड़क स्वदेशी तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल दर्शाती है। इस तकनीक में स्टील उत्पादन से निकलने वाली स्टील स्लैग को सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में बदला जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान किए जाने वाले समारोह में कहा कि स्टील स्लैग रोड तकनीक से सड़क निर्माण की लागत करीब 40% तक कम हो जाती है और पारंपरिक सड़कों की तुलना में इनकी मजबूती 4 गुना अधिक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये पवित्र ग्रंथ सदियों से मानवता को निस्वार्थ सेवा, मानवीय गरिमा और एकजुटता का मार्ग दिखाता आ रहा है। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The BRICS nation adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: The 18th BRICS Summit kicked off yesterday with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the growing institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions,

घर से हम निकले थे मस्जिद की तरफ जाने को, घर से

0: मस्जिद की तरफ जाने को रिंद
1: बह। गायकी का ये अंदाज अभी तक छाया हुआ है। कई नए नए फनकारों ने इस अंदाज को बरकरार रखा है, जैसे छाया गंगू।

0: और इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है। सुभाष आनंद की इस गजल के साथ गजल गीत कार्यक्रम संपन्न होता है। श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

के स्वर में अभी आप गुरुवायूरप्पन की प्रशंसा में हरि नामक कीर्तनम सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में मिनी एन का गायन राग कल्याणी में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 सितंबर सन 2026। सुबह के 4:54 और ठीक 20 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है। 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। पांच बजकर दस मिनट पर आप सुन

सकते हैं योग कार्यक्रम। आओ योग करें। आज के कार्यक्रम में योग अर्ध मत्स्येन्द्रिय आसन आप सुनेंगे समझेंगे। 5:20 पर देशभक्ति गीत और 5:30 का समय स्वर रंजनी कार्यक्रम का है।

आपातकालीन सेवा आरंभ होगी सुबह 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। इसके उपरांत 6:05 पर अंग्रेजी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं, 6:10 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर चिंतन, विधन चंद्र रॉय के जीवन से प्रेरक प्रसंग आप सुनेंगे। 6:45 का समय रामचरितमानस से पाठ का है, जिसमें आप सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 47। छः 6:55 पर संस्कृत समाचार होंगे, 7 बजे हिंदी समाचार और 7:05 पर आप अंग्रेजी समाचार सुन पाएंगे। सात बजकर दस मिनट का समय संगीत का कार्यक्रम का है। श्रोताओं, प्रातः के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आज ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की और ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने के साथ साथ ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया गया। भारत चौथी बार इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी अनेक संस्कृतियां एक लय की भी विशेष प्रस्तुतियां रहीं, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने अनूठी सामूहिक संगीत प्रस्तुति में एक साथ भाग लिया। विभिन्न देशों के विविध संगीत परंपराओं से सजी इस सिम्फनी में साझा कलात्मक अभिव्यक्ति रही, जिसमें ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और एकजुटता की भावना प्रतिबिंबित हुई। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कल से 3 दिन का मुंबई दौरा आरंभ किया। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे और हिंदी पर केंद्रित 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में गृहमंत्री श्री गणेश ज्ञानरति शीर्षक से पांडुलिपियों की विशेष रूप से प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे वहां पुस्तकालय का दौरा करेंगे, एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करेंगे और उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने अरुण जेटली स्टेडियम में आज होने वाले भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि दर्शकों की आवाजाही के कारण स्टेडियम के आसपास यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने बताया कि इस दौरान बहादुर शाह जफर मार्ग, DDU मार्ग और JLN मार्ग पर आवश्यकता के अनुसार यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तित होने की संभावना है। यातायात पुलिस ने दर्शकों को उनके प्रवेश द्वार के अनुसार निर्धारित मार्गों से स्टेडियम

0: पहुंचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज और बिजली की स्थिति बनी रहेगी। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने वाले उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग को अपनी तस्वीर भेंट की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने उस दावे को फर्जी बताया है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली चीनी मिट्टी की स्मृति चिन्ह चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने 12 अक्टूबर 2019 को तमिलनाडु के मामल्लापुरम में हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सस्ते दाम पर वॉशिंग मशीन के पुर्जे देने के नाम पर गुजरात को एक व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए ठगे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence and decision-making on global issues. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after the adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है। आज अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: टुडे इज द सेकंड एंड फाइनल डे ऑफ द ब्रिक्स समिट। द टू-डे समिट बिगन यस्टरडे एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration 2026 on the first day of the summit itself. The BRICS nations reiterated their commitment to the peaceful resolution of international disputes through dialogue, consultation and diplomacy. The leaders also expressed their concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. They also strongly condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April last year in the strongest terms and reaffirmed their commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. India is organizing the summit for the fourth time. Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. Prime Minister Modi highlighted that both the sides must be guided by 3 mutuals, mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest. The two leaders expressed commitment to a fair, reasonable and mutually acceptable resolution of the boundary question, proceeding from the political perspective of the overall bilateral relations and the long-term interests of the two peoples. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman discussed opportunities to further deepen the India-Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, partnership. The Finance Minister met President of Asian Infrastructure Investment Bank, Zhu Jiai, in New Delhi. In a social media post, Finance Ministry said, discussions were held on supporting India's infrastructure and transport connectivity priorities, enhancing local currency finance.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की।

अर्ध मत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्ध मत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्ध मत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्ध मत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्ध मत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें। लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को ढीला छोड़ें। आराम से सीधे बैठ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। अर्ध मत्स्येन्द्रासन के लाभ। इससे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन में रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है, जिससे उसकी कार्य कौशलता में सुधार होता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। यह आसन छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सीय है, लेकिन यह आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। यह आसन पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे कब्ज जैसी स्थिति में लाभ होता है। अग्नाशय के लिए लाभदायक है, मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है अर्ध मत्स्येन्द्रासन। यही आसन डायबिटीज, कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्रपथ विकारों, मासिक धर्म की परेशानियां और अपच के लिए चिकित्सीय है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गर्भ अवस्था और मासिक धर्म के दौरान यह आसन वर्जित है।

नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनके दिल, पेट या मस्तिष्क की ऑपरेशन की गई हो, उन्हें अर्धमत्स्येंद्र आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी आसन वर्जित है। पेप्टिक अल्सर या हर्निया वाले लोगों को यह आसन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या समस्याएं हैं तो आप यह आसन ना करें। हल्के स्लिप डिस्क में इस आसन से लाभ हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में इसे नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी चैनल पर इसी समय। योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। प्रातः की 5:30 और ठीक 25 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अमिया रंजन बनर्जी द्वारा प्रस्तुत राग ललित।